मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में

0: विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब 80 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

ईश्वर ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, यही उचित समय है जब हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने से क्या लाभ जब वो नश्वर है। एक अनश्वर पदार्थ है राम नाम, हरे स्मरण।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

ईश्वर हमारे लिए सदैव सर्वत्र हैं, बस एक हम ही हैं जो उनकी अत्यंत दुस्तर माया के वशीभूत होकर इस संसार को सत्य और इस संबंध को जो सांसारिक संबंध हैं उसे अपना मान बैठते हैं।

संताप से रूप नष्ट होता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है और संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। फिर जब संताप के सिवा हानि के और कुछ नहीं है और कुछ प्राप्त हमें नहीं होता तो प्रसन्न रहें, जिससे स्वयं के साथ दूसरों को भी हम प्रसन्नता दे सकें।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के विचार।
1: किसी भी राष्ट्र का निर्माण अचानक नहीं होता, उस राष्ट्र का निर्माण सामर्थ्यवान, संस्कारवान, चरित्रवान, देशभक्त लोग करते हैं। भारतवर्ष विश्व का प्राचीनतम राष्ट्र है। सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से यह विश्व में अद्वितीय रहा। समृद्धि और पराक्रम की दृष्टि से भी इस देश का दूसरा कोई देश सानी नहीं रहा। पराधीनता के कालखंड में न केवल हमारी राजनीतिक सत्ता हमसे दूर हुई, बल्कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में हम दूर दूर तक पिछड़ते चले गए। परंतु उन 600-700 वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं है जब भारतवर्ष

0: की अस्मिता और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भारत माता के किसी न किसी वीर पुत्र ने देश के किसी न किसी कोने में अपना बलिदान न दिया हो, उन्हें बलिदानियों और शहीदों की परंपरा में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम अद्वितीय है। 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ। उनकी माता मूला रानी और पिता मुरलीधर ऐसे पुत्र का पिता और माता होने का श्रेय प्राप्त किए जिसका नाम स्मरण करने से देश की अस्मिता, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा का बोध होता है। राम प्रसाद बिस्मिल केवल क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक अद्भुत लेखक, साहित्यकार, कवि और बहुभाषाविद थे। आश्चर्य होता है कि 30 वर्ष की उनकी कुल आयु रही और इस आयु में ही उन्होंने 11 पुस्तकों का लेखन किया, और ये वे पुस्तकें थीं जिनके विक्रय से प्राप्त मूल्य के आधार पर उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था। उनका क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश भी एक विलक्षण घटना है। परमानंद जी को एक षड्यंत्र में अभियोजित होने के कारण फांसी की सजा मिल गई। उनको फांसी की सजा मिलने के प्रभाव से आक्रोशित राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी बने और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव उखाड़ लेने का संकल्प, और फिर धीरे धीरे नवयुवकों के बीच में उन्होंने इसका प्रचार और प्रसार शुरू किया। औरैया के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गेंदालाल दीक्षित के साथ उनका संपर्क रहा, और उनके संपर्क के साथ साथ युवाओं में उन्होंने ऐसी क्रांतिकारी भावना जागृत की कि उन क्रांतिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बार 50 से अधिक गोरे सैनिक मारे गए। काकोरी कांड में, जिसमें ब्रिटिश खजाने को क्रांतिकारियों के आंदोलन को चलाने के लिए लूटने का अभियोग उन पर लगा, और बाकी तो सारी कार्रवाई एक नाटक थी, अंत में उनको फांसी की सजा दी गई, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा हुई। गोरखपुर जेल लाए गए लखनऊ से वो, और वहाँ पर उनको 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल असाधारण क्रांतिकारी थे, लेकिन उनकी माँ जिस दिन उनको फांसी होने वाली है उसके एक दिन पहले उनसे मिलने जाती हैं मूला रानी जी। राम प्रसाद बिस्मिल की आंखें डबडबा गईं तो माँ कहती है कि मैंने परमात्मा की साधना लंबे समय तक की और मैंने राम जैसा पुत्र मांगा और तू पैदा हुआ। अगर तुझे मृत्यु से इतना भय था तो तुझे क्रांतिकारिता का मार्ग नहीं चुनना चाहिए था। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आँखें पोंछी और उन्होंने कहा, माँ मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन तुझ जैसी माँ से बिछुड़ने का भय मेरे आँखों में आंसू का कारण बना। शहीद बिस्मिल की माताजी, जिनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र राम जैसा पैदा हो, और राम प्रसाद बिस्मिल के पैदा होने पर उन्होंने उनका नाम भी राम रखा, और उनकी शहादत से उनको गर्व का बोध, क्योंकि उनके बेटे ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन इस बात का स्मरण करके अत्यंत पीड़ा का बोध होता है कि उनकी माता और दादी इन दोनों को भयंकर आर्थिक यातना से गुजरना पड़ा है। एकादशी के दिन वे ब्राह्मणी हैं यह सोच करके कुछ दान देते थे जिससे उनका जीवन चलता था। गोरखपुर में जिस स्थान पर उनको फांसी की सजा दी गई, उसके बाद उनका शव राप्ती नदी के किनारे उसका अंतिम संस्कार हुआ, लगभग 1.5 लाख लोग उस जुलूस में शामिल हुए, लेकिन उस स्थान पर सार्वजनिक आवागमन प्रतिबंधित था। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने ब्रजेश राम त्रिपाठी और इन लोगों के आग्रह पर, ये लोग वहाँ एक संगठन चलाते हैं अभी भी, वहाँ पर अब आवागमन सभी का मुक्त है। कभी भी कोई वहाँ जा सकता है उस शहीद स्थल पर, और वहाँ मेला लगता है, और अभी भी उस दिन वहाँ पर खिचड़ी और गुड़ का वितरण किया जाता है। आज मुझे दुख के साथ यह बात कहनी पड़ रही है, ऐसे लोगों का नाम पूछने पर, उनका नाम तो लोग जानते हैं पर उनके बारे में लोग नहीं जानते। कौन थे, कहाँ के थे, क्या उनका योगदान था, क्या हमारी नई पीढ़ियों को इन लोगों के बारे में जानना नहीं चाहिए?
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के विचार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों को आज हम सुनवा रहे हैं वृक्षारोपण से पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ विषय पर डॉक्टर सौम्य बहादुर से की गई राकेश

0: कुमार मौर्य की बातचीत।
1: किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ बाग बागवानी भी लगावत हैं। ये जौन समय चलत बा वो वृक्षारोपण के लिए बहुत ही उपयुक्त समय चलत बा। आज जौन बातचीत के विषय बा वही बा कि वृक्षारोपण से पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ का का होता है, ये बतावे खातिर आज कार्यक्रम में आए बाटिन सौम्या बहादुर जी जौन की जानकार बाटिन है। सौम्या बहादुर जी आपका कार्यक्रम में स्वागत बा। आप हमारे किसान भाइन के बतावें कि अगर वो वृक्षारोपण करथिन तो खास करके पर्यावरण के का लाभ होता और इसके अलावा किसान भाइन का आर्थिक लाभ का होता है, एक बारे में कुछ बतावें आप।
2: पहला फायदा तो जैसे हम सब जानते हैं कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसकी वजह से हम सांस ले सकते हैं। दूसरा फायदा ये है सबसे बड़ा कि जो बड़े बड़े हार्मफुल गैसेज होती हैं जो फैक्ट्री के धुएं से निकलती हैं, कारों से निकलती हैं या सब जगह से निकलती हैं, उसको वृक्ष एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: और बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि शहर में आज हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों को कैंसर हो रहा है, अगर हम वृक्ष लगाते रहेंगे तो ये नहीं होगा, लंग कैंसर नहीं होगा। आज ऐसा होता है कि 4 साल के 5 साल के बच्चे को भी लंग कैंसर हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जिस तरह से पर्यावरण को नाश कर रहे हैं उसकी वजह से।
1: तो अगर का कहते हैं वृक्षारोपण ज्यादा हो तो ये जोन बाटे जो बताए कैंसर,
2: हाँ
1: फेफड़े वाला जो
2: फेफड़े का कैंसर
1: ई न हो।
2: जी जी।
1: एकरे अलावा और कुछ बताऊं?
2: जी जी। एक इसके अलावा जो है जैसे कि पेड़, हमको अगर हम पेड़ रख रहे हैं तो हम मधुमक्खियों का पालन कर सकते हैं, मधुमक्खी पाल सकते हैं उसमें, जिससे कि हमको काफ़ी आर्थिक लाभ होगा। शहरों में बहुत अच्छे दाम पे जो इस तरह की मधुमक्खियां जो पाली होती है, जो फ्री एयर में पलती हैं, जो अलग अलग तरह के पेड़ों का फूल से अपना मधु बनाती हैं, उनको बहुत अच्छा माना जाता है और उनको बहुत महंगे दामों पे खरीदा जाता है। इसके अलावा पेड़ अलग अलग तरह के पेड़ जैसे कि शीशम का पेड़ है, ये भी लगाया जा सकता है जिससे कि फर्नीचर बनता है। आज एक एक पेड़ जो 20-20 साल का 25 साल का होता है वो 50,000 से भी ज्यादा में मिलता है।
1: अच्छा,
2: सागवन
1: अच्छा।
2: का पेड़ है, शीशम का पेड़ है जो कि सीधे ऊपर जाते हैं, तो खेत में लगाने के बाद अगर हम जो बाउंड्री बनाते हैं उसकी हम इन पेड़ों की बनाएंगे, तो अगर आज हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है और हमने पेड़ लगा दिए, समझ लीजिए 50-60 पेड़ लगा दिए, तो जब वो बच्चा 20 साल का होगा या 22 साल का होगा उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए हमको जो है अलग से पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, यही पेड़ काट करके इनको हम बेच करके और इनके बच्चों का अपना फ्यूचर बढ़िया कर सकते हैं, आर्थिक लाभ कर सकते हैं।
1: एक बात बतावाएं कि पर्यावरण के हिसाब से अगर वृक्ष लगावा जाते हैं तो कितना फायदा हो सकता है, ऑक्सीजन के अलावा और का का फायदा हो सकता है?
2: आपको जो आज देख रहे हैं कि मानसून फेल हो जाता है, पानी नहीं बरस रहा है, 49 डिग्री तक टेम्परेचर शहरों का जा रहा है, गांव में तो तभी भी उतनी गर्मी अभी नहीं पड़ रही है, लेकिन जिस हिसाब से ये हो रहा है मानसून फेल हो जाएगा, पानी नहीं बरसेगा अगर आपने पेड़ सारे काट दिए, पेड़
1: की वजह से कहीं ज्यादा बाढ़ आ सकता है, कहीं सूखा पड़ सकता है।
2: बाढ़ भी इसीलिए आती है क्योंकि पेड़ की जो वो रहती है जड़ रहती है वो मिट्टी बांध के रखती है, तो जब आपका पानी आता भी है तो आपके लैंडस्लाइड नहीं होता, आपके यहाँ जो जैसे कहते हैं ना जमीन नहीं खिसकती है अगर आपके पास ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं। अगर आपने सारे पेड़ काट दिए तो आपकी पूरी पूरी जमीन ही खिसक जाती है, आपके नीचे से पानी सब कटान होने लगती है।
1: जी,
2: बिना पेड़ों के तो बारिश भी नहीं होगी और हम रह भी नहीं पाएंगे।
1: अच्छा अच्छा। आज जोन बाटे है बड़ा बड़े पैमाने पे ग्लोबल वार्मिंग की बात होते बाटे है।
2: जी जी।
1: ये कितनी गंभीर समस्या बा, वृक्षारोपण अगर किसान भाई करें तो एक दूर करे में का भूमिका हो सकते, एक बारे में भी कुछ बताओ आप।
2: अब शायद मुझे तो लगता है किसान भाइयों के ऊपर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज़ की, क्योंकि शहरों में तो जिस तरह से काटा जा रहा है पेड़ों को उसके हिसाब से तो जल के मर जाएंगे लोग, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे जल के मर जाएंगे। 49 डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा है, ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर, पेड़ों को काटने की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जितने कारखाने बन रहे हैं, जितनी हम लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो एरोप्लेन से इधर उधर जा रहे हैं उसमें इतना कार्बन इमिशन कर रहे हैं कि अब एक मोटी सतह कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर लगी हुई है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ गया है इसकी वजह से गर्मी और बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सूरज की किरणें अंदर आती हैं बाहर वापस नहीं निकल पा रही हैं, तो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर गर्म होता जा रहा है। आज ये हाल हो गया है कि आर्कटिक जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती थी वहाँ पे भी बर्फ नहीं है, वहाँ पे आग लग रही है, उसके साथ साथ वहाँ मच्छर, लोगों ने कभी सुना नहीं था अपने जीवन में कि आर्कटिक के एरिया में मच्छर हो, और वहाँ पे मच्छर पहुंच गए हैं, और कितने कितने बुरे पैमाने पे, मतलब जो सी लाइफ जैसे कहते हैं समुद्री जनजीवन है वो इतनी बुरी तरह से मर रहा है, कितनी मछलियां मर रही हैं वो सब तो हम अपनी आंख से देख रहे हैं।
1: जी सही कहा बाटिन आप। एक बात यह चर्चा में आवा था कि ओजोन परत भी नष्ट होत बाटा
2: जी,
1: ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो पेड़ हमें भी अपन भूमिका निभा सकते
2: जी जी बिल्कुल।
1: काहे से तापमान इतना तेज बढ़ा जाते हैं, परावैगनिक किरण जो सीधा चली आवत है, तमाम तरह के रोग बीमारी भी फैलावत है, खास करके जब बताए कैंसर भी है, स्किन कैंसर भी हो सकता है, चर्म रोग होते वजह से, एक बारे में भी कुछ बताऊं आप।
2: क्या होता है कि एक ब्लैंकेट इफेक्ट कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऊपर का ये बन गया है, और ओजोन की एक परत होती है जो हमारे यहाँ हमारे पृथ्वी पे हजारों सालों से है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो आ नहीं पाती हैं पृथ्वी पे,

0: लेकिन ये जो एमिशन हो रहा है जिस तरह की गैसेस का, सीएफसी खास तौर से, इसकी वजह से ओजोन परत में छेद हो गया है।
1: जी जी,
0: अभी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सबसे बड़ा छेद है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा स्किन कैंसर हो रहा है।
1: जी जी,
0: अगर हम पेड़ लगाएंगे और हम जो है ये सब गैसेस का एमिशन कम करेंगे और हम लोग धीरे धीरे करके, मतलब जहां तक मेरी सोच है, मुझे तो लगता है पुराने जो जनजीवन था उसमें हम लोग कम नुकसान कर रहे थे। अगर हम बड़ी गाड़ी खरीद ले रहे हैं और उसके बदले में कैंसर हो जा रहा है हमारे आधे परिवार को या हमारे 4 साल के बच्चे को, तो इससे अच्छा तो ये है कि हम छोटी गाड़ी में अपना रखें या तो फिर हम बैलगाड़ी रखें, लेकिन कैंसर ना हो किसी को।
1: एक ही बात भी हो सकता है कि हम ज्यादा कम से कम होकर चलाई जोन बाटे, अगर हाई बाटबो भाई अगर गाड़ी तो जरूरत पड़े चलाओ जाए, बाकी सब प्रकृति का इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। एक बात और बताऊँ कि आर्थिक रूप से का लाभ हो सकता है हमारे किसान भाई के, क्योंकि किसान भाई अगर कोनो भी काम करते हैं तो उनका भी आर्थिक लाभ भी हो चाहे, तो मैं वृक्षारोपण से का लाभ हो सकता है बारे में बताऊँ।
0: पहले तो सागवान और शीशम जैसे पेड़ जो सीधे सीधे जाते हैं उनको लगाएं अपने खेत में, जैसे खेत के चारों तरफ बाउंड्री करने के लिए, जिससे आपके उसका सूरज भी ना छुपे और आपका जो है पेड़ों को प्रॉपर सनलाइट भी मिलती रहे, और आपको 20-25 साल बाद उसको काट करके आपको पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएं। लाखों में मिलते हैं सागवान और शीशम के अभी भी। उसके अलावा अगर आप मधुमक्खी का पालन भी कर सकते हैं, आपने अगर आपने इमली के पेड़ लगाए हैं, नीम के पेड़ लगाए हैं, इन सब में आप मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं। हम तो आपसे यहाँ तक ये भी कहेंगे कि छोटे छोटे पेड़ जैसे कि एलोवेरा होता है, अश्वगंधा होता है, या आपका और भी सिट्रनेला जिसे कहते हैं, ये सब भी पेड़ अगर किनारे किनारे लगाते रहिए तो इससे ना सिर्फ कीटनाशक होता है ये, बल्कि इसको बाद में आप इस्तेमाल करके मार्केट में बेच भी सकते हैं।
1: एकरे अलावा अगर जो खाली जमीन वगैरह में फलदार पेड़ लगाएं तो उसे भी आर्थिक लाभ बढ़िया
0: मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, फलदार पेड़ लगाने से
1: पर्यावरण का भी फायदा करे।
0: चिड़िया आती है उससे, चिड़िया का जो आजकल हम देख रहे हैं कि गांव में शहरों में सब जगह चिड़िया गायब हो गई हैं। अगर फल के पेड़ लगाते हैं तो जो फल खराब भी हो जाते हैं वो फल पे जो है चिड़िया आकर के रहती है, तो चिड़िया रहेगी तो पेड़ रहेंगे, तो मधुमक्खियां रहेंगी, तो फूल रहेगा। जब हम इनमें से एक को भी खत्म कर देंगे तो हमारा सब कुछ पूरा चेन खराब हो जाएगा।
1: एकरे अलावा भी देखा जाए तो जौन पुराने पेड़ रहन किसान भाई अब नहीं लगाते हैं, काफ़ी उसे भी पर्यावरण को फायदा होता रहा है, इमारती लकड़ी मिलत रही, खास करके शीशम रहा, महुआ रहा, अब एक बड़ा कम देखे में आवत लोग लगावत हैं, तो ये सब भी पेड़ लगावे के चाहे किसान भाई।
0: महुआ का तेल मैं आपको सच बताऊं आजकल 1000 रुपये लीटर तक भी मिल रहा है, शहर में लोग ले रहे हैं। महुए के जो बीज का तेल होता है उसको मीठा तेल, रिफाइंड ऑयल जो होता है वो हेक्सेन से एक्सट्रैक्शन करते हैं उसका, तो वो केमिकली ट्रीटेड रहता है।
1: जी जी,
0: तो उसकी जगह महुए के बीज का तेल इस्तेमाल किया जाता है कि हजार रुपए लीटर तक भी मिलता है, और उसको मीठे तेल की तरह इस्तेमाल करते हैं।
1: बहुत अच्छा होता रहा, हम लोग भी बचपन में का इस्तेमाल कह रहे महुआ बीनत रहे। अभी और भी जोन पेड़ बाटे ना जहाँ भी जगह बा, चाहे झाड़ीदार हो या का कहा थी ना आप बताएं कि लंबा लंबा जोन पेड़ हो थी उनका भी लगाए से फायदा हो सकता है, तो उसे पर्यावरण भी फायदेमंद रहे और हमारे का कहा थी जमीन कटाव भी ना हो, उपजाऊ जमीन जो है अगर पेड़ लगाए रहे तो कटाव भी ना हो। और भी का कुछ बताना चाहिए इसके बारे में कुछ
0: जी? मैं कुछ और भी बताना चाहूंगी, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो आयुर्वेद में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि आपका अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन के पेड़ है, अमलताश का पेड़ है, आपका आंवले का पेड़ है, ये सब भी अगर आप साथ में लगाइए तो आप अपना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे शहर में भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग खुद खरीदते हैं सब चीजों को और काफी महंगे दामों पे मिलता है। हार्ट की दवा के लिए जो दवा जितनी है, ये आपकी एलोपैथ होती है, उसमें सब में साइड इफेक्ट होता है। अब अर्जुन किसी को दे रहे हैं, अर्जुन की बार को आप उबाल करके दे रहे हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और हार्ट के बड़े बड़े ब्लॉकेज भी निकल जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, और किसान भाई का लाभ हो सकते बताओ आप
0: जी? अर्जुन है आपका, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, ये सब तो छोटे पेड़ हैं, एलोवेरा, अश्वगंधा, और आपका तुलसी, जैसे दो तरह की तुलसी होती है, शाम तुलसी है, सफेद तुलसी है,
1: वो लगा सकते हैं।
0: जी जी जी जी, वो वायरल डिजीजेस के लिए बहुत अच्छी है। सिट्रोनेला करके एक है आपका, जो लेमन ग्रास कहते हैं, वो अभी लगाते हैं, उसमें कहते हैं कीटनाशक प्रॉपर्टीज होती है, तो लोग जितना भी जो मतलब पर्यावरण से अच्छा जो वो बनाते कीटनाशक बनाते हैं उसमें उसको इस्तेमाल करते हैं।
1: किसान भाई फूल की खेती के कई भी जोन बाटे अच्छा फायदा ले सकते हैं, पर्यावरण के भी फायदा हो सकता है। अगर गेंदा की खेती की जाए तो मच्छर भी नहीं लगते, एक बारे में भी कुछ बताओ।
0: गेंदा की खेती हो सकती है आपकी, गुलाब की खेती हो सकती है, गुलाब को भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, दवा में भी इस्तेमाल होता है, तो गुलाब का इत्र बनता है, और उसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। गेंदा का होता है, लैवेंडर होता है, और भी कई सारे फूल हैं जो बाहर से भी आप ला सकते हैं। आपका जो कैमोमाइल टी जिसको बनाते हैं, जर्मन कैमोमाइल, वो भी मेरे कुछ किसान भाइयों ने कोशिश की है उसको लगाने की, और कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो उसकी ट्रेनिंग होती है, कई जगह ट्रेनिंग होती है, नेचुरल ट्रेनिंग, तो इसको देख करके आप लोग कर सकते हैं।
1: तो सौम्या बहादुर जी, आप आइन वृक्षारोपण से पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ का होता है, एक बारे में बहुत अच्छे से बताएं, आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे वृक्षारोपण से पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ विषय पर डॉक्टर सौम्या बहादुर से।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शाश्वत कुमार की वार्ता, ओरल हाइजीन क्यों महत्वपूर्ण।
1: अच्छी ओरल हाइजीन बनाए रखने के कई सारे फायदे होते हैं। मसूड़ों और दांतों की सुरक्षा, दांतों और मसूड़ों को कैविटी, पायरिया और अन्य बीमारियों से बचाता है। और जैसे कि सांसों की दुर्गंध से छुटकारा, नियमित ब्रश और माउथवॉश से मुंह की बदबू खत्म होती है। पाचन में मदद, स्वस्थ दांत को ठीक तरीके से चबाने में मदद करते हैं जिससे पाचन बेहतर होता है। अन्यथा संक्रमण से बचाव, गंदे दांतों और मसूड़ों से बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर सकते हैं जिससे अन्य बीमारियाँ हो सकती हैं। यही नहीं, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि सफ़ेद और चमकदार दांत। सही देखभाल करने से दांत साफ़ और आकर्षक बने रहते हैं, दिल की सेहत में सुधार रहता है। खराब ओरल हाइजीन से हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इसकी देखभाल ज़रूरी है। डायबिटीज़ कंट्रोल में मदद, मसूड़ों की बीमारी से ब्लड शुगर लेवल प्रभावित हो सकते हैं, इससे मधुमेह बिगड़ सकता है। यही नहीं, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। साफ और स्वस्थ दांतों से मुस्कान अच्छी लगती है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए रोजाना नियमित रूप से 2 बार ब्रश करें, फ्लॉस करें। ओरल हाइजीन को बनाए रखने के कई सारे फायदे होते हैं। जैसे ओरल हाइजीन क्या है? ओरल हाइजीन का ये सेंस होता है कि जैसे हम अपने शरीर के हर अंग को प्राथमिकता देते हैं, वैसे हमको अपनी ओरल कैविटी को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। ओरल कैविटी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके अंग की शुरुआत ही ओरल कैविटी से होती है। आप में कुछ भी, जैसे आपने खाने का सेवन किया, तो वो शुरुआत आपकी ओरल कैविटी से ही होती है, जिसको आपको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको मेंटेन रखने के कई सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मसूड़ों और दांतों की सुरक्षा। दांतों और मसूड़ों को कैविटी से बचाता है अगर आप ओरल हाइजीन अपनी मेंटेन रखते हैं। कैविटी क्या है? कैविटी एक तरीके के दांत में लगने वाले कीड़े हैं जो कि दांतों को डीके करते हैं। डीके मतलब खराब करते हैं। जैसे कि आपने नियमित रूप से ब्रश ना किया और आपने अंत में कुछ भी खाने का सेवन किया, वो आपके दांतों और मसूड़ों के बीच में रह गया, जो कि नियमित रूप से साफ ना होने की वजह से वहीं पे पलने लगेगा और बढ़ने लगेगा और आगे चल के उसमें इन्फेक्शन बनाएगा। इन्फेक्शन के तौर पर वहाँ पे वो पस करेगा, दांतों को सड़ाएगा, मसूड़ों को गलाएगा और इन्फेक्शन करेगा। उसी इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको नियमित रूप से 2 बार ब्रश करना चाहिए, माउथ वॉश करना चाहिए और फ्लॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लॉस एक तरीके का धागा होता है जो आपके दांतों के बीच की स्पेसेस को क्लीन करता है। होता क्या है कि दांत के बीच में जो सासर होते हैं उसमें नियमित रूप से आप जो भी खाना खा रहे होते हैं वो फंसते हैं। यदि वह फंसेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो आपके दांतों के अगल बगल के एरिया को सड़ाएगा, गलाएगा, जैसे मसूड़ों को और दांतों को। उसको साफ रखने के लिए डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करिए, माउथ वॉश का प्रयोग करिए। माउथ वॉश एक क्लोरहेक्सिडीन नामक रसायन है जो कि आपकी ओरल कैविटी को क्लीन करता है और मुंह में रहने वाले पुराने डेब्रीज को साफ करता है, ताकि जब आप ब्रश करें तो वह पूरी तरीके से साफ सुथरा होकर के आपकी ओरल कैविटी को चमकदार बना दे। यही नहीं, अच्छी ओरल कैविटी अगर आप मेंटेन रखते हैं तो आपके मुंह में होने वाली गंभीर बीमारियां, जैसे कि पायरिया मसूड़ों की सबसे खराब बीमारियों में से एक होता है, जो कि ओरल कैविटी में दुर्गंध, बदबू करता है। और यही नहीं, मसूड़ों से खून भी आते हैं। अगर आपको इसको मेंटेन रखना है तो नियमित रूप से आप ब्रश करिए। मुंह में अगर आप किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या दिख रही है तो नियमित रूप से अपने दंत चिकित्सक से परामर्श लीजिए। उसको पलने मत दीजिए, उसको बढ़ने मत दीजिए, नहीं तो वह बीमारी आगे चल के जटिल हो सकती है और डेंटिस्ट के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकती है उसको ठीक करने के लिए। पायरिया से मधुमेह का खतरा बढ़ता है। यही नहीं, आपके हृदय रोगों का भी खतरा बढ़ता है। ये आपके हृदय रोग को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आप अच्छे तरीके से अपनी ओरल कैविटी को मेंटेन रखते हैं तो ये आपके दांतों को अत्यधिक चमकदार और साफ सुथरा बनाए रखता है, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास अगर आपका बढ़ रहा है तो इससे यही प्रभावित होता है कि एक अच्छी मुस्कान आपके पूरे अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को दिखाती है। जितनी अच्छी आपकी मुस्कान होगी उतना अच्छा आपका हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रहेगा। यही नहीं, अगर आप अपने नियमित रूप से 6 महीने पर अपने डेंटिस्ट से परामर्श लेते हैं तो होने वाले आगे की बड़ी गंभीर समस्या से आप बच सकते हैं।
0: ओरल हाइजीन क्यों महत्वपूर्ण, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शाश्वत कुमार की ये वार्ता। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4।

मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 14.3 मेगा हर्ट्ज पर। लीजिए आप सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। रात 9:30 बजे चित्र भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन और दिन में 12:15 पर रामशंकर का ख्याल गायन प्रसारित होगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर शीलाधर की गाय गजलें और शाम 7:45 पर आप सुनेंगे रमा सेन के गाए गीत।

लोक माधुरी कार्यक्रम में सुबह 10:05 पर रचना सरोज और अजय कुमार के गाए लोकगीत प्रसारित होंगे। दिन में 2:30 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत। कलाकार होंगे कृति श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम और हेम श्रीवास्तव। दिन में 12:30 पर फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

एक बार फिर से सुन लीजिए। दिन में 2:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे कृति श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम दास टंडन और हेम श्रीवास्तव। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहने नमिता अग्रवाल की वार्ता सुनेंगी, गांव में शिक्षा का स्वरूप। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे मानिक चंद्र पटेल और साथियों के गाए लोकगीत। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित होगा शाम 5:15। आज इस कार्यक्रम में युवा श्रोता उदित नारायण पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे, आज की शाम आपके नाम। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर भूरेलाल की वार्ता प्रसारित होगी अज्ञेय वर्तमान संदर्भ में, और रात 8:30 सबरस का प्रसारण होगा। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें।

ब्रह्मा तथा दशरथ प्रभु चरणों की वंदना करके सुरलोक के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब स्वयं देवराज इंद्र शोभाधाम शरणागतों को अनंत विश्राम देने वाले जगदीश्वर की स्तुति कर रहे हैं।

अभी आप सुरेश वाडकर और जगजीत सिंह के स्वर में सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से पंडित नरेंद्र शर्मा के बोल। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आवाजें हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की।

और अब अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं गीत गाता चल की रचना। रचना है रविंद्र जैन की, संगीत भी रविंद्र जैन का है, आवाज़ आरती मुखर्जी की।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान कीं।

0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्ष में तेजी से हुए विकास के चलते उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया।
1: ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया और गोरधोइया नाला परियोजना की प्रगति जानने के बाद सड़क परियोजना के चौड़ीकरण का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
2: स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टि एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते।
0: उधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देशभर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रूपये प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रूपये प्रति लीटर हो गई है। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कहीं देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीश की कारपुलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से शर्मा।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर कल से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29

0: उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर कल से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। बांदा जिले में केन नदी में कल नहाने के दौरान दो किशोर सहित 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। एक किशोर का शव नदी से तत्काल निकाल लिया गया, जबकि अन्य दो शव रेस्क्यू अभियान के बाद बरामद किए गए। आईपीएल में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना स्टेडियम में हुए मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया है। देर रात तक चले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ की टीम को जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य दिया, जिसे लखनऊ ने 3 विकेट खोकर मात्र 16.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। लखनऊ की ओर से मिशेल मार्श ने 38 गेंदों में 90 रन की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपने पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।

लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन, राग है चारुकेशी। तबले पर आपके साथ संगत की पंकज कुमार श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं संदीप चक्रवर्ती का राग चारुकेशी में संतूर वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन सुन रहे थे। राग थी चारुकेशी, तबले पर आपके साथ संगत की पंकज कुमार श्रीवास्तव ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी वाद्य वृंद रचनाएं।

0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी वाद्य वृंद रचना। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे।

0: दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी।

0: सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
1: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है।

0: भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के आम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसी कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अहम पेट्रोलियम ज़खायर, तवील मुद्दती LPG सप्लाई और दिफा के मैदान में तआवुन शामिल है। इन मुआहदों पर दस्तखत मगरबी एशिया में जारी महाज़ाराई के दौरान अबू धाबी में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत की सरमायाकारी का अज़्म किया है। वजीर आज़म मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल UAE पहुंचे थे। मुआहदों में अहम शराकत दारी का मुआहदा भी शामिल है, जिस पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी की तेल कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए, जिसका मकसद भारत की तवानाई की फराहमी को मुस्तहकम बनाना है। इस अमल में पेट्रोलियम के जखायर और रकीक कुदरती गैस नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस LPG को जखीरा करने की सहूलतें शामिल हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस माहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम जखायर में UAE की शराकत दारी में इजाफे से 3 करोड़ बैरल्स का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम जखायर कायम होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत कल देर रात

0: नेदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वो अपने दौरे में नेदरलैंड्स के वजीर आजम रॉब जैतन से दोतरफा बातचीत करेंगे और उस मुल्क के बादशाह और मलिका से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम के नेदरलैंड्स के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: ये दौरा दोतरफा ताल्लुकात से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है और उम्मीद है कि हाल ही में किए गए भारत यूरोप आजाद तजारती मुआहदे के बाद भारत यूरोप यूनियन ताल्लुकात वसी तर हो जाएंगे। हफ्ते के रोज वजीर आजम मोदी भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और एआई के मैदानों में बहुत से अहम मुआहदे किए जाएंगे। तजारत के नुक्ते नजर से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम इकतसादी शराकत दार है। ये भारतीय बरामदात और भारत में सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े पैमाने पर शराकत दारी कायम है और ये दोनों ही मुल्क पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, जरी टेक्नोलॉजीज और सेहत के मैदानों में भी एक दूसरे को ताउन देते हैं। नीदरलैंड्स के शहर हेग से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: नीदरलैंड्स के दौरे के बाद वजीर आजम मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में कल स्वीडन के शहर गोटेनबर्ग जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम के लिए कारोबार को मजीद आसान बनाने और जिंदगी को मजीद आसान बनाने के हुकूमत के अजम को दोहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर महसूल, टैक्स या सरचार्ज आयद करने की मीडिया की एक खबर को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि बैरून मुल्क सफर पर इस तरह की पाबंदी लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। बाद में खबरों की इन तंजीमों ने इस रिपोर्ट को वापस ले लिया है और सोशल मीडिया हैंडल्स से इससे मुतालिक पोस्ट को डिलीट कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खबरों की इन सरकर्दा तंजीमों ने इतराफ किया है कि यह रिपोर्ट गलत थी और उन्होंने इस गलती पर मुआजरत का इजहार भी किया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम की बरामद पर ₹3 फी लीटर की खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी आयद की है। वजारत खारजा की तरफ से कल सरकारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। अब यह ड्यूटी ₹23 के बजाय ₹16.50 फी लीटर होगी। हवाई जहाज के ईंधन ATF पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में भी कमी करके इसे ₹33 से ₹16 फी लीटर कर दिया गया है। तब्दील की गई ये शरें अगले 15 दिन तक आयद रहेंगी। 15 दिन की यह मुद्दत आज से शुरू हो रही है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोलियम और डीजल पर आयद एक्साइज ड्यूटी की मौजूदा शरों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 2047 तक मुनशियात से पाक करने का कौमी मकसद तय किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की हिफाजती एजेंसियों ने मुनशियात के मुनज्जम गिरोहों का खात्मा करने का एक खाका तैयार किया है और वो इस मकसद की जानिब सरगर्मी से काम कर रही है। कल नई दिल्ली में RN Kao यादगारी लेक्चर देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि नशीली अशिया की नाजायज तजारत महज नज्म व जब्त का मामला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मामला है जिसके तवील मुद्दती असरात समाज और मुस्तकबिल की नस्लों पर मुरतब होते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए जामे कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने नशीले मादों के तहत हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी का यह कहते हुए एक बार फिर जिक्र किया कि मुल्क इस बात को यकीनी बनाएगा कि महज एक ग्राम नशीला मादा भी इसके इलाके को गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हुए भारत में न तो दाखिल हो और न यहां से जाए। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम का दौरा करेंगे। दौरे में नायब सदर जमहूरिया सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में रियासत के यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इन तकरीबात में शिमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग भी शिरकत करेंगे। सिक्किम आज अपना यौम तासीस मना रहा है। 1975 में बादशाहत के खत्म होने के बाद ये भारत की 22वीं रियासत बनी थी। इम्कान है कि नायब सदर जमहूरिया अपने क्याम के दौरान चंद अहम मकामात का भी दौरा करेंगे। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। ये FIR मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की हालिया चुनाव मुहिम के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियालंगेज बयान देने के इल्जाम में दर्ज की गई है। शिकायत करने वाले का इल्जाम है कि उसने बाज़ बयानात जिनमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नाजेबा तबसरे भी शामिल हैं।

0: सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर शेयर किए गए, जिनमें रुकन पार्लियामेंट का सरकारी फेसबुक पेज भी शामिल है। इसी दौरान एक और वाकये में मगरबी बंगाल हुकूमत ने 3 सीनियर IPS अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, जिनमें कोलकाता पुलिस के साबिक कमिश्नर विनीत गोयल भी शामिल हैं। ये कार्रवाई RG कर मेडिकल कॉलेज इस्मत दरी और कत्ल केस की तहकीकात में मुबैना कोताहियों के सिलसिले में की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने मुनसिफाना और शफाफ जांच के अजम का इरादा करते हुए 12वीं जमात के तलबा के लिए नतीजे के बाद फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक एक नोटिस जारी किया है। नोटिस बोर्ड में कहा गया है कि अपने नतीजे से गैर मुतमईन तलबा 2 मरहलों पर मुश्तमिल नजर सानी के निजाम से फायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तलबा अपनी जांच की गई जवाबी कॉपियों की स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जिन्हें जायजे के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरे मरहले में तलबा किसी भी फर्क या गलती की तस्दीक करा सकते हैं या मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर मखसूस जवाब की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। CBSE के मुताबिक स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें इस माह की 19 से 22 तारीख तक जमा कराई जा सकती हैं, जिसकी फीस ₹700 फी मजमून मुकर्रर की गई है। इसी तरह तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें इस माह की 26 से 29 तारीख के दरमियान जमा कराई जा सकेंगी। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनकरीब मुल्क में कोई भी गरीब शख्स नहीं होगा जिसके पास मुस्तकिल घर न हो। उन्होंने कहा कि सभी के लिए पक्के मकानात की फराहमी मरकजी हुकूमत का पुख्ता अज़्म है। जनाब चौहान महाराष्ट्र में सतारा के मकाम पर मुनाकदा महा आवास अभियान के तहत तामीर शुदा मकानात के इफ्तिताह के मौके पर इज्तिमा से खिताब कर रहे थे।
1: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैठलाट बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने ऐलान किया है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए NEET UG 2026 इम्तिहान दोबारा 21 जून को मुनाकिद होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एजेंसी ने उम्मीदवारों और वालिदैन से कहा है कि वो मुसद्दका और मुस्तनद मालूमात के लिए सिर्फ NTA के सरकारी ज़राए पर ही एतमाद करें। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को मुनाकिदा इम्तिहान पेपर लीक होने के इल्जाम के बाद रद्द कर दिया गया था। इस मामले की तहकीकत इस वक्त मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI कर रही है। इसराइल और लबनान ने वाशिंगटन में होने वाले एक और दौर के मुजाकरात के बाद अपनी जंगबंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तेफाक किया है। अमरीका के महकमे खारजा के तर्जमान टॉमी पिगोट ने कहा है कि 16 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी को मजीद 45 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि मजीद पेशरफ्त मुमकिन हो। यह फैसला अमरीका की मेजबानी में अमरीका और लबनान के दरमियान 2 रोज तक जारी रहने वाली इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज मुजाकरात के इख्तिताम के बाद किया गया, जो कल मुकम्मल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पिगट ने कहा कि अमरीकी महकमे खारजा 2 और 3 जून को सियासी मुजाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करेगा। इसके अलावा इस महीने की 29 तारीख को पेंटागन में सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत का मरहला भी शुरू किया जाएगा, जिसमें दोनों ममालिक के फौजी वफूद शिरकत करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के इलाकों में आज शदीद गर्मी की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कोंकण और गोवा के इलाकों में भी आज गर्म और हब्स वाले मौसम की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अंडमान व निकोबार जजायर में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल्स मुकाबले में आज सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो जी फी की जोड़ी से होगा। इस दौरान PV सिंधु और लक्ष्य सेन समेत दीगर भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की आलमी नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से 21-19, 18-21, 15 से हार गई है, जबकि मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलावुत वितिटसर्न से 19-21, 16-21 से हार का सामना

0: सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के निशाने का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर 4 गेंदों में ये मैच जीत लिया। आज शाम ईडन गार्डन में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी शहर से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर नरेंद्र मोदी के मुत्तहदा अरब इमारात दौरे को शह सुर्खी बनाया है। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ हुई दो तरफा मीटिंग के दौरान कई अहम वादे तय पाए, जिनमें LPG की सप्लाई और 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी काबिल जिक्र हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर मोदी ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में अमन के लिए हर मुमकिन तआवुन देने को तैयार है। ब्रिक्स ममालिक ने ग्लोबल साउथ और कसीर कुतबी आलमी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के इजलास में जारी एक सदारती बयान में ये बात कही गई। इस खबर को रोज़ामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। अखबारों ने नीट UG 2026 का इम्तिहान दोबारा 21 जून को कराए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग की पीछे हुई मीटिंग में चीन ने मशरिक़ वुस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी और जामे जंगबंदी पर जोर दिया। इस खबर को रोज़नामा इनकलाब ने नुमाया तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने बहुत से माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफ़र पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जाँचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे नमस्कार प्रयागराज।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं नमस्कार, आज इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़रा सोचिए, किसी सुबह हम उठें और हमें सूरज का उजाला नज़र ना आए, कुछ डरावनी सी कल्पना है ना ये? जी हाँ, प्रकाश। प्रकाश जिसके बिना जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते, उसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। आज 16 मई को हम विश्व प्रकाश दिवस मनाते हैं, जो कि अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में पहली बार सफल लेजर प्रयोग के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है विज्ञान, कला, संस्कृति और शिक्षा में प्रकाश की भूमिका के साथ साथ प्रकाश आधारित तकनीकों जैसे लेजर तकनीक के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। श्रोताओं पहले आपको बता दें लेजर का शाब्दिक अर्थ क्या है। लेजर का शाब्दिक अर्थ है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एक ऐसी तकनीक है जिसने चिकित्सा, उद्योग, मनोरंजन, संचार हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। हम सब ये जानते हैं कि प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रकाश केवल अंधेरे को ही दूर नहीं करता, बल्कि जीवन का आधार भी प्रकाश ही है। पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से ही जीवन पाते हैं। फसलें पकने में भी प्रकाश की आवश्यकता होती है।

प्रकाश विज्ञान यानी ऑप्टिक्स के ज़रिए ही हमें माइक्रोस्कोप, फाइबर ऑप्टिकल केबल, दूरबीन, स्मार्टफोन स्क्रीन और इंटरनेट मिला है। साल 2018 में यूनेस्को ने इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाना शुरू किया, जिससे दुनिया भर में इसके महत्व पर चर्चा हो सके। आज इस दिन को मनाते हुए हम महान वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन को भी याद करते हैं, जिन्होंने दुनिया को रमन प्रभाव से अवगत कराया था। रमन प्रभाव यानी किसी माध्यम से गुजरने पर प्रकाश का व्यवहार कैसा है इसका ज्ञान, ये एक ऐसी खोज थी जिसने उन्हें एशिया में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिलाया। प्रकाश ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। लेजर तकनीक के जरिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिना किसी चीरफाड़ के हो जाता है। कैंसर का इलाज, दांतों का इलाज, एंडोस्कोपी आदि सब प्रकाश की ही देन है। प्रकाश दिवस की बात हो और सौर ऊर्जा की बात न हो तो बात अधूरी ही रह जाएगी। सौर ऊर्जा, जो कि समय की सबसे बड़ी मांग है, सुरक्षित और अक्षय ऊर्जा का भंडार है। यही नहीं, सौर ऊर्जा हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का दोहन न होकर रूपांतरण होता है, बिजली बनती है। हमारे घरों में प्रयोग की जाने वाली LED लाइट्स, फोटोवोल्टिक सेल, एक्सरे मशीनें, टेलीस्कोप कैमरे और टेलीविज़न स्क्रीन, ये सब प्रकाश से ही संचालित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का उद्देश्य वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना और शांति और सतत विकास के लिए विज्ञान की क्षमता का उपयोग करना है। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमारे भारतीय दर्शन में ऐसा कहा जाता है कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें और अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। तभी तो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व और दीपावली पर की जाने वाली रोशनी यही संदेश देते हैं। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अंधकार यानी अंधविश्वास, प्रदूषण, अज्ञान से हम लड़ेंगे और ज्ञान की रोशनी फैलाएंगे।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये पहला गाना फिज़ा फिल्म से। गीत के बोल हैं गुलजार के, संगीत है अनु मल्लिक का, आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये आखिरी गाना शान और उस्ताद राशिद खान की आवाज़ों में। फिल्म है जब वी मेट, गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का।

श्रोताओं, उम्मीद है आपका मूड नॉस्टैल्जिक ज़रूर हो गया होगा। भाई, हमारा तो ज़रूर हुआ और खुशी भी हुई, उम्मीद है आपको भी हुई होगी। ये था आज का फिल्म संगीत।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण, हमारे अगले प्रसारण की थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
1: बिजनौर में आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारी तेज हो गई है। स्वयं जनगणना के अंतर्गत 7 मई से 21 मई 2026 के बीच नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करा रहे हैं। जनगणना का मुख्य प्रथम चरण मकान सूचीकरण और आवास जनगणना 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा, जिसके लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित किया गया है जो घर घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के रूप में न्याय की ओर कदम बढ़ाते हुए 9 मई को जनपद न्यायालय परिसर और तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान रिकॉर्ड 13,000 से अधिक मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद और बैंक रिकवरी जैसे मामलों में समझौते के आधार पर करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि पक्षकारों को दिलाई गई। जिला जज ने आम जनमानस से अपील की कि वे सुलभ न्याय के लिए लोक अदालतों का अधिकतम लाभ उठाएं।
2: इन लिटिगेंट्स के सुविधा के लिए ऐसे मामले जो कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने नोटिस दिया है। विवादकारी अधिक से अधिक संख्या में आए, इस लोक अदालत का फायदा उठाएं और अपने वाद निस्तारित करें। पिछली बार की लोक अदालत, उस लोक अदालत में जनपद बिजनौर में लगभग 14,000 के आसपास वाद निस्तारित हुए थे एक दिन में, तो इस बार भी हम यह आशा करते हैं कि उसको क्रॉस करेंगे।
1: महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपद की होनहार छात्रा को सांकेतिक रूप से एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान सांकेतिक डीएम के तौर पर छात्रा ने कलेक्ट्रेट में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में प्रशासनिक नेतृत्व की भावना और आत्मविश्वास जागृत करना है। बिजनौर से ताल्लुक रखने वाली पूर्व राज्य मंत्री ओमवती देवी का निधन हो गया। वह नगीना विधानसभा से 4 बार विधायक और 1998 में बिजनौर से सांसद रही। 9 मई को हुए उनके निधन से जिले के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। नगीना सांसद चंद्रशेखर और विधायक मनोज पारा सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से मिनिमली इन

0: पेसिस सर्जरी इकाई की स्थापना की गई है। इस नई मशीन के आने से अब मरीजों को बड़े चीरे वाली सर्जरी के बजाय छोटे छेद के माध्यम से सर्जरी की सुविधा मिल सकेगी। मशीन का औपचारिक उद्घाटन सदर विधायक और जिलाधिकारी द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी टीम उपस्थित रही। स्थापित की गई मशीन अत्याधुनिक 4K अल्ट्रा HD विजन सिस्टम से लैस है। मशीन की विशेषताओं के बारे में महात्मा विदुर राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर तुहिन वशिष्ठ ने बताया।
1: सरकार ने ये मशीन उपलब्ध कराई है लेप्रोस्कोप। इसके द्वारा आप क्या होगा कि सिर्फ छोटे से चीरे लगा के दूरबीन के द्वारा हम पेट के अंदर के सभी ऑपरेशन कर पाएंगे, जिससे कि क्या फायदा होगा, पहले चीरा लगता था बड़ा, उससे खून भी ज़्यादा बहता था, उसके अलावा इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते थे, दर्द ज़्यादा होता था मरीज को। अब क्या होगा कि छोटा सा चीरा लगेगा, अगले दिन छुट्टी होगी, खून भी कम बहेगा और इन्फेक्शन के चांस भी कम हो जाएंगे।
0: संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की क्षेत्रीय पोषण सलाहकार नोरा होप ने जनपद बिजनौर के विकास खंड नूरपुर स्थित THR ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र तथा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय विद्युत प्रेरणा उत्पाद प्लांट का भ्रमण और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए इस समग्र मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इसे एक अद्वितीय प्रेरणादायक और विश्व स्तर पर अनुकरणीय अनुभव बताया। निरीक्षण के दौरान सुश्री नोरा ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा चालित उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग और लाभार्थियों तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि THR प्लांट में महिलाओं की भूमिका केवल श्रमिक के रूप में नहीं बल्कि निर्णायककर्ता, प्रबंधक और उद्यमी के रूप में स्थापित है। सुश्री नोरा ने कहा कि भारत में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत और प्रेरणादायक मॉडल देखा है, जहां महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि परिवर्तन की नेतृत्व करता है। यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग और सप्लाई चेन के प्रत्येक चरण को जिस आत्मविश्वास और दक्षता से संचालित कर रही हैं, वह वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने यह भी साझा किया कि पिछले वर्ष रोम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा THR प्लांट की कार्यप्रणाली पर एक प्रस्तुति दी गई थी, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पूरे प्लांट का संचालन करते हुए दिखाया गया था।
2: बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख है अम्मार रिजवी का।
3: श्रावस्ती में आगामी जनगणना 2027 को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वगणना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मतगणना में लगे कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है। दो चरणों में होने वाली इस प्रक्रिया में सबसे पहले 7 से 21 मई तक स्वगणना होगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपेक्षित तैयारियां समय रहते ढंग से पूरी करें। उन्होंने ये भी बताया कि ये जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिकों के लिए स्वगणना का भी प्रावधान होगा। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनेगी। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने तहसील इकौना सभागार में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे लाभार्थी सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकें। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अधिकांश पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा चुका है। शेष लाभार्थियों को शीघ्र आच्छादित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। श्रावस्ती में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती द्वारा ग्राम पद्धिया में श्रमिकों के अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारों, श्रम कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। श्रावस्ती की जिलाधिकारी ने बताया कि देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा जनपद श्रावस्ती में संध्या संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत दिन भर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान, विकास कार्यों का निरीक्षण और योजनाओं का लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। श्रावस्ती में कुपोषित बच्चों के बेहतर इलाज एवं देखभाल के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केंद्र संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुपोषित बच्चों का इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है। एनआरसी में भर्ती बच्चों के अभिभावकों को ₹50 प्रतिदिन नाश्ता, दोपहर व रात्रि का भोजन और भर्ती बच्चों को डायटिशियन के हिसाब से दलिया, खिचड़ी और हलवा उपलब्ध कराया जाता है। एनआरसी के चिकित्सक डॉक्टर गोविंद शुक्ला ने बताया कि केंद्र पर

0: भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों को दवाइयाँ, चिकित्सा प्रबंधन और विशेष पौष्टिक आहार मुफ्त में दिया जाता है। माताओं और देखभाल करने वालों को बच्चों के उचित खानपान, साफ सफाई और सही देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। भर्ती बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, वजन और लंबाई की जाँच की जाती है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए NRC में एक प्ले एरिया की सुविधा भी है। उन्होंने जनपद वासियों से आग्रह किया है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे जनपद का कोई भी बच्चा कुपोषित न होने पाए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव एक दिवसीय जनपद भ्रमण के लिए विकासखंड जमनुहा के अंतर्गत सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर पहुंची। उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नारी शक्ति के सम्मान की रक्षा और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए नारी शक्ति वंदन जन आक्रोश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति केवल घर की गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की शक्ति है। जब तक नारी सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करेगी तब तक समाज का विकास अधूरा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को बेहतर करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो निश्चित ही समाज सशक्त होता है और राष्ट्र प्रगति करता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी ने विकासखंड जमनुहा के अंतर्गत कई गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर चल रही गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गेहूं क्रय केंद्र क्रमशः बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति लक्ष्मणपुर सिमरहिया, साधन सहकारी समिति लिमिटेड शिकारी चौड़ा और महादेवा नासिरगंज का औचक निरीक्षण कर गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय करने आए किसानों से भी संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। गेहूं बेचने आए किसान भाइयों के लिए क्रय केंद्र पर आने जाने का रास्ता और वाहनों के पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि किसानों को कोई असुविधा न होने पाए। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी प्रयागराज है। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में देशगान।

आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान। ये आकाशवाणी प्रयागराज है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। हमारे अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया तारिक है। मैं इरम इनानी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ बैच 2025 से। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है खुद पर एतमाद। निशानों से नहीं हौसलों से पहचान बनती है, निशानों से नहीं हौसलों से पहचान बनती है, खुद पर यकीन हो तो हर जीत आसान बनती है। शहर के कोने में एक पेंटर रहता था। वो अपनी बनाई गई तस्वीरों के लिए लोगों के बीच बहुत मशहूर था। एक दिन उस पेंटर ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसे देखने के बाद उसे लगा कि वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन तस्वीर है और उसमें कोई भी कमी नहीं है। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी इस तस्वीर को लोगों को दिखाया। वो अपने एक दोस्त के पास गया और उसे उस तस्वीर के बारे में बताया और कहा कि देखो, ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। उसके दोस्त ने उससे कहा कि अगर तुम वाकई जानना चाहते हो इसमें कोई कमी है या नहीं, तो तुम इसे एक ऐसी जगह ले जाके रख दो जहाँ से लोगों का आना जाना हो, और साथ ही में इसके एक बोर्ड भी रखना जिस पे तुम ये लिख दो कि अगर आपको इसमें कोई गलती नज़र आती है तो आप उस पे निशान लगा दीजिए। उस पेंटर ने अपने दोस्त की बात मानी और बिल्कुल वैसे ही किया। अपनी बनाई हुई तस्वीर को उस जगह पे रख के वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी तस्वीर निशानों से भर गई थी। वो ये देखकर बहुत मायूस हुआ। वो अपने दोस्त के पास गया और उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि मुझे तो लगता था कि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन लोगों ने इसमें इतनी गलतियाँ निकाली हैं कि इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। उसके दोस्त ने उसकी बात सुनी और वो कुछ देर चुप रहने के बाद उससे कहा कि सुनो, तुम अब एक काम करो, तुम दोबारा एक ऐसी ही तस्वीर बनाओ और उसे उसी जगह पे ले जाके रख दो, लेकिन इस बार तुम उस बोर्ड पे ये लिखना कि अगर आपको इसमें कोई गलती नज़र आती है तो आप उसे ठीक कर दीजिए। उस पेंटर ने अपने दोस्त की बात मानते हुए ऐसे ही किया। दोबारा वैसी ही तस्वीर बनाई, लेकिन इस बार उसने ये लिखा कि अगर आप लोगों में से किसी को भी इस तस्वीर में कोई कमी नज़र आती है तो आप उसे ठीक कर दीजिए, और उसे वहाँ पे रख के वहाँ से चला गया। जब शाम हुई तो वो वापस लौटा। वो अपनी तस्वीर को देख के हैरान रह गया क्योंकि वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं थी। वो अपने दोस्त के पास वापस गया और उसे सारी बात बताई। उसके दोस्त ने कहा कि सुनो, जो लोग होते हैं उनका काम होता है चीज़ों में, लोगों में कमियां निकालना, गलतियां निकालना।

0: करना, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप इस कमी को ठीक कीजिए या फिर बताइए कि ऐसे इसे कैसे ठीक की जाए, तो वो लोग खामोश हो जाते हैं, वो कुछ कह नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और वो करना चाहिए जो हमें सही लगता है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उस दिन उस पेंटर के एक बात समझ में आई, खुद पर एतमाद होना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और इससे हम हर इम्तिहान जीत सकते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक हुस्ना है। हम इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट प्रॉफ के स्टूडेंट हैं। आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं जिसका टॉपिक है डिलीट बटन। अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ का एक दिन डिलीट करने का मौका मिले तो वो कौन सा दिन चूज़ करेगा? क्या वो दिन जब सब कुछ गलत हुआ था, या वो दिन जहाँ से सब बदला? ये कहानी है नैना की। नैना एक नॉर्मल सी कॉलेज जाने वाली लड़की थी, रिस्पॉन्सिबल, सिंसियर, पर थोड़ी सी सेल्फ डाउट वाली। हर चीज़ परफेक्ट करने की आदत, और जब परफेक्ट ना हो तो ख़ुद को इल्ज़ाम देने की आदत। एक दिन उसके फ़ोन पर एक अननोन ईमेल आया। सब्जेक्ट था, अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन डिलीट करो। पहले उसने इग्नोर किया, फिर दोबारा नोटिफिकेशन आया। क्यूरियोसिटी डर से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसने ईमेल ओपन किया, अंदर सिर्फ एक लाइन थी, अपना वो दिन चुनो जो तुम मिटाना चाहती हो। नीचे एक बटन था, सेलेक्ट। नैना की माँ उसे हमेशा कहती थी, बेटा ज़िंदगी में हर हार ज़रूरी होती है। जीत तुम्हें खुशी तो देती है, पर हार तुम्हें मजबूत बनाती है। पर नैना को ये बातें थोड़ी फिल्मी लगा करती थी। उसे लगता था डर का क्या फ़ायदा अगर उसे अवॉइड किया जा सकता हो। उसने बिना सोचे एक दिन चुन लिया, वो दिन जब वो इम्तिहान में फ़ेल हुई थी, वो दिन जब उसने खुद को सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस किया था। उसने क्लिक किया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगले दिन सब नॉर्मल था, कॉलेज, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, पर कुछ अलग था। नैना को वो हार याद ही नहीं थी, ना वो रात, ना वो आंसू, ना वो अफसोस, जैसे वो दिन कभी मौजूद ही नहीं था। शुरू में उसे ऐसा लगा कि मुझे हल्का महसूस हो रहा है, पर धीरे धीरे कुछ अधूरा लगने लगा, जैसे कोई मखसूस चीज़ जो उसे याद ही नहीं आ रही है। कुछ दिन बाद एक और इम्तिहान आया, इस बार नैना पास हो गई अच्छे मार्क्स के साथ। सब खुश थे, पर नैना कुछ फील ही नहीं कर पाई, ना रिलीफ, ना एक्साइटमेंट, ना कॉन्फिडेंस, ना खुशी, उसे सिर्फ एक खालीपन महसूस हो रहा था। तब उसे अपनी माँ की बात याद आई, हार तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। तब उसे समझ आया, उसने सिर्फ एक दिन नहीं डिलीट किया था, उसने वो स्ट्रगल डिलीट किया था जिसने उसे फील करना सिखाया था। उसने दर्द नहीं, अपनी तरक्की की बुनियाद डिलीट कर दी थी। उस रात नैना ने अपना फ़ोन उठाया वो ईमेल ढूंढने के लिए, पर इनबॉक्स में कोई ईमेल था ही नहीं, डिलीट बटन कभी था ही नहीं। वो खुद ही अपने दर्द से भाग रही थी, क्योंकि ज़िंदगी में हम कुछ डिलीट नहीं करते, हम बस उन्हें महसूस करना बंद कर देते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, अपने फेलियर, अपने दर्द को मिटाने की कोशिश मत करो। वही दर्द तुम्हें वो इंसान बनाता है जो तुम बिना दर्द के कभी बन ही नहीं पाते। इसी स्टोरी पर मैं एक शेर पेश करना चाहती हूँ। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। शुक्रिया
2: सामईन, ये था हमारा आज का खुसूसी ओबी प्रोग्राम कैंपस डायरी, जिसमें हमने इरम मेडिकल कॉलेज के बासलाहियत तलबा की खूबसूरत तख्लीकात आप तक पहुँचाईं। यकीनन इन नौजवान आवाज़ों में आपने जज्बों की सच्चाई, ख्याल की ताजगी और मुस्तकबिल की रोशन झलक महसूस की होगी। यही नौजवान हमारे आने वाले कल के मेहमान हैं, जो न सिर्फ जिस्मों का इलाज करेंगे बल्कि अपने शऊर, हसासियत और तख्लीकी सलाहियतों के ज़रिए माशरे की फ़िक्री व जज्बाती रहनुमाई भी करेंगे। आज की महफिल इस बात की गवाह रही कि इल्म और अदब जब एक साथ चलते हैं तो शख्सियत में एक नया वक़ार और निखार पैदा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप इन उभरते हुए कलमकारों की हौसला अफजाई के लिए हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। फिर मिलेंगे किसी और दिन और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर को दीजिए इजाज़त। आदाब।

0: आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ।
1: विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में, क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शीलाधर की गाई गजलें। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शीलाधर की आवाज़ में ये गज़ल।

आप सुन रहे थे शीलाधर की गाय गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की साझेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसन ने किया। एक रिपोर्ट।
1: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया।

0: गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। और खेलों में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर रिजुद्दीन और गो शी फेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक माधुरी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रचना सरोज और अजय कुमार के गाए लोकगीत। सबसे पहले हम आपको रचना सरोज के स्वर में सुनवा रहे हैं ये देवी गीत।

लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रचना सरोज और अजय कुमार के गाए लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं हमसे है मुकाबला फिल्म से। बोल हैं पीके मिश्रा के, संगीत ए आर रहमान का और आवाजें हैं शंकर महादेवन, ए आर रहमान और नेओल जेम्स की।

0: भाई गाने के आखिर में सवाल तो बहुत सही किए गए थे। हम आपको सुनवा रहे हैं क्या कूल हैं हम फिल्म से टाइटल सॉन्ग। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक, आवाज़ें हैं कुणाल गांजावाला, के और अनु मलिक की।
1: क्या कूल हैं हम, क्या कूल हैं हम, क्या कूल हैं हम, क्या कूल

कभी हाँ कभी ना, ये है उस फिल्म का नाम जिसका गाना अब आप सुनेंगे। कुमार सानू की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और ये है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। फिल्म है दौड़। गीत के बोल हैं महबूब कोतवाल के, संगीत ए आर रहमान का और आवाज़ मेडली की।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत एक ही कलाकार कार्यक्रम, तो बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब। श्रोताओं को रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वस्थ और मस्त इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा प्रोग्राम सुनेंगे और रेडियो सेट के करीब आ जाइए। आज हम जिस कलाकार के बारे में बातें करेंगे, लोग उन्हें ही मैन के नाम से जानते हैं। रोमांस हो, एक्शन हो या कॉमेडी, हर किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हर दिल पर राज करने वाले अभिनेता धर्मेंद्र जी की।

भाई ये फिल्म कौन भूल सकता है, कोई नहीं भूल सकता है। दर्शक इस फिल्म को इस कदर मोहब्बत करते थे कि आज भी लोग देखना बहुत पसंद करते हैं शोले फिल्म को। सन 1997 में धर्मेंद्र जी को हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। भारत की 15वीं लोकसभा के आप सदस्य भी थे। सन 2012 में धर्मेंद्र जी को भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया और अभी अभी हाल ही में सन 2026 में मरणोपरांत पद्मश्री से नवाजा। धर्मेंद्र जी एक हसमुख स्वभाव के मिलनसार व्यक्तित्व के मालिक थे। श्रोताओं आपको बताऊं, जब सन 1997 में धर्मेंद्र जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिल रहा था,

तो पुरस्कार लेते समय जब उन्होंने दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो के सामने सर झुकाया तो दिलीप कुमार भावुक हो गए। दिलीप कुमार ने उस वक्त मजाकिया लहजे में कहा कि जब मैं भगवान से मिलूंगा तो मैं उनसे अपनी एक शिकायत जरूर करूंगा कि आपने मुझे धर्मेंद्र जितना सुंदर क्यों नहीं बनाया। और धर्मेंद्र जी इस बात को सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए।

गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आज धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी यादें हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। श्रोताओं, क्या हम भूल सकते हैं धर्मेंद्र जी को? बहरहाल, बच्चे, पत्नी, बेटियां, धर्मेंद्र जी का खुशहाल परिवार और सबके प्यारे धर्मेंद्र, 24 नवंबर सन 2025 की वो सुबह हुई कि हर दिल पर राज करने वाले धर्मेंद्र जी ने आंखें नहीं खोली। सुबह तो हुई पर सांसों ने साथ छोड़ दिया। वो मुस्कुराता हुआ अभिनेता उस अनवरत यात्रा पर निकल पड़ा जहां से कोई लौट कर नहीं आता। आती हैं तो सिर्फ यादें। जी हाँ श्रोताओं, अब उनकी यादें ही तो हैं जो हमारे बीच सदा सदा सदा के लिए जिंदा रहेंगी।

सचमुच अब हमारी आवाजें उन तक कभी नहीं पहुंचेंगी, पर यादें उनकी हमारे दिलों में सदा सदा जिंदा रहेंगी।

वो नहीं है तो क्या है हुआ, वो नहीं है तो क्या हुआ, उनकी यादें तो हैं, उनका साया तो है ख्यालों में, वो साथ हैं ये उम्मीद है हर किसी को। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को। प्रस्तुति दीपक राय की थी। श्रोताओं, बाय बाय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

श्रोताओं, घड़ी की सुइयां 11:30 बजा रही हैं और ये वक्त है फिल्म संगीत कार्यक्रम का। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म से, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है कुमार शानू ने।

भाई तू शायर है, मैं तेरी शायरी। क्या खूब लिखा है लिखने वाले ने। और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उस गीत को हमने लिया है बागमा फिल्म से, और इस गीत को अपनी स्वर से सजाया है अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक ने। समीर की रचना है, आदेश श्रीवास्तव ने संगीतबद्ध किया है। इस गीत में दो जोड़ियाँ जब अलग हो जाती हैं तो अपना दर्द किस तरह बयां करती हैं, इस गीत में ये लिखा है समीर जी ने। आप भी सुनिए।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम।

सचमुच दोस्तों, जब दो जोड़ियां अलग होती हैं तो वो क्या महसूस करती हैं, समीर जी ने बखूबी इस गीत में बयां किया है। और अब हम आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है जगजीत सिंह ने। समीर की रचना है, आदेश श्रीवास्तव का संगीत है। इस गीत में समीर जी ने एक पिता के दर्द को बयां किया है। वो अपनी बेटी से क्या कहना चाहता है, आप भी सुनिए। हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम आपको कैसा लगा।

ये दर्द हर उस पिता की है जिसके आंगन में एक नन्ही मुन्नी चिड़िया चहचहाती है। एक समय आता है जब उसे विदा करना पड़ता है।

सचमुच वो लम्हा कितना कठिन हो जाता है जब एक पिता अपनी बेटी को अपने हाथों से दूसरे के हाथों में सौंपता है। कितनी उम्मीदें, कितनी ख्वाहिशें उस पिता के दिमाग में होती हैं, दिल में होती हैं। ये दर्द समीर जी ने इस गीत में बखूबी बयां किया है और उस बेटी की यादें बहुत याद आती है जब वो ससुराल चली जाती है। श्रोताओं, अब हम आपको गीत सुनवाते हैं यादें फिल्म का, और इस गीत को अपनी स्वर से सजाया है सुनिधि चौहान और महालक्ष्मी ने। आनंद बख्शी की रचना है, अनु मलिक का संगीत है और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर। ये गीतों का सफ़र आप तय कर रही हैं अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव के साथ।

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: सचमुच यादें याद आती हैं, याद आती है उससे नन्ही सी चिड़िया का अपने आंगन में चहकना, खिलखिलाना, और उसके हाथों की वो अजीब सी नक्शे वाली पहली रोटी। कितनी खूबसूरत यादें हैं। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एकत्रित इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला

मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah extended greetings to the people of Sikkim on their statehood day. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Malaysian shuttlers Nuruzzuddin and Goh Zefai in semi-finals of Thailand Open in Bangkok today. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Gujarat Titans at the iconic Eden Gardens this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे, प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और अब लीजिए सुनिए प्रयागराज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:15 बजे आप सुनेंगे रामशंकर का ख्याल गायन। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण 12:30 बजे किया जाएगा, प्रस्तुति मधु कुमार की है। दोपहर 1:15 बजे पनघट कार्यक्रम में बात होगी पति पत्नी कैसे बनाए रखें आपसी सामंजस्य, लोकगीत सुनिएगा सुषमा मौर्य के स्वर में। साथ ही नमिता अग्रवाल की वार्ता गांव में शिक्षा का स्वरूप सुनिएगा। और रसोई घर से किचन को साफ और व्यवस्थित कैसे रखें और क्यों रखें आप सुनेंगे। लोकगीत कार्यक्रम में दोपहर 2:30 बजे कृति श्रीवास्तव पुरुषोत्तम और हेम श्रीवास्तव के स्वर में गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:30 बजे। शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी देश के विकास में महिलाओं की भूमिका और आधी आबादी पर। प्रेरणापुंज में नीलम संजीव रेड्डी पर होगी बात और आज के शाम आपके नाम केंद्रित होगा उदित नारायण पर। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में बात होगी नए बागों की देखभाल और परंपरागत खेती पर। मानिक चंद्र पटेल के स्वर में गाए लोकगीत आप सुनेंगे। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर भूरे लाल की वार्ता अग्नि वर्तमान संदर्भ में आप सुनेंगे। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। श्रोताओं लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। जनपद प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार विमलेश शुक्ल ने हमें सूचित किया है कि सच्चिदानंद शुक्ल उम्र 62 वर्ष गांव मन्ना का पुरवा से 23 फरवरी 2026 से लापता हैं। इनकी ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है, रंग गोरा है, इन्होंने सफ़ेद रंग की धोती और कुर्ता पहन रखा है। जिसे भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो वो कृपया लालगंज थाना से संपर्क करें। इसी संबंध में लीजिए एक और सूचना। जनपद कौशाम्बी से प्राप्त सूचना के अनुसार सत्यप्रकाश की पुत्री प्रियांशी 24 मार्च 2026 से मोहम्मदपुरा असवा से लापता हैं। प्रियांशी की उम्र 16 वर्ष है, रंग गेहुआ है, बाल काले हैं, चेहरा लंबा है, ऊंचाई 4 फुट 6 इंच है। जिसे भी प्रियांशी के बारे में जानकारी प्राप्त हो वो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9696677951। मोबाइल नंबर एक बार पुनः नोट कर लें 9696677951। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। दोपहर के 12:15 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप राम शंकर का ख्याल गायन सुनेंगे। राग है शुद्ध सारंग और आपके साथ तबले पर संगत किया है श्रवण कुमार भट्ट ने। हारमोनियम पर हैं शमशाद अहमद खान।

था शुद्ध सारंग, आपके साथ तबले पर संगत किया श्रवण कुमार भट्ट ने और हारमोनियम पर थे शमशाद अहमद खान। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम। अपना नाम बता दीजिए।
1: सबसे पहले मैडम साहब बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: विकास बोल रहे हैं जादनपुर प्रयागराज से ट्रक ड्राइवर
0: जी। विकास जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है रिफ्यूजी।
0: रिफ्यूजी का कौन सा गाना है?
1: और गाने का बोल है मेरे हम सफर, मेरे हम सफर।
0: चलिए तो आपको हम सुनवाने जा रहे हैं रिफ्यूजी फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।
1: धन्यवाद।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और मैं हूं मधु। आपके गीतों के साथ अपना नाम बता दीजिए।
1: दोदापुर पोस्ट उमरी प्रयागराज निवासी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आरणीय मधु दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी प्रयागराज के माध्यम से। दीदी सादर सप्रेम प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: दीदी? आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है शराबी
0: जी,
1: और गीत के बोल है
0: जी बिल्कुल सुनवाएंगे। अमिताभ बच्चन और जया प्रदा के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना है
1: जी, बहुत ही सुंदर प्यारा सा गीत है, मस्ती भरा है और बहुत ही अच्छा लगता है सुनकर
0: जी।
1: और जब ये गीत प्रसारित होगा और श्रोता सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा
0: जी, और किसी का नाम तो नहीं लेना चाहते आप?
1: हमारे मछले भैया है केशव प्रसाद प्रजापति, गांव दोदापुर के हैं, और हमारी भतीजी है नीलम प्रजापति, कौशल सिंह श्रीजी और सिद्धार्थ जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी।

0: हमारे साथ में गजराज लोधी के चरण अग्रवाल जी को मैं याद करता हूँ। इस गीत में सभी सम्मानित श्रोताओं को सब
1: जी जी जी तो शराबी फिल्म का जो गीत आपने कहा है तो हम सुनवाने जा रहे हैं।

0: श्रोता सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अपना नाम बता दीजिए।
1: गुतनी कुंडा प्रतापगढ़ गांव मेरा राजेंद्र कुमार कहलाता हूं, करके फरमाइश इस पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम में अपना कर्तव्य निभाता हूं। अपने ही फरमाइश के द्वारा सभी सुनने वाले श्रोताओं को आकाशवाणी केंद्र से मन पसंदीदा गीत सुनवाता हूं।
0: जी राजेंद्र जी का स्वागत इस कार्यक्रम में। तो बताइए राजेंद्र जी, आज कौन सा गीत चुना है आपने?
1: फिल्म का नाम है दिल ही तो है
0: जी,
1: और इसके बोल हैं चूरा।

0: पुराना गीत है लेकिन बड़ा मधुर गीत है।
1: जी, बहुत खूबसूरत गीत है। और इसी लाइन में हमारे प्रभाकर तिवारी जो हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भी नाम आ जाए,
0: जी
1: उनका
0: जी
1: नाम आ गया है।
0: जी तो चलिए आपको सुनवा देते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश और मैं हूं मधु। आपके गीतों के साथ अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, कौन बात कर रही हैं?
1: रेखा यादव
0: जी। रेखा यादव जी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: कच्चे धागे का।
0: गाने के बोल बता दीजिए।
1: ये दिल परदेसी हो गया।
0: दिल परदेसी हो गया, बड़ा हिट गाना रहा है अपने समय का।
1: यस मैम।
0: तो चलिए रेखा जी की पसंद को हम पूरा करते हैं और आपको सुनवा देते हैं कच्चे धागे फिल्म का ये गाना। लीजिए सुनिए।
1: ठीक है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश और प्रस्तुति थी मधु कुमार की। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
2: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
0: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी से 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

0: अब आप शाइस्तवानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बैनुल अक्वामी क्रिकेट स्टेडियम का संगे बुनियाद और भूमि पूजन प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया में हलचल है, इन हालात में भारत के वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बेहतरीन मैनेजमेंट किया गया है।
1: बहनों और भाइयों, जब पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट से जूझ रहा है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, उन स्थितियों में भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सस्सी नेतृत्व में, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जिस बेहतरीन प्रबंध का परिचय देकर के, भले ही प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊपर तेल कंपनियों पर बोझ आ जाए, लेकिन आम जनता को राहत मिलेगी।
0: मरकजी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है।
2: विशेष रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2017 से लेकर आज तक लगभग एक दशक में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार अपनी नई पहचान बनाई है, वह पूरे देश के लिए एक बढ़िया उदाहरण है।
0: प्रोग्राम में रियासती वजीर खेल गिरीश चंद यादव, गोरखपुर के रुकने असेंबली रवि किशन और दीगर मौजूद अफराद भी मौजूद थे। तालनादा और गोरखपुर में वाक ये बैनुल अक्वामी स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। तामीर के लिए 633.9 मिलियन रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। 46 एकड़ रकबे में बने इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 30,000 अफराद की गुंजाइश होगी। स्टेडियम की तामीर 23 दिसंबर 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने गोड धुईया नाला प्रोजेक्ट के पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे का मुआयना किया और जरूरी हिदायत जारी की। दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला ने मुआशी की तश्कील और दानिश्वरों के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत ने सिर्फ तरक्की को तेज कर रही है बल्कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद को रोजगार की जमानत भी दे रही है। वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर के चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मुनक्कदा मुश्तरका डिवीजनल खरीफ पैदावारी सेमिनार का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब शाही ने कहा कि खरीफ सीजन शुरू होने को है, रियासती हुकूमत की तरजीह किसानों को बेहतर बीज फराहम करना है। मेरठ से प्रयागराज तक चलने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर सहूलत कल खत्म हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने इस रूट पर 15 दिन की टोल फ्री सफर की मुद्दत का ऐलान किया था। कल लखनऊ मुनक्कदा एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 में मुल्क भर से 50 से ज्यादा सीनियर इंतजामी अहदेदारों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत के महत्वाकांक्षी एआई पॉलिसी और टेक्नोलॉजी के विजन पर कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसील से तबादला ख्याल किया गया। रियासती तब्दीली कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि रियासत सरकारी कामकाज में एआई के तब्दीली के लिए कौमी मॉडल बनने की तरफ बढ़ रही है और इससे रियासत के ट्रिलियन डॉलर की मईशत बनने के हदफ को नई तहरीक मिलेगी। आज रोशनी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 16 मई को माहिर फिजिस्ट और इंजीनियर थियोडोर मेमन के 1960 में लेजर के पहले कामयाब ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है। वहीं आज डेंगू का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए सरकारी तौर पर इस दिन का ऐलान किया गया। इस दिन का मकसद डेंगू के बारे में बेदारी पैदा करना और मानसून से कबल इसके खिलाफ हिफाजती इकदामात को मजबूत बनाना है। यह दिन मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए सादा कंट्रोल हिकमत अमली को फरोग देने के लिए मनाया जाता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एहतियात, सफाई, चौकसी और बरवक्त इलाज के जरिए डेंगू पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सकता है। उन्होंने रियासत के लोगों से मुतालबा किया कि वह अपने घरों, इर्द गिर्द और मुआशे को साफ सुथरा रखने का अहद करें। रियासत भर में आज वट सावित्री का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज में खवातीन संगम मुकद्दस गुस्ल कर रही हैं और बरगद की पूजा कर अपने शौहरों की सलामती और लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही हैं। खवातीन ने भी आज निर्जला जल व्रत रखा है। उन्नाव में भी सुबह से ही शादीशुदा खवातीन रवायती मेकअप कर रही हैं और वट सावित्री का व्रत रख रही हैं और दुआएं मांग रही हैं दायमी खुशी के लिए। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने कामयाबी हासिल की। रात गए तक जारी रहने वाले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए

0: चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को जीत के लिए 188 रन का हदफ रखा, जिसे लखनऊ के सिर्फ 16.4 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मिचेल मार्शल ने लखनऊ की जानिब से 38 गेंदों में 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 1:15 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए पनघट कार्यक्रम।

0: ये चंपा आवा देखा पनघटे पे सब बहनी रे तो का जोहा थी।
1: हाँ सरस्वती बहनी, हम हो तुम्हें जोहते रहे और तहार रहा तकते रहे। और देखे जब तू आवत रहे मार बाने छोरे एकदम लागत रहा कितना तोरे घाम लागत बा।
0: चला पहले अपनी बहनी से राम राम तो करा। पनघट सुने बैठी सब बहनी हरन के चंपा सरस्वती के।
1: राम राम सरस्वती बहनी,
0: हाँ
1: तब कहे इतना बांध छोड़ के तू आवत रहू, का तोरे घाम लागत रहा का।
0: अरे सरस्वती देखा जब हमें पनघटे पे आवे के होत ना
1: हाँ
0: तो हम का बताई, हम इतना घबराई जाती इतना घाम हो जाते ना तो हम एकदम घबराहट के मारे धूप से हम घबराई जाती। ये कैसे हमार सब दिनचर्या बीती, इतना काम धाम कम कैसे बीती। और एक तरफ तो मन लगा रहा था कि चला अपन घटे पे चली बहनी से मिलब, हमको बहुत ही
1: हाँ
0: अच्छा लागत है।
1: कौन दुख रहा तो मन में, हाँ आवे पन घटे पे तो खत्म हो जाले एकदम, भूल जाले
0: लेकिन
1: दुख।
0: ये इतना तेज घाम होता तो हम ये सोचा थी कि जिंदगी की गाड़ी आगे कैसे बढ़ी, ये घाम तो रोज के बात बा। तो चंपा तू बतावा।
1: देखा सरस्वती बहनी, पति पत्नी के प्रेम है
0: हाँ
1: जीवन का आधार, सुख दुख में जो साथ दे वही सच्चा परिवार।
0: इत एकदम सही कहा तो चंपा बहनी।
1: हाँ
0: चंपा बहनी एक
1: हाँ
0: बात बतावा, हमें लगा था कहीं तू आज एक महत्वपूर्ण विषय पे बात चर्चा तो नहीं करे चाह तू।
1: बिल्कुल, देखा
0: हाँ
1: आज हम बात करब पति पत्नी कैसे अपने आपसी सामंजस्य के बनाई के रखें।
0: अच्छा ये तो देखा बहुत ही जरूरी बात तू बताऊ कि देखा सामंजस्य अगर नहीं बने पति पत्नी में
1: तो
0: तो
1: रिश्ता
0: जीवन
1: ज्यादा,
0: के गाड़ी आगे
1: जीवन
0: कैसे
1: गाड़ी और
0: बढ़े।
1: रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चली।
0: हाँ बिल्कुल देखा घरे में बुजुर्ग भी होते हैं, घरे में लड़का बच्चा भी होते हैं, और अगर पति पत्नी ही आपस में झगड़े लगे, उनके बीच मन में वैमनस्य आ जाए, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना आ जाए,
1: हाँ
0: तो ऐसे लड़कन बच्चन के जीवन भी आहत होता, उनकर तो होता ही है। और घरे के जो बुजुर्ग हैं बड़ा बुजुर्ग, वो जैसे परेशान परेशान हो ही जाते हैं
1: बिल्कुल सही
0: है
1: कहा
0: ना।
1: थी बहनी। और देखा सरस्वती बहनी, सबसे पहले हम ही कहा कि हर इंसान जो होता है ओकर सोच अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, और जब बात शादी विवाह के होता है तो हम तो ये कहा सबसे जरूरी बात होते हैं एक दूसरे के समझब। अक्सर हम चाहते हैं कि सामने वाला जोन है हमारे सोच के अनुसार चले, मुना रिश्ता तब मजबूत होता है जब हम सब एक दूसरे के भावना और परिस्थिति के समझते हैं। अगर पत्नी थकी हुई है तो पति के ओकर साथ देवे के चाहिए,
0: बिल्कुल
1: और अगर
0: बिल्कुल
1: पति तनाव में है और थका हुआ है तो पत्नी के ओकर परिस्थिति के समझे के चाहिए और ओकर साथ देवे के चाहिए। जब ऐसा रिश्ता चलत है एक दूसरे के समझत हैं तो रिश्ता देखो अपनापन अपने आप आ जाला, और रिश्ता में और रिश्ता मजबूत हो जाता है।
0: बिल्कुल। और देखा पूरे परिवार के सहयोग तो हमें होबा ही करत है, लेकिन एक पत्नी के प्रति पति के विशेष धर्म होता, भावना
1: बिल्कुल
0: होता, और पति के प्रति पत्नी के विशेष भावना
1: बिल्कुल
0: होता।
1: बिल्कुल
0: तो देखा सब के साथ लेके अपने रिश्ता के बनाए बनावे के प्रति विशेष ध्यान दें है ना।
1: बिल्कुल
0: काहे कि
1: सही कहा थी
0: अगर
1: मैंने।
0: तू दोनों जने सही से रहबा तो पूरा परिवार
1: परिवार
0: जो
1: सही
0: है
1: रहे।
0: संभला रहे है ना। सही से खान पान हुए, सही से रहन सहन रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, घर में एक अच्छा माहौल बना रहे, तो लड़का बच्चा अच्छे से पढ़िया और अच्छे से
1: अच्छा
0: आगे
1: संस्कार
0: बढ़िया
1: सीखी है।
0: है ना।
1: और देखा बहनी कितनों कुछ हो जाए पति पत्नी में, लेकिन बातचीत जो होते हैं ओका बंद नहीं करे के चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ताकि
0: ऐसे
1: जब बातचीत
0: दूरी
1: बंद हो तो मैं रिश्ते में अपने आप दूरी आई जाए।
0: बिल्कुल हम सब एक का करती मन में ये भावना आ जाती।

0: देखा ऊना ही कुछ बोलत है तो हम
1: हाँ
0: काहे बोले जाई।
1: अपने मन में अंदर दबाए रखो, बात कोनो बात है तो उका खुल के बोलो, बात करो,
0: हाँ
1: उका बात खत्म करो।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अपने अंदर बात रखे रहते हैं कि हमसे पूछी है, अगर वो अगला नाई पूछत बा
0: तो
1: तो
0: हम
1: अपने
0: बोले
1: अंदर
0: कहे जाई।
1: बात रखे रही, हम नाई बताए, हमरे अंदर ये चीज चल तो, लेकिन हम बताए ना उन्हें।
0: आ हम सोचे थे कि वो आवे हमसे
1: हाँ
0: पूछें,
1: अब
0: लेकिन
1: अगला नाई आता हमसे पूछे तो हम क्या
0: हाँ तो ये बात बहुत
1: करें।
0: खराब लगता है। तो देखा कभी कभी हिम्मत करके और अपने मन के थोड़ा सा दबाए के आगे बढ़ के बोले के चाहिए कि देखा तुहार ई व्यवहार हमका अच्छा नहीं लगा है, और तो का अगर हमार कौनो व्यवहार खराब लगा है तो हमका बतावा, हमें समझावा, हम
1: बिल्कुल
0: ओका
1: सही,
0: सुधार करी और तू भी सुधार करा।
1: बिल्कुल
0: काहे
1: सही
0: कि
1: कहा
0: देखा
1: तुमने।
0: हम सबे जब आपस में अच्छे से चलब तो जो हमार लड़का बच्चा है ना परिवार के, वो बहुत बारीकी से हमार आचरण के देखत हैं, और जैसे हम सबे रहब उ सब एका सीखत है, और हमरे अच्छे जीवन से वो भी आगे चल के एक अच्छा पारिवारिक जीवन बनाए सकत हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तू बहनी। और देखा सरस्वती बहनी, रिश्ते में सम्मान जो होता है सबसे बड़ी ताकत होता है।
0: बिल्कुल
1: जहाँ सम्मान खत्म हो जाता है वहाँ प्यार भी धीरे धीरे कम होने लागत है।
0: बिल्कुल सही कहा
1: और
0: तू।
1: पति पत्नी एक दूसरे के हमेशा इज्जत करें,
0: हाँ
1: और कभो कदा का हो उनके साथ ले जाओ ना थोड़े घुमाए दें बाहर
0: हाँ ऐसे
1: कभो।
0: मन बदल जात
1: हाँ
0: है, और कभी
1: सासा
0: रूसे हो एक दूसरे से तो
1: तो
0: आपस में बैठ के थोड़ा मौका मिल जाता है, भाई हंसी मजाक हुई जात है,
1: बिल्कुल
0: और एक दूसरे के समझे के मौका भी मिलत है। जब घूमे फिरे निकलत है ना तो समझ में आवत है
1: देखो
0: भाई
1: छोटी छोटी
0: देखा।
1: बात जो होता है ना उसे खुशी हो जाए, कोनो काम पति की
0: हाँ
1: तो पत्नी का अच्छा लगे तो ना धन्यवाद बोल दें, या
0: हाँ
1: फिर कह दे कि हमें तुम्हें बहुत तुम पे बहुत गर्व है, तो
0: और
1: उसे कहा तो
0: देखा
1: उन्हें खुशी मिली, उन्हें खुशी मिली।
0: हाँ, और ऐसा भी लगता है जैसे कि कोई हमार जब हमने साथ साथ होती थोड़ा समय बदे अकेले तो ई समझ में आवत है कि अच्छा देखा इनकर पसंद का है,
1: बिल्कुल
0: कौन बात इनका नहीं पसंद आवत, कौन चीज़ इनका पसंद नहीं आवत, इनका खाए में का पसंद है। तो जब ये छोटी छोटी बात के हम तवज्जो देती ना तो ये छोटी छोटी बात बड़ा बड़ा असर कर देत
1: बिल्कुल सही कहा
0: है
1: तू
0: ना।
1: बहनी। और रिश्ते में देखा समय देव सबसे जो कीमती चीज है समय देव, अगर आदमी समय ना देत है तो क्या होता है रिश्ते में खटास होने लागत है।
0: बिल्कुल
1: तो ज्यादा से ज्यादा समय दे, कहाँ कि आजकल देखा मोबाइल के
0: हाँ
1: और सोशल मीडिया के जो दुनिया हो गया है, तो मैं
0: हाँ
1: क्या होता कि लोग अपन काम काज से आवत हैं तो बस कपड़ों ना उतरिए, बस फोन लेके अपन चलावे लगी है
0: ये
1: फोन,
0: तो तू एकदम
1: वहीं में
0: सही
1: एकदम
0: कहा तू।
1: ऐसा घुल मिल जाइए
0: हाँ
1: कि पानी रख दो आगे, चाय रख दो आगे, ओका पिए के भी ना ध्यान है कि ओका हमें
0: हाँ
1: पिए के है,
0: बिल्कुल
1: भूख
0: सही कहा
1: प्यास भी
0: तू,
1: उनके मर जाते वहीं
0: बिल्कुल सही कहा तू
1: फोन के।
0: सरस्वती चंपा बहनी।
1: हाँ
0: देखा तू एक बात बतायो कि सब सोशल मीडिया के जमाना में सब अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं। देखा हुई केहू से हम सब इन आई पूछे थे कि देखा तुहार तबीयत ठीक है,
1: बिल्कुल
0: तू कैसन महसूस करत हो, चाहे पति थके हारे लौटे हैं तो पत्नियों ने आई पूछती पानी दे के, जैसे एक मशीन होता काम करत
1: हाँ
0: है पानी और चाय रख के और चली जाती हैं, एक बार पूछे कि चाहिए हम सब के ना प्रेम से समय दे के कि भाई सब ठीक ठाक है, कौनो
1: हाँ
0: दिक्कत हो कौनो तकलीफ हो तो हमें बतावें।
1: दिन कैसा बिता, का भय का
0: हाँ
1: नहीं, दिन भर का चला दिमाग में,
0: बिल्कुल
1: एक दूसरे के साथ बात करके थोड़ा मन हल्का, अगर कोनो चीज का टेंशन
0: हाँ,
1: है
0: 5 मिनट
1: तो
0: 10 मिनट
1: हाँ
0: बैठे फिर ओकरे बाद में बतावें कि अच्छा हम जाते हैं अब समय थोड़ा सा जाएं खाना पीना बनाई, तब
1: हाँ
0: तक तू अपन काम कहला फिर ओकरे बाद हम काम करके फिर लौटा थी है
1: बिल्कुल
0: ना। तो ऐसे ऐसे जब हम सब करब तो ये जो न रिश्ता है ना बहुत अच्छे
1: हाँ
0: से समझदारी से निभा
1: निभा
0: जाता
1: जाता
0: है।
1: है। और
0: और
1: सरस्वती बहनी
0: देखा तू एक बात कह रहे हो सम्मान के बात है ना, और तू ये भी कह रहे हो प्रेम के भी तू बात करत रहो, तो
1: बिल्कुल
0: हम कहा कि देखा वो ये रिश्ता बाटे जन्म भर के रिश्ता बाटे,
1: बिल्कुल
0: बल्कि हम सब तो कहती कि सात सात
1: सात
0: जन्म के
1: जन्म
0: रिश्ता बाटे है
1: के
0: ना। तो जब इतना बड़ा रिश्ता बाटे तो एका निभावे बदे ना प्रेम का बहुत मूल्य होता है।
1: बिल्कुल
0: जैसे कबीर दास कहा था ना, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश देई ले जाए।
1: बिल्कुल
0: यानी
1: सही
0: कि
1: कहा थी बहनी।
0: देखा प्रेम खेत में उपजत नहीं है और ना बाजार में
1: बाजार में
0: प्रेम
1: दिक्कत
0: बिकात है ना। तब राजा और प्रजा के जैसे रुचि करे, अगर उनकर इच्छा होए प्रेम से रहे के तो अपने अहंकार
1: अहंकार
0: के
1: का त्याग दें।
0: त्याग दे, अगर
1: बिल्कुल
0: अहंकार के त्याग दे हर चीज में ही ना देखे कि ऊ नहीं बोले तो हम काहे बोले, ऊ हमका ये नहीं दिए तो हम उनका काहे दे,
1: बिल्कुल
0: वो
1: सही कहा
0: हमारे
1: तू
0: माता
1: बहनी,
0: पिता के सम्मान नहीं दिए
1: तो उनके
0: तो
1: माता
0: हम
1: पिता
0: उनके
1: सम्मान
0: माता
1: कहाँ
0: पिता के
1: दे।
0: काहे सम्मान दे, वो हमारे भाई बहन के प्यार से नहीं बोलते तो हम काहे करें, नहीं झुक जाएं थोड़ा सा, हो सकत है आपके देखते देखते वो आपसे सीख जाएं
1: बिल्कुल
0: है
1: सही
0: ना। साल 2 साल 4 साल 5 साल है ना, एमा समय चाहत है, तुरंते तुरंते सब चीज नहीं हो, जैसे कहा जाता है ना हथेली पे दही नहीं जामत
1: बिल्कुल
0: है
1: सही
0: ना।
1: कहा तू सरस्वती बहनी। तो चला इतना जब अच्छी अच्छी और नीक नीक बात कही होई गए तू हम तुम्हें तु नीक के झूमर सुनवाई दी सुषमा मौर्या बहनी से, चला तुहू सुना बहनी अरे भी सुना।
0: चला सुन लीन जाए।

0: बढ़िया गौनई रही चंपा
1: हाँ,
0: बहनी।
1: और
0: और
1: तुम्हारे देखे तो पैर थिरकत रहा
0: हाँ
1: है। अब चला अपने पनघटे पे एक बातचीत है।
0: हाँ
1: गांव में शिक्षा का स्वरूप, मैं बात की हूँ नमिता अग्रवाल से, अभिलाषा श्रीवास्तव की बातचीत है, चला सुन लिया जाए। तू सुना, बहनियारे भी सुने।
0: बहनी देखा, अगर हम लोग शिक्षा का बात करी थे तो शिक्षा एक ऐसा दीपक है जो कि चाहूँ और उजाला पहुँचावत है। ओके लिए कोनो अलग से संसाधन के जरूरत नहीं है। अगर आप शिक्षित हैं तो कहीं भी हैं कोनो

0: एक ऐसन दीपक है जो कि चाहू ओर उजाला पहुँचावत है। ओके लिए कोनो अलग से संसाधन के जरूरत नहीं है। अगर आप शिक्षित हैं तो कहीं भी हैं, कोनो क्षेत्र में हैं, कोनो परिस्थिति में हैं, तो कोनो न कोनो तरीके से बहुत अच्छे ढंग से कोई राह निकल जाता है। चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, उस समस्या का राह शिक्षा कहीं न कहीं से निकाल ही देता है। मुना फिर भी शिक्षा का स्वरूप हर जगह विस्तृत हो रहा बाटे। विस्तार कैसे हो रहा बा और गांव में शिक्षा का स्वरूप है, यही बदे जानकारी देवे के खातिर आज हमरे पनघटे पर आई हैं नमिता अग्रवाल बहनी। तो बहनी आपका हमरे पनघटे पर पहले बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बतावे कि गांव में शिक्षा का स्वरूप कह विधि बा।
1: जैसन कि हम सब जानी थे बहन, गांव का देश का आत्मा कहा जात है। भारत का बहुत बड़ी आबादी आजो गाँव में रहत है। अगर गांव विकसित हुई तो देश अपने आप आगे बढ़ी और गांव के विकास में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का होता है। आजो गांव में शिक्षा की गुणवत्ता और बिटियन की पढ़ाई का बहुत बड़ी समस्या बा। गांव में शिक्षा के परिदृश्य बदलत बा, लेकिन सुधार की गुंजाइश अभी भी बहुत बा।
0: देखा ये तो बिल्कुल सही कहूँ। अगर देखा हम शिक्षित हो, आप शिक्षित हो बू, तो गांव में जब हमारे लोग के लड़कियां हुई हैं तो शिक्षा के महत्व के वही समझा था जो खुद शिक्षित होता है ना
1: जी।
0: तो जो भी माता पिता जागरूक अगर वो अपने बच्चियन के पढ़ावत हिन तो देखा उन्हें कई लोगन के गांव में कैसे जैसे कि कभी स्कूल दूर है, कुछ और लड़कियन नहीं जाते हैं तो लड़कियन के अकेले भेजे में कैसन समस्या होता है, इन सब समस्या से कैसे निपटत हिन लोग।
1: ये सब समस्या के लिए गांव की स्थिति का ध्यान में रखत भय बेहतर शिक्षा प्रदान करे खातिर कुछ विशेष तकनीकी और उपाय का उपयोग करके शिक्षा का रुचि पूर्वक हमार मास्टर भाई और बहन लोग अपनावें, जिससे गांव के लड़कन और बिटियन का मन लागे। शिक्षा केवल पढ़े लिखे का नाम नहीं है, शिक्षा मने के सोच बदलत है, जीवन सुधारत है, अच्छा बुरा समझे के सोचे के सोच विकसित करत है और समाज के दिशा तय करत है। जौन मने पढ़त लिखत है वही सही गलत का पहचान कर सकत है।
0: बिल्कुल सही कहती हो कि जैसे अगर हम लोग जौन बटे कहीं भी जाई थे और कहाँ जाना बा कहाँ नहीं जाना बा ओके समझे के लिए जरूरी है कि शिक्षा के महत्व के समझत भर शिक्षा के अपने जीवन में ग्रहण करें। और जैसे लड़कियन के शिक्षा के लिए देखा ये बात जौन कहा गया कि सही बात है, लड़कियन के मनोबल के वही माता पिता वही अभिभावक होथिन वही बढ़ावत थीं जो शिक्षा के महत्व के समझत थीं। और देखा अगर एक लकीर मिट जात है, जैसे एक लकीर खींचा रहा था आदमी वो लकीर के आगे नहीं जाते, लेकिन अगर गाँव में हम देखे है अगर आप पढ़ाए रही हैं आपकी लड़की को अच्छी दिशा में निकल रही है तो अगल बगल में जो लोग रह रहा है उनका भी मनोबल बढ़ा था और वो लड़कियन के भेजत।
1: गांव का शिक्षा कई रूप में देखे का मिलत है,
0: जैसे कौन कौन बहनी।
1: पहला बुनियादी या प्राथमिक शिक्षा, इस शिक्षा का नी हवे। बच्चन जब स्कूल जात है वहाँ जाई के पढ़ना लिखना गिनती पहाड़ा भाषा विज्ञान सब कुछ सीखत है। पहले के मुकाबले अब बिटियन के पढ़ाई के खातिर लोग ज्यादा गंभीर हो गए हैं। तीसर हवे व्यावसायिक शिक्षा, गांव में खेती किसानी पशुपालन कुटीर उद्योग हस्तशिल्प कौशल विकास पर भी जोर जोर जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहती हूँ। गांव में हम देखत है हमरे बहनी हरे जो भैया हरे परदेश कमाए चला गए हैं है ना, तो हमरे बहनी हरे भी खेती किसानी बड़े अच्छे ढंग से संभाल रही हैं और ओकरे साथे साथे अगर उनके खेते में मिट्टी में कोनो तरह के असुविधा रहा था कोनो समस्या रहा था तो नज़दीकी ब्लॉक में जहाँ जाय करके अपने मिट्टी के जांच भी करावत हूँ। कहे का मतलब वो अब आत्मनिर्भर हो गए हैं ना, ऐसा नहीं ना कि भैया हरे अगर परदेश गए हैं तो उनका काम ना हो पाए, वो आत्मनिर्भर हो गए हैं और उन्हें पता है कि कौन सूझबूझ के साथ काम करे के चाहिए।
1: यही लिए तो आजकल गांव में आधुनिक शिक्षा भी कंप्यूटर शिक्षा ऑनलाइन पढ़ाई स्मार्ट क्लास डिजिटल बोर्ड और वर्चुअल लर्निंग के माध्यम से भी दूर दराज के बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाई जाता ताकि शहर और गांव के फासला को कम किया जा सके। ये आधुनिक शिक्षा का रूप है। गांव में कुछ शिक्षा की दिक्कतें भी हैं।
0: हाँ जैसे बहनी कौन कौन सी दिक्कत है तनियों का फरियाए के बतावें। तो
1: जैसे बहुत सुधार भवा है लेकिन आजो गांव में शिक्षा का कुछ समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है सुविधा की कमी हवे। कई स्कूल में भवन ठीक नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। शौचालय की कमी के कारण बिटियन का बहुत परेशानी का सामना करे पड़त है। दूसरी समस्या है शिक्षकन की कमी। कई स्कूल में मास्टर

0: पूरा ना ही है, और जौन है वह कई बार नियमित नहीं आवत है।
1: नहीं देखे कहे के मतलब ये आपका हम बात समझे थी कि शिक्षक का कमी है मुना जो है। अब विद्यालय में जहाँ जहाँ कायाकल्प होई गुआ बटे, तो कायाकल्प जहाँ भवा बटे वहाँ विद्यालय में लड़कियन के मतलब 50 लड़कियन के अनुपात में एक शौचालय रखा गुआ बा। अगर 50 से ज्यादा हैं तो अब वहाँ पे 2 शौचालय भी बनावा गुआ बा यही तरह
0: हाँ, कुछ
1: लड़कनन के
0: सरकार
1: अनुपात
0: काम
1: में।
0: कर रही
1: हाँ,
0: है।
1: यहाँ तक कि दिव्यांग बच्चन के शौचालय भी बन रहा बा, हर विद्यालय में रैंप का सुविधा बटे।
0: शिक्षा को सुगम बनावे खातिर मास्टर लोगन का वहीं पर रहे की सुविधा प्रदान करावा जाए, तो ऐसे में बच्चन की उपस्थिति बढ़ सकत है। तीसरी समस्या है गरीबी। गरीब परिवार बच्चन से काम करवावत है, ऐसे में बच्चन के पढ़ाई छूट जात है। कई बार खेती बाड़ी के समय लड़कन स्कूल से नदारद हो जात है। चौथी समस्या है बालिका शिक्षा। आजो कई गांव में बिटियन के पढ़ाई जल्दी रुकवा दिया जात है। सामुदायिक समर्थन और भागीदारी के प्रयास से लड़कियन की साक्षरता शिक्षा की प्रगति को मजबूत कर सकत है।
1: अच्छा ही बताओ, मैं लड़कियन के जैसे हम लोग कुछ कौशल का शिक्षा दिन जाते है ना, जैसे सिलाई होएगा, बिनाई होएगा, कढ़ाई होएगा, एहमन आपके का लगा था कि लड़कियन के एक सुंदर बच्चन के लिए भी कौशल विकास, लड़कन के लिए भी इस कौशल विकास के
0: जी
1: शिक्षा दिन
0: जी
1: जाते हैं,
0: जी
1: एक तहत का बच्चन के शिक्षा का स्वरूप में कुछ बदलाव आए रहा बा?
0: हाँ बिल्कुल आ रहा है। और गांव की शिक्षा बेहतर करे खातिर अब सवाल उठा था कि शिक्षा कैसे सुधारी जाए। सबसे पहले हर बच्चा स्कूल जाए ये सुनिश्चित होए, अच्छे शिक्षक होए, नियमित पढ़ाई होए, स्कूल में बिजली पानी शौचालय साफ सफाई पुस्तकालय खेल का मैदान जैसा सुविधा होए।
1: देखे ईद सब आज अगर आप यह समय में हम जैसे कई बार अपने लड़कन के स्कूल छोड़े गई है हम देखे ही, अगर आप विद्यालय गई हैं तो आप जोन चीज के बात करते हैं ये हर चीज विद्यालय में इतनी समय उपलब्ध है।
0: उपलब्ध है,
1: काहे कि स्कूल में इन सब सुविधाओं पे सरकार बहुत अच्छे से
0: बहुत
1: ध्यान
0: अच्छा
1: दिए हैं,
0: काम कर रही
1: लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं ना कि स्कूले भर में बच्चा देखा लड़कन कभी कदा जैसे विद्यालय में आओ थी तो कभी कापी नहीं लिया है, कभी कलम नहीं ले आए हैं, तो एहमन देखा जरूरत
0: हाँ
1: पड़ा था माता पिता का भी ध्यान
0: बिल्कुल।
1: देवे के चाही
0: इस
1: बच्चन
0: सब
1: के।
0: में हम सबका भी सहयोग की जरूरत
1: हाँ
0: है ना।
1: सबसे ज्यादा काहे कि देखा बच्चा तो
0: जी
1: विद्यालय में 4 से 6 घंटा 8 घंटा रहता है, मुन बच्चा ज्यादातर परिवार के साथ रह रहा है अभिभावक के साथ, तो अभिभावक की जिम्मेदारी बना था कि
0: बिल्कुल
1: बच्चे
0: बिल्कुल
1: के शिक्षण संबंधी सुविधा उपलब्ध करावे, ओके
0: हाँ
1: बाद
0: जी
1: स्कूल में का पढ़ के
0: जी
1: गए हैं
0: बहन
1: ओके लिए जाए के बच्चन से पूछे, और विद्यालय में जोन पढ़ावा गुआ बा ओके घरे में फिर से
0: बात
1: दोहरवावे के
0: करें
1: लिए कहें, है ना। काहे कि बच्चा हमार है और बच्चे की कमी पे ध्यान रखा भी हमार काम है।
0: जिम्मेदारी
1: काहे कि
0: है।
1: विद्यालय में एक क्षण के रुचिकर बनाए के वो बच्चन के शिक्षा देता है हर बच्चन के लिए, अब एक साथ वो इतने बच्चन के अगर शिक्षा दे रहा है तो का हम अकेले अपने बच्चे के ध्यान नहीं दे सकते
0: बिल्कुल
1: है?
0: ना, और सिर्फ सरकार से काम ना चले, समाज और हमारे सबके भी जिम्मेदारी बनत है। स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर हम सब साक्षरता अभियान चला सकत है। शिक्षा का बढ़ावा दे खातिर स्वयं सेवक कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक आदि भी आयोजित करवाया जा सकत है।
1: देखिए बिल्कुल कहते हैं शिक्षा का बदलता स्वरूप आजकल बहुत अच्छे से बदला बा। अच्छा ये बतावें जैसे शिक्षा का स्वरूप बदल रहा बा और एहमन आजकल बच्चन जोन बटे मोबाइल के जरिए जेका कहते हैं ऑनलाइन क्लास लेते हैं, है ना, जैसे कि दूर का कोचिंग नहीं जाई पावत हैं तो कोचिंग का क्लास ले लेते हैं, तो एहमन आपके का लगत है कि तकनीकी शिक्षा के बढ़ावा मिल रहा बा ऐसे?
0: बिल्कुल मिल रहा है। इसके लिए सरकार भी बहुत ज़्यादा सुधार कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान चलावा गया है ताकि हर बच्चा पढ़ सके। डिजिटल इंडिया से ऑनलाइन शिक्षा गांव गांव घर घर तक पहुँचावे का प्रयास होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाता है। मुफ्त किताब यूनिफॉर्म छात्रवृत्ति भी दी जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 से पढ़ाई का नया ढांचा बनल है।
1: कहे का मतलब ये है कि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर
0: कर
1: रही
0: रही
1: है
0: है।
1: कि बच्चे लोग विद्यालय आवें और लाभ उठावें सुविधा उठावें,
0: यही
1: लेकिन बच्चे के
0: नियमित
1: सही राह दिखावे के लिए जरूरी है कि माता पिता भी जागरूक हों और
0: हाँ
1: शिक्षा के महत्व
0: बिल्कुल
1: के समझत भाई, जैसे आप अब हम बताएं कि खेती किसानी में कटाई के टाइम बच्चन चला जाते हैं घर
0: जाते
1: आ
0: हैं।
1: रहे थे ना उबे नहीं
0: जी
1: करते,
0: बहन
1: तो देखा हम कही थे अगर ज्यादा ज्यादा समस्या है तब तो आप कुछ दिन के लिए 2-4 दिन के लिए बच्चे को रोक लें, हाँ, लेकिन ये अगर आप अपने आदत में बना लेते

0: कहीं भी जाए, कहे कोई भी अपने निजी काम के कारण अगर बच्चे के रोक रहा है तो उसे बच्चे के शिक्षण पे बहुत गहरा
1: गहरा
0: प्रभाव
1: प्रभाव
0: पड़त
1: पड़ता
0: है।
1: है
0: और
1: जी।
0: ओकरे साथे साथे बच्चे का शिक्षण के प्रति जौन रुचि होता है, जौन रुझान होता है, वह कम होए लगत। और बताओ बहनी।
1: एके लिए हमका घर घर शिक्षा का महत्व तो बतावे के चाहिए, गांव में जागरूकता अभियान चलावे के चाहिए, माता पिता का बच्चन का खासकर बिटियन का पढ़ाई खातिर प्रेरित करे के चाहिए। अगर युवा लोग गरीब बच्चन का पढ़ावे में मदद करें तो ऐसे में शिक्षा का प्रचार प्रसार होई और हमार ग्राम पंचायत भी शिक्षा की निगरानी कर सकत है। अगर समाज जागरूक हो तो बदलाव जरूर आई। कुछ जरूरी बातन पर भी ध्यान दे के होई, जैसे हर गांव में लाइब्रेरी बने, हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा होए, जैसे लड़कन जो है पढ़ लिख के आगे बढ़ सके, रोजगार
0: बिल्कुल
1: परक शिक्षा हो सके।
0: बिल्कुल सही कहें बहनी। आप देखा कितने अच्छे तरीके से बताएं कि किन किन बातन पे यदि ध्यान दिया जाए तो शिक्षा का स्वरूप और निखर
1: बढ़
0: के
1: सकता
0: सामने
1: है
0: आ सकत है
1: जी
0: ना। तो
1: जी
0: आप हमरे पनघटे पर आइन और हमरे बहनी हरिन के इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दिन, एक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुरस्वती बहनी, हाँ
0: देखा
2: अच्छा
0: बताओ।
2: नमिता अग्रवाल बहनी से अभिलाषा श्रीवास्तव बहनी कितना नीक के बात कही कही,
1: हाँ
2: और
1: और
2: कितना
1: देखा
2: फरियाए फरियाए बताएं शिक्षा के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा तू और बताई। देखा एक बात हमका बहुत अच्छी लगी जौन कह रही कि देखा शिक्षा जौन है एक दीपक के तरह है ना, जहाँ जहाँ जात है वहाँ वहाँ प्रकाश
2: फैलावत
1: आवत
2: है।
1: है। तो देखा कौनो भी अपने परिवार के लड़कन बच्चन के शिक्षा से वंचित नहीं
2: नहीं
1: करे
2: करी चाहे।
1: चाहत कौनो भी परिस्थिति में, तो अब तो विस्तार हो था और आगे आगे और हुई तो प्रयास करके अपने लड़कन बच्चन के और पढ़ावें।
2: बिल्कुल सही कहा तू बहनी। अब देखा इतनी अच्छी अच्छी बात कही हुई है, जरा एक तो
1: हाँ
2: तू हमने के पूर्वी सुनवाई दी सुषमा मौर्या बहनी से, चला तू सुना बहनी अरे भी सुना।
1: अरे वाह।

0: सरस्वती बहनी,
1: हाँ
0: तो है इतना
1: चंपा,
0: हम मजेदार लोकगीत सुनवाए ना, कैसा
1: बिल्कुल
0: लाग?
1: इतना अच्छा लगा। देखा, हम वही सोचते रहे कि आज चंपा बहिनी इतनी अच्छी चर्चा करत रही कि पति पत्नी आपस में सामंजस्य बैठाए के रखे।
0: हाँ,
1: तो जब वो कहत रही कि केहू न खेवन हार, है
0: मोरे
1: ना,
0: बलमुआ के हूँ ना
1: हाँ, तो वही बतिया
0: खेवन
1: हम सोचते रहे।
0: हार।
1: तो चला, इतनी अच्छी तू गवनई सुनाई हो ना, हमार मन तो एकदम खुश हो गया। तो अब चला रसोई घर में चला जाए,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: पनघटे पर रसोई घर में ना जाई।
1: हाँ
0: देखा
1: तो
0: सस्ती बहनी, हम सब कुछ ना कुछ बनावे खाए के लाई लावत रही था,
1: हाँ
0: तो आज हम ला आई रसोई घर से कि रसोई घर के साफ और व्यवस्थित कैसे रखें और कहें बरे रखें।
1: अच्छा हाँ, ये तो
0: तो
1: देखा
0: देखा।
1: बहुत ही जरूरी बात है। काहे कि हमार तोहार कितना समय हमारे बहनी हरन के भी
0: रसोई घर,
1: रसोई
0: रसोई में
1: घर
0: बीत
1: में
0: जाता है,
1: कितनो सोची। देखा आज हमार व्रत है, आज हुआ न जाई बहुत कम जाई, है ना, आज
0: लेकिन बिना
1: बहुत
0: जाए
1: थकाई,
0: वहां बिना
1: लेकिन
0: जाए चले
1: जाए भी ना तो काम है
0: कहाँ
1: नहीं चलत, है ना। कौनो न कौनो बहाने हुआ
0: घर में
1: दो
0: कौनो
1: तीन
0: कमरा ना
1: घंटा
0: जब चल जाए, लेकिन
1: हाँ
0: रसोई घर में बिना जाए ना चली।
1: बिल्कुल सही कहा तू। और जब हमन सबके इतना काम बा तो ओकर व्यवस्थित और सुंदर साफ सुथरा रखे बिना काम कैसे चल सकत
0: बिल्कुल
1: है
0: सही
1: ना।
0: कहा तू बहनी।
1: और देखा मन भी ना लगे अगर साफ सुथरा ना रहे तो, ऊपरी ऊपरी काम करके चला जाए लेकिन साफ सफाई ना रहे तो काम मन से हो ही नहीं सकत, और अच्छा काम तो बिल्कुल ना ही हो सकत,
0: बिल्कुल सही
1: है
0: कहा
1: ना।
0: तू बहनी। देखा सरस्वती बहनी, रसोई घर के साफ और व्यवस्थित रखा खाली दिखावे के लिए ना ही होते है।
1: हाँ
0: मुना स्वास्थ्य समय और स्वास्थ्य समय के बचत और आरामदायक कामकाज के लिए भी बहुत जरूरी
1: बहुत
0: होता है,
1: जरूरी होता
0: क्या कि
1: है।
0: जब रसोईया अपन साफ रही सुंदर दिखी तो केहू आ वाला भी के देखो सुंदर भैया। और
1: हाँ
0: देखो हम लोग रसोई घर में जब काम करी थे
1: हाँ
0: तो डिब्बा वगैरह कौन है, मसाला डिब्बा है,
1: हाँ
0: चीनी
1: हाँ
0: चाय पत्ती है, जौन भी है, डिब्बा लाइन से लगाए रही थे
1: हाँ
0: और पे अगर हम सब ओकर नाम लिख कर लेबल लगाए दी
1: हाँ
0: तो आसानी से हम सबको मिल जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जिससे
1: समय के
0: समय के
1: बचत
0: बचत हो
1: होत
0: ही
1: है
0: जाता है
1: और लड़कन बच्चन के जल्दी
0: और
1: स्कूल
0: देखे
1: भेजे
0: में,
1: के,
0: हाँ
1: हाँ
0: देखे में
1: तो
0: भी
1: हम
0: सुंदर
1: सब
0: लागत
1: बस
0: है।
1: खोजते ही रह जावे,
0: हाँ ये
1: है
0: डिब्बा
1: ना।
0: कहाँ, वो डिब्बा कहाँ, ये
1: हाँ, और
0: सामान
1: समय
0: कहाँ
1: के
0: है।
1: बर्बादी होते, ऐसे सब पता रहता भाई। अगर कबो हम बीमार पड़ जाए, हमारे जगह के और के भी रसोई में जाके काम करे के, हाँ,
0: तो क्या आसानी
1: तो
0: हुई
1: ओका
0: काम
1: बहुत
0: करे में।
1: आसानी हो जाए और समय के बचत हुई।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और
1: और
0: देखा कौनो चीज
1: देखा
0: अगर रसोई में गिर जाता है तो का तुरंत साफ करें, नहीं
1: बिल्कुल
0: तो देख तुरंत साफ कर देखो समय भी कम लागी,
1: हाँ,
0: अगर थोड़ी देर बाद साफ करें तो डगड़े पड़ी होगा,
1: और का
0: अगर कौन
1: समझ के
0: दाल है
1: रखें
0: सब्जी सूख
1: कि
0: जाता है ना
1: हाँ
0: गिर
1: बिल्कुल,
0: जाता है
1: जैसे
0: तो
1: कहा
0: का
1: जाता है
0: डगड़े
1: कि
0: धो पड़ा था
1: तीन
0: साफ करने
1: चार
0: पड़ा
1: सूती
0: था।
1: कपड़ा अपन धो धो के साफ सुथरा रखे रहें, है ना। ऐसे कहा होता है तोरे पजरे ई नहीं सोचे कि पड़ी।

0: कब काम चली, कपड़ा खोजे
1: जब तक
0: भाई
1: कपड़ा खुल
0: कैसे।
1: जाए तब तक वो सामान
0: हाँ
1: और फैल
0: फिर
1: जाएगी।
0: तू कहबू कि देखा कपड़ा ना आए मिला था, आप सांझ के करवे तब तक वो सूख जाए। तो जितना 5 मिनट के काम हो 10 मिनट में होए
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: देखे
1: कहा
0: में
1: तुम।
0: भी गंदा लागे। तो देखा ये सब तैयारी पहले से करके रखें।
1: और देखा सस्ती बहनी, जब रसोईया में नया बर्तन आवत है,
0: हाँ
1: कोनो बर्तन खराब हो जाते हैं, नया
0: हाँ
1: बर्तन आवत है, तो वो बर्तन के निकाल देवे के चाहिए।
0: हाँ
1: कहे कि ओका भी रखी है और नया बर्तन भी रख ले हैं, पुराना भी रखे हैं, तो ऐसे का हुई जगह भी ले ही और
0: हाँ
1: बर्तन काम के भी नहीं रही।
0: हाँ
1: अगर काम के नहीं तो हम सब नया बर्तन लाए थे, वो
0: सही
1: बर्तन
0: बात है।
1: काम के भी नहीं रही,
0: हाँ
1: फिर
0: जेकर
1: फालतू की
0: जरूरत
1: जगह।
0: ना, हाँ जौने जौने चीज के जौन बहुत ज्यादा पुरान हो गए, अब इस्तेमाल के लायक नहीं, उनका धीरे धीरे हटावत रहें।
1: बिल्कुल सही। और फ्रिज है गए, डिब्बा है गए, का हफ्ता में झाड़त पोछ गुलगुल है, झाड़त पोछत
0: बिल्कुल
1: रहा
0: हाँ,
1: है।
0: हम सब
1: और
0: अक्सर ही पनघटे पे बतावत ही
1: फ्रिज
0: चंपा
1: के
0: बहनी।
1: सामान मतलब सही से लगाए दें,
0: हाँ
1: हफ्ता में एक दिन इक्वल करे के
0: हाँ
1: चाहिए,
0: चंपा
1: इसे साफ
0: बहनी, हम
1: सफाई
0: ई
1: बना
0: कहत
1: रहे।
0: रहे कि हम सब अक्सर ही पनघटे पे बतावत रहे कि देखा हर हफ्ते जो ना रसोई के समेटे संभारे है ना, ऐसे बराबर सफाई बनी रहता। देखा मौसम बदलत रहता है, कभी कभी बड़ा नमी वाला मौसम आ जाता, बारिश वाला, तो इनमें जो है जीव जंतु बहुत पनपे लागत है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही।
0: और जैसे
1: जब
0: मसाला
1: फफूद फूद
0: उसाला,
1: लगा लगा था सामान में,
0: हाँ
1: तो
0: जैसे
1: फिर जब
0: मसाला
1: देख।
0: उसाला बाटे सब धीरे धीरे खराब होए लगत है। तो
1: बिल्कुल
0: देखा सब ध्यान से पढ़ पढ़ के सामान रखे, और जौन देखें कि अब एक समय अधिक हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, वो का
1: ओका
0: हटाए दें।
1: हटावत रहा है, जो
0: हाँ
1: सामान डेट खत्म हो गई है ओकर।
0: तो ये सब देखा एक गृहिणी की जिम्मेदारी होता, तो बराबर ये पर सतर्कता से ध्यान रखें कि देखा अच्छा भोजन अच्छा जल, ऐसे हमार और पूरे परिवार के स्वास्थ्य बना रहा था।
1: बिल्कुल
0: बेमतलब के यहाँ वहाँ चिकित्सक के पास दौड़े से हम सब बच सकत ही।
1: बिल्कुल सही कहा थू बहनी। तो चला अब इतना अच्छी अच्छी बात तो ही गई रसोई घर से, तो हम तुम्हें एठुआ और नीक के फिल्मी की सुनवाई दी मिलन फिल्म से। चला तुहू सुना, बहनिया भी सुने।
0: बिल्कुल।

0: स्वस्ति बहनी।
1: हाँ चंपा,
0: गौने कैसन रही?
1: गौने तो बहुत ही बढ़िया रही। हम का बताई, एकदम मन खुश हो गया। तू इतना अच्छा अच्छा गौनाई और गीत सुनाई दिए हो।
0: हम के माँ सरस्वती बहनी आवत इतना दिन बाद हमसे मिलत हई।
1: हाँ।
0: तो तुहे बड़े हम नीक नीक गौनाई गीत गौनाई जो ही रखे रहे हैं।
1: अरे वाह, देखा अपन गटे पे सब बहनी ने सुनत है, हमरे तरह वो खुश हो जाती।
0: बिल्कुल।
1: तो देखा हम चाहत ही कि हमार जौन जौन बहनी रे दूर दूर तक हम सब के सुनत ही, वो अपने मन के बात हम सब के जरूर बतावे।
0: बिल्कुल। है ना,
1: और कैसे बताई एक ओकरे बदे ईमेल संदेश सुन ले। तो चला सुन ले संदेश।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत है और इमा आप नवा का जोड़े चाहत है। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमारा ईमेल एड्रेस है
5: panghatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAM@gmail.com। panghatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कोने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
6: बेसब्री से इंतजार रही।
0: हम सबके भी बहिनन के इंतजार रही।
1: बिल्कुल, अपन मन के बात
0: प्रतिक्रिया व्यक्त करी
1: है। प्रतिक्रिया हम सब के आप समझ चुकी हैं बहनी हरे कैसे भेजे क्या, और एक फोन नंबर भी दे दे वगैरह है, तो अपन बात हम सब के जरूर
0: नंबर जो है।
1: हाँ, तब बहनी हरे अब
0: घड़ी सारा करत है।
1: हाँ,
0: और घरे चले के बेला होते है।
1: हाँ,
0: तो बहनी हरे से राम राम किया जाए।
1: राम राम बहनी हरे।

0: अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी उनका अपना पसंदीदा कार्यक्रम पनघट, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: Good afternoon. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with his Dutch counterpart Rob Jetten and call on King William Alexander and Queen Maxima today. Several important agreements expected to be signed, including

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है।

0: सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई, द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा

0: अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलुओं ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC वाराणसी और गांधीनगर

0: लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 बजे हैं, ये वक्त है लोकगीत कार्यक्रम का। लोकगीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन सुन लेते हैं ये संदेश।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार।

0: 4. विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं लीजिए सुनिए लोकगीत कार्यक्रम। लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं कृति श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम दास और हेम श्रीवास्तव। आज आप इन सब के स्वर में गाए लोकगीतों का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कृति श्रीवास्तव के स्वर में गाया ये देवी गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से, और अब लीजिए सुनिए पुरुषोत्तम के स्वर में गाए इस देवी गीत को।

हमारी गोदी जन्म लियो तभी गोद लियो जब जाई, बोली लगी कलेजे माँ के वहाँ ठैया।

राम मिल गए मुनि नारद जी कहाँ लगे समझाई, राम मिल गए मुनि नारद जी कहाँ लगे समझाई। कहाँ घूमते बन में बेटा अरे उमर अभी लड़ी खाई, चले जहाँ वहाँ दुनिया के गोसैयावा प्रभु से मिलवैया, चले चले जहाँ वहाँ दुनिया के गो

लोकगीत कार्यक्रम में अभी आप हेम श्रीवास्तव के स्वर में गाए कहरवा गीत का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारे प्राइमरी चैनल की सभा यहीं पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम पुनः प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होंगे और आकाशवाणी विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे। प्राइमरी चैनल पर अभी के लिए दीजिए आज्ञा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती के गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मानिक चंद्र पटेल और साथियों के गाए लोकगीत। तो लीजिए सबसे पहले सुनिए इनके स्वर में देवी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे मानिक चंद्र पटेल और साथियों के गाए लोकगीत। धरती के गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवानी और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट अंबुज।
1: और अंबुज के साथ आज है पूजा। वैसे मेरी आवाज सुन के जिस तरह से मैं चहक के बोलती हूं, समझ ही गएंगे हमारे श्रोताओं कि पूजा ही है आज।
0: बिल्कुल।
1: और हम दोनों आप सभी का वेलकम करते हैं हमारे सबसे खास कार्यक्रम युवानी में।
0: और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं, खुश होंगे और ऊर्जा से भरपूर होंगे।
1: ऊर्जा से भरपूर तो होंगे ही और होना भी चाहिए, क्योंकि अंबुज गर्मी
0: इस समय तो मौसम की तो बात ही मत करो पूजा, क्योंकि मौसम तो ऐसे बदल रहा है जैसे पल पल में, कोई चीज़ें नहीं कि अल्टरनेट करके, कभी बारिश तो कभी तूफान तो कभी बहुत ज़्यादा तेज धूप हो जा रही है। तो मौसम बदल तो रहा है, लेकिन हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो तो अपने सेहत का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि बदलते मौसम में आपकी जो तबीयत है वो कभी भी ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना होगा आपको।
1: गर्मी इससे पहले भी पड़ रही थी अंबुज, लेकिन इधर बीच और इस

0: साल की गर्मी यकीनन बहुत ज्यादा पड़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: मैं घर से जब निकल रही थी मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट लगा, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है, और ये सब सिर्फ बातें ही नहीं होनी चाहिए बल्कि एक्चुअल में भी अप्लाई करना चाहिए।
1: बिल्कुल, जितना ज्यादा हो सके उतना आप पानी जो है पीते रहें समय समय पर, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं आपको फेस करनी कर सकते हैं आप वहाँ पे।
0: बिल्कुल।
1: और दोस्तों, आज की जो ये शाम है ये बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति की, उस ऊर्जा की और उस प्रेरणा की, जिसके बिना किसी भी समाज, किसी भी देश का जो विकास है वो अधूरा है।
0: जी हाँ, आज की चर्चा का हमारा विषय है देश के विकास में महिलाओं आधी आबादी की भूमिका।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और ये सच भी है, क्योंकि नारी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण शक्ति है जो हर रूप में समाज को सम्मानती है, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बेटी और कभी एक सशक्त नागरिक बनकर।
0: अगर हम समाज को एक इमारत माने तो उसकी नींव क्या है दोस्तों? जी हाँ, नारी।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जो महिला ही है जो एक बच्चे को जन्म देती है, उसे संस्कार देती है, उसे जीवन जीने की राह दिखाती है, यानी एक महिला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बनाती है बल्कि पूरे समाज की नींव तैयार करती है।
0: तो अंबुज, इसी लिहाज से, इसी संदर्भ से बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, यानी कि देश के विकास में महिलाओं और आधी आबादी की भूमिका पर बात किया जाना, और हम इस पर बहुत सारी बातें करेंगे अंबुज, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे गाने के साथ भी की जाए?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं और भी बातें करते हैं और भी जानते हैं कि कितना योगदान है देश के विकास में महिलाओं की और आधी आबादी की, लेकिन उससे पहले लेते हैं हमारे कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: तो दोस्तों सोचिए, अगर एक माँ शिक्षित है, जागरूक है, तो वो अपने बच्चों को भी वैसा ही बनाएगी, और यही बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य बनाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है।
1: आज का भारत बदल रहा है और इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है हमारी महिलाएं। चाहे बात शिक्षा की हो, विज्ञान की हो, राजनीति की हो, या खेल या फिर व्यापार की, हर जगह महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं।
0: हमारी बेटियां आज अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक भारत का नाम रोशन कर रही हैं। और यही नहीं, आज महिलाएं स्टार्टअप चला रही हैं, कंपनियों का नेतृत्व कर रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं।
1: जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो उसका असर सिर्फ उनके जीवन तक नहीं होता है, बल्कि पूरे देश पर पड़ता है।
0: बिल्कुल, अगर देखें तो गांवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसे SHGS शॉर्ट में कहते हैं, के माध्यम से महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। कोई सिलाई का कार्य कर रही हैं, तो कोई डेयरी चला रही हैं, कोई हस्तशिल्प बना रही हैं, और इससे न केवल आय बढ़ रही है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है।
1: और अंबुज, ये जो काम है, चाहे वो सिलाई का हो या फिर डेयरी फार्म हो या फिर स्टार्टअप्स हो, इन सब के लिए स्किल्स तो चाहिए ही।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर जैसे पुरुष के, अब ये एक फैक्ट है कि उनकी भागीदारी ज़्यादा रही है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन अभी भी देखने को ये मिल रहा है कि महिलाएं भी इसमें आगे बढ़ रही हैं। और
0: बिल्कुल
1: डेयरी जैसा फर्म हो और महिलाएं अगर उसे चला रही हैं, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग काम है, तो ये दिखाता है कि अगर महिलाओं को अवसर मिले तो वो यकीनन बहुत बेहतर कर सकती हैं, देश के लिए भी और अपने जीवन के लिए भी। आज आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हमारी आधी आबादी भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने।
0: बिल्कुल सही बात है पूजा, क्योंकि शिक्षा अगर हम देखें तो वो हथियार है जो हर बंधन को तोड़ सकता है। सरकार की कई योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस दिशा में काम कर रही है, और हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हर बेटी

0: बेटी को शिक्षा का अधिकार मिले और वो अपने सपनों को पूरा कर सके। और हालांकि ये चीज़ें काफ़ी हद तक हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कहीं कुछ जगह ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हमें कम्प्लीटली 100% जो एक होता है उस पर लेकर आना है इन सारी चीज़ों को।
1: बिल्कुल, एक फैक्ट के तौर पर भी हमें चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, तभी चीज़ें हकीकत में अच्छी बन
0: हाँ,
1: सकती।
0: सामाजिक स्तर से या फिर अगर हम देखें तो जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में, तो अगर थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी हमें देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ उन सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए, आगे उनका प्रोत्साहन करना चाहिए।
1: क्योंकि अंबुज मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी के बेस पे भी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती है कि हमारी सोच कैसी है।
0: बिल्कुल,
1: अपने ही घर में अपनी बेटी और बेटों को देखने की या हम उन्हें अधिकार दे पा रहे हैं या नहीं, ये भी बहुत मैटर करता है। तो यकीनन हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां बेटियों को बराबरी का अधिकार मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो और उन्हें सम्मान भी मिले, और हर महिला अपने सपनों को खुलकर जी सके।
0: बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों देश का जो विकास है वो तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान जो है वो बराबर मिले। और हर महिला एक शक्ति, हर महिला एक प्रेरणा है, और हर महिला देश के विकास की एक मजबूत कड़ी है। और इससे ही देश के विकास में महिलाओं की भूमिका सही मायने में संदर्भित हो सकेगी, क्योंकि कहते हैं
1: नारी को सशक्त बनाइए,
0: देश को सशक्त बनाइए।
1: तो ये विषय रहा हमारा महिलाओं पर, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस विषय को सुनकर आपकी सोच भी बदली होगी और आप ये समझ पा रहे होंगे कि महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं और बढ़ रही हैं।
0: और ये हम आज के आधुनिक समय में देख भी रहे हैं कि जैसे पुरुष किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके समान अवसर या उनके ही जैसा महिलाएं भी उतना ही आगे बढ़ रही हैं, कंधे में कंधे मिलाकर चल रही हैं और हर एक क्षेत्र में अपने आप को आगे ले जा रही हैं, प्रूफ कर रही हैं कि हम आज भी आज के इस आधुनिक दौर में किसी से कम नहीं हैं।
1: और महिलाओं को लेकर या लड़कियों को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो बचपन से ही मल्टीटास्किंग होती है, मतलब वो एक साथ एक समय पर कई सारी चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं।
0: बिल्कुल सही,
1: तो ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। तो अगर हम अपने घर की बेटियों को, और सबसे जरूरी ये है अंबुज मुझे ऐसा लगता है कि लड़की को लड़की का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना पूजा, की जो महिलाएं होती हैं उनके पास जो मैनेजमेंट की जो क्षमता होती है वो कहीं पुरुषों से कहीं ना कहीं ज्यादा हमको देखने को मिलती है। जैसे कि एक पूरे घर को कैसे संभालना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है, हर तरीके की चीजों को कैसे मैनेज करके चीजों को आगे ले जाना है और उसको बेहतर तरीके से प्रदर्शित करना है, उन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीजें उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई और कर सकता है।
1: और इमोशनली भी वो काफी स्ट्रांग होती है,
0: तो ये कहीं ना कहीं से प्लस पॉइंट है। और इसीलिए जो है देश के विकास में महिलाओं का योगदान हमेशा से एक तरीके से देखे तो बहुत मायने रखता है, बहुत प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी ये रहेगा ही।
1: तो ये रहा हमारा सबसे जरूरी विषय और चर्चा जिस पर हमने की। अब बारी है कि हम अपने कार्यक्रम का दूसरा गीत सुनाएं, लेकिन एक हिंट आपके लिए ये रहेगा कि गाने तो अलग अलग फिल्मों के हैं और अलग अलग कंपोजर हैं, अलग अलग राइटर्स हैं, लेकिन एक चीज सेम है हर गानों पे। तो वो क्या है वो आपको ढूंढना होगा और हमें उम्मीद है कि आप गेस कर ले जाएंगे। क्यों अंबुज?
0: बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो हमारा स्पेशल सेगमेंट है वो उन्हीं पर बेस्ड है जिनकी आवाज में हम गाने सुन रहे हैं। तो आप लोग गेस करिएगा और हमारे जो भी हमारी ईमेल आईडी है वहाँ पर आप हम आगे आपको बतलाएंगे, वहाँ पे आप हमें बता सकते हैं कि क्या आप सही मायने में गेस कर पाए हैं कि नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये गाना आप ध्यान से सुनिएगा।

0: तो दोस्तों, अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट यानी कि प्रेरणा पुंज की, जहां पर हम बात करते हैं महान शख्सियत के जीवन और उनके योगदान के बारे में।
1: भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी सादगी, ईमानदारी और सेवा भावना से देश को नई दिशा दी। नीलम संजीव रेड्डी उन्हीं महान नेताओं में से एक थे।
0: दोस्तों, वे केवल भारत के राष्ट्रपति ही नहीं थे बल्कि एक कुशल प्रशासक, स्वतंत्रता सेनानी और जनता के सच्चे प्रतिनिधि भी थे।
1: जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था तब महात्मा गांधी के विचारों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निर्णय लिया। यही निर्णय आगे चलकर उन्हें देश के प्रमुख नेताओं में शामिल करने वाला बना।
0: दोस्तों, उन्होंने ना अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन में हिस्सा ही लिया बल्कि वे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे और इसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
1: उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे संघर्ष के समय भी

0: शांत और संयमित रहते थे। वे मानते थे कि देश की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए हमारा। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाता गया।
1: आज़ादी के बाद नीलम संजीव रेड्डी ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वे आंध्र प्रदेश के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे। जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ तब उन्होंने राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाई।
0: इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अपने कार्यकाल में शिक्षा, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर उन्होंने खासा ध्यान दिया।
1: और इसी के साथ साल 1977 में वे छठे राष्ट्रपति बने। भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे ये जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। तो इसी के साथ हमारा जो अगला सेगमेंट है, जो हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट है, हम उसकी बात करेंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों अब बारी है हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट यानी आज की शाम आपके नाम।
1: इंडियन सिनेमा ने हमेशा कद्र की है नए नए टैलेंट्स की। आज अनगिनत आर्टिस्ट हैं हमारे पास, अनगिनत सिंगर्स, एक्टर्स, कंपोजर, डायरेक्टर एंड डिजाइनर्स। पर ये बात अपने आप में कितनी खास है ना कि कुछ आवाज़, कुछ टैलेंट इतने शोर में भी नहीं खोते।
0: बिल्कुल, और आज अगर हम देखें तो म्यूज़िक की दुनिया से एक ऐसे हम पर्सनालिटी की बात करेंगे या उनकी बात होगी जिनकी आवाज़ सुनते ही उनका मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता है।
1: लेकिन नाम अभी भी हम नहीं बताने वाले हैं, नाम आप ही गेस करेंगे उनके इस गाए गाने के साथ जो कि हम यकीनन बजवाएंगे। और अगर आपका गेस ठीक बैठा है तो आप ज़रूर हमें बताइए। हमारी ईमेल आईडी है
0: जो कि है yuvvaniald@gmail.com।
1: तो हम भी देखते हैं कि आपकी जो नॉलेज है सिनेमा को लेके भी वो कितनी बड़ी है, क्योंकि हमारे शो में तो स्पेशली आज की शाम आपके नाम जैसे सेगमेंट में हम ऐसी पर्सनालिटीज़ पर बात करते हैं, उनकी बहुत सारी फन फैक्ट्स या उनके करियर के बारे में बातें करते हैं, तो आपकी नॉलेज कितनी बढ़ रही है वो हमें पता चलनी चाहिए ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो क्यों ना ये गाना सुना दिया जाए उनका।
0: बिल्कुल पूजा।

0: तो दोस्तों, हम जिस सिंगर की बात कर रहे थे, अब तक आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा था उदित नारायण की। 1 दिसंबर 1955 को नेपाल के सप्तरी जिले में जन्मे उदित नारायण का बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। संगीत उनके खून में था। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी खुद एक लोक गायिका थी, और शायद यही वजह रही कि बचपन से ही उदित जी का रुझान संगीत की ओर बढ़ता गया और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नेपाल में की और फिर संगीत की शिक्षा के लिए भारत आ गए।
1: उदित नारायण ने हिंदी फिल्मों के अलावा कई रीजनल लैंग्वेज में भी गाने गाए हैं, लेकिन अगर बात इंडियन सिनेमा के रेफरेंस से की जाए तो उन्हें सबसे बड़ी सफलता मिली फिल्म कयामत से कयामत तक के सॉन्ग पापा कहते हैं से। और ये सॉन्ग तो अंबुज, मुझे लगता है कि कंपलसरी है कि
0: बिल्कुल
1: कॉलेज फेयरवेल में तो बजेगा ही।
0: बिल्कुल सही बात है। हर कॉलेज फेस्टिवल्स में या फेयरवेल में ये गाने हमेशा हमको सुनने को मिलता है। और इसी के साथ उन्होंने बहुत सारे और भी सुपरहिट सॉन्ग्स गाए हैं, जैसे कि पहला नशा, मितवा, चांद छुपा बादल में, कुछ कुछ होता है, तेरे ना तेरे जैसा या तेरे नाम जैसा सॉन्ग, ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं।
1: उन्होंने बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के लिए अपनी आवाज़ दी है, और सबसे बड़ी खासियत उनकी यही है कि तकरीबन हर एक्टर पर उनकी आवाज़

0: फिट बैठती है।
1: और अगर बात करें अवार्ड्स की, तो उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री जो कि 2009 में इनको मिलता है, और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और उनके गाए गाने आज भी सुने जाते हैं। और बेस्ट जो बात है, सबसे अच्छी जो बात है, वो ये है कि आज का जो यूथ है वो उनके गानों से खुद को कनेक्ट कर पाता है।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उसके उस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है उसे हम अगले दिन आपको बतलाते हैं। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो हमारा जो कल का प्रश्न था वो था कि शिक्षा का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही उत्तर है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है आप हमें रिव्यू कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी में, जो कि है yuvvaniald@gmail.com। हम फिर मिलेंगे हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं अंबुज
1: और मैं पूजा
0: आपसे लेते हैं इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफेक्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ड ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय

0: अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती आप सुनेंगे रात 9:30 बजे। रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई पंचायत घर कार्यक्रम में सुनेंगे परिवार कल्याण की बात। शाम 7:31 पर डॉक्टर भूरे लाल की वार्ता सुनवाई जाएगी अज्ञेय वर्तमान संदर्भ में। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में रमा सेन के गाए गीत प्रसारित होंगे। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर अमित कुमार मौर्य से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत। विषय होगा स्टीविया की खेती कैसे करें। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव की वार्ता पैर की नसों में होने वाला खिंचाव। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित डी के दातार का वायलिन वादन सुनिए 7:31 पर। पंडित अनोखे लाल का तबला वादन 12:15 बजे। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। संगीता मिश्रा, राम सखा यादव और साथी इनके गाए लोकगीत आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में 10:05 पर। सूर्य प्रकाश पटेल और साथी प्रीति मिश्रा और नन्हे लाल बिंद और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 2:30 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अमृता मालवी के गाए गीत आप सुन सकते हैं 9:50 पर। नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम होगा बाल संग दिन में 11:15 बजे। बाल गोपाल कार्यक्रम शाम 5 बजे होगा। श्रोता अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे हेलो अनुरोध दिन में 1:15 पर। प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। शाम 5:15 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे मिफ्ताउद्दीन सैफी की वार्ता ग्राम्य अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों का योगदान। शाम 7:31 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष और यादों का कारवां। इसके अंतर्गत सुनिएगा प्रख्यात अभिनेता फैजल खान से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत। श्रोता अपने पत्रों के और संदेशों के उत्तर सुनेंगे चिट्ठी आई है कार्यक्रम में रात 8 बजे। श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी नेहा गुप्ता और आपके साथ होंगी वंदना राठौर। रात 8:30 बजे कार्यक्रम होगा आज इतवार।

है। इसमें सुनिएगा रेणुका जोशी की लिखी झलकी, स्टोर रूम का चोर। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् वैश्विक समाह्वानान् निवारणाय विश्वसनीयस्य भविष्यस्य कृते सज्जतायाः च आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं भारत नेदरलैंड्स देशौ सहभागित्वं कुर्वन्तौ स्तः। भारतमवसराणां भूमीति वर्णितम्। सेनाध्यक्षेण जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना पाकिस्तानं भयोत्पादकेभ्यः आश्रयं प्रदातुं भारतस्य विरुद्धं कार्याचरणाय च सावधानं कृतम्। पश्चिमबङ्गसर्वकारेण 11,2000 प्रदीयमानानां जातिप्रमाणपत्राणां पुनः सत्यापनं कर्तुम् आज्ञापितम्। CBSE इत्यनेन 12 कक्षायाः छात्राणां कृते उत्तरपत्राणां द्विस्तरीय पुनर्मूल्याङ्कनप्रक्रिया घोषिता। अपि च थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडायां अद्य बैंकॉक नगरे उपान्त्यचक्रीय क्रीडायां मलेशिया देशस्य युगलं पराजित्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुष युगलं अंतिमस्पर्धायां प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् भारत नेदरलैंड्स देशौ विश्वस्यापि समाह्वानानां निवारणाय विश्वसनीयं पारदर्शकं भविष्यस्य कृते आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। यत् सः बहुविध संकटैः ग्रस्तम् आपद्दशकम् इति वर्णितम्। नेदरलैंड्स देशस्य हेगनगरे स्वस्य 5 देशानां यात्रायाः क्रमे सामुदायिक कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विश्वं COVID-19 महामार्या वर्तमान संघर्षेण उद्भूत ऊर्जा संकटं चेत्यादीनां अभूतपूर्व प्रतिसन्धिं सम्मुखीकरोति।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: सः सावधानम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या निराकरणे विफलतया वैश्विक विकासलाभः व्यतिक्रमितः भविष्यति तथा च जनसंख्यायाः विशालः भागः निर्धनतायां निमग्नः भविष्यति। आर्थिकस्थिति व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विक प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारत नेदरलैंड्स देशौ संयुक्तरूपेण सुदृढ आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणे केन्द्रितौ स्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमंत्रिणा रॉब

आगामि दिनद्वयोः अण्डमान निकोबार द्वीप समूहेषु उपहिमालयीय पश्चिम बंगे सिक्किम राज्ये असमे मेघालये तथा दक्षिण कर्नाटके अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अनेन विभागानुसारेण श्वः अरुणाचल प्रदेश केरल माहे तमिलनाडु पुदुचेरी तथा करैक्कल चेत्येत्येषु क्षेत्रेषु अपि एतादृशी एव स्थितिः भविष्यति। विभागेन उक्तं यत् बिहारे राज्ये आंध्रप्रदेशे छत्तीसगढ़ राज्ये पूर्वी राजस्थाने झारखंडे लक्षद्वीपे मध्य महाराष्ट्रे मराठवाड़ायां जम्मू कश्मीर प्रदेशे लद्दाखे तथा देशस्य उत्तर पूर्वीय भागेषु च अद्य गर्जनेन तीव्रवातैश्च सह झंझावातस्य संभावना विद्यते। विभागेन झारखंडे मध्य प्रदेशे तथा राजस्थानस्य केषुचित् स्थानेषु उष्णतरंगस्य स्थितेः अपि घोषणा कृता। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडायां अद्य बैंकॉक नगरे उपांत्य चक्रीय क्रीडायां मलेशिया देशस्य गोह सेफेई तथा नूर इज्जुद्दीन इत्यमुं च पराजित्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुष युगलं अंतिम स्पर्धायां प्रविष्टवन्तौ। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य आतिथेय कोलकाता नाइट राइडर्स इतीदं दलं ईडन गार्डन्स इत्यत्र गुजरात टाइटन्स इत्यनेन सह क्रीडिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यनेन दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे, पंचायत घर।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: विजयलक्ष्मी के साथ होंगी

0: दिखाई नहीं पड़ता तू।
1: ये भाई खेती किसानी काम में लाग रहे न हो। देखा हो गेहूं का भाई फसल तो काट के मनई घर में धाई लिहस,
0: अच्छा
1: और हम कहे न भैया एक ठी नया बाग लगाए रहे
0: अच्छा
1: हा? तो वह बगिया का भाई देखा जब नया रहत है पौधवा छोट रहत है न, तो ओकरे देखभाल के ज्यादा जरूरत
0: अरे
1: होत
0: काहे नहीं होई भैया, आगे चल के वह जब बड़का पेड़ बने तो कुछ ना कुछ जोन फायदा उठा हुआ। अब
1: है।
0: से अगर मेहनत तहनत किए रह बा, कुछ उम्मन सही से तरीके से जोन बाटे यो का पोषण मिलत रहे,
1: बिल्कुल।
0: तब भाई आगे चल के पैसा ले बा कि ऐसे ले ले बा।
1: तो उहे बदे भाई लाग रहे हम दोनों, हम और घर आई दोनों जनी
0: अच्छा
1: है।
0: अच्छा
1: और देखा जब छोट पौधा रहते न तो भाई जीव जंतु जानवर जौन
0: हाँ
1: है
0: खराब कही देते
1: ओका
0: नून।
1: भाई काट दे हैं तोड़ दे हैं, और पाती जौन निकरत बोका खाए ले हैं।
0: अच्छा
1: तो दोनों परानी मिलकर भैया ओका बेरहा बांधत रहे
0: अच्छा
1: हैं,
0: अच्छा
1: चारों
0: अच्छा
1: तरफ से भाई ओका ऐसन बांध दे कि पौधा अपन ऊपर बढ़ी और कोनो जीव जंतु का नुकसान न पहुंचाए भैया।
0: अच्छा हमार भैया।

0: भैया आगे चल के हुआ जब बड़का पेड़ बने तो कुछ ना कुछ जोन फायदा उठा हुआ। अब से अगर मेहनत तहनत किए रह बा कुछ उम्मन सही से तरीके से जोन बाटे यो का पोषण मिलत रहे
1: बिल्कुल।
0: तब भाई आगे चल के पैसा ले बा कि ऐसे ले ले बा।
1: तो उहे बदे भाई लाग रहे हम दोनों, हम और घर आई तीन दोनों जनी
0: अच्छा
1: हैं।
0: अच्छा
1: और देखा जब छोट पौधा रहा थे न, तो भाई जीव जंतु जानवर जौन
0: हाँ
1: हैं
0: खराब कही देते
1: ओका
0: नून।
1: भाई काट दे हैं तोड़ दे हैं, और पाती जौन निकरत बा ओका खाए ले हैं।
0: अच्छा
1: तो दोनों परानी मिलकर भैया ओका बेरहा बांधत रहे
0: अच्छा
1: हैं,
0: अच्छा
1: चारों
0: अच्छा
1: तरफ से भाई ओका ऐसन बांध दे कि पौधा अपन ऊपर बढ़ी और कोनो जीव जंतु का नुकसान न पहुंचाए भैया।
0: अच्छा। हमार भैया हम तो जब बागवानी और बाग लगाई था एक दिक्कत होता जब छोटवार पौधा रहा था ना तो ओकर विकास भाई ऐसा होता कि भाई बगल बगल तो हो ही जाता तो सीधा ना ही जामत है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ओमन
1: बिल्कुल।
0: का करी।
1: वो हमें भाई देखा अगर निन्हवार छोट पौधा है तो ओकरे साथे भैया हम तो कहब कि कोनो मजबूत लकड़ी चाहे बांस है
0: हाँ
1: ओकरे साथे ओका बांध देबा, तो ओकर ऊंचाई भैया सीधा जाई
0: अच्छा
1: है,
0: अच्छा
1: नहीं तो वो
0: गिर
1: ओरम
0: जात
1: जाई।
0: है।
1: हाँ नहीं तो ओरम के गिर जाई है। तो ये जरूरी बात है कि अगर पौधा बड़वार होत बाय तो का सहारा देव की जरूरत है।
0: और भैया नए बाग में अगर भैया कटाई छटाई सही से किया जाए भाई कहा जाता है ना कि भाई मानसून आवे के पहले कटाई छटाई सही से कई लेबा तो मानसून में अच्छी तरीके से होकर विकास होए। दूसर चीज ये बा कि जोन पोषक तत्व बाटेन भाई कई बार होता कि कटाई छटाई करे के बाद अगर बड़वार डाढ़ी बाटे भाई ओका काट दिया और ऊपर कोनो अगर दवा हुआ नहीं लगाया तो वहीं में भैया कीड़ा लगे लागत थी ना वहीं से पेड़वा जोन बाटे खराब हो जाता। हम सब करी थे ना कि डाल काट दिए डाल काट के ओका ऐसे छोड़ दिया
1: भाई
0: भाई
1: वह
0: वो
1: पे
0: मन लेप लगाई दें कुछ अगर
1: हाँ
0: चीज लगाई दें तो वो सुरक्षित रहे
1: लेप लगाई के भैया पॉलीथीन चाहे कपड़ा सोका बांध
0: बांध
1: दें
0: दें
1: ताकि किरौना वहाँ पे न बैठे,
0: एकदम।
1: काहे से कि जोन किरवा होते न वो भैया पौधवा को सुखाए देते हैं। तो ई जरूर ध्यान दें। और दूसर बात ये है न कि जब कटाई छटाई करत हैं तो ओकर डाली ऐसन जगह से काटे जहाँ से भाई किरौना लागे की संभावना बाय।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: और दूसर बात यह बाय कि समय समय पे पेड़ पौधन के पानी दे भी जरूरत।
0: पानी देव जरूरी बाटे वही हम कहत रहे कि भैया इतना जैसे गर्मी पड़त बाटे अगर सिंचाई की व्यवस्था न रहे चाहे हम सबे होई चाहे पशु प्राणी हो चाहे पौधा जोन लगाए है छोटवार बाटे
1: बिल्कुल।
0: फसल बाटे अगर ओके पानी न मिले तो जोन गर्मी पड़त बाटे कि भाई हम तो सब झुलस जात है और जो छोटवार पौधा है वो झुलस जाई।
1: तो यह बात के जरूर ध्यान दें। हो सुमिरन एक बात और कहे
0: हाँ
1: हैं,
0: कहा भैया।
1: देखा हम तो किसान मनई है बाग बगीचा भी लगाए हैं, तो हमें तुम्हें जोन जानकारी बाय अनुभव बाय ओका अपने किसान भैया बहनिन के साझा कर भी जरूरी है।
0: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
1: देखे में आवथन हो कि जहाँ पेड़ लगाया है वहाँ भैया घास की और तमाम ऐसन पौधा उग आवत हैं कि जौन की वह पौधा का नुकसान पहुँचा
0: एकदम
1: सकत
0: भैया
1: है
0: एकदम
1: उनके बढ़वार में। जौन तू खाद उर्वरक डरब्या तो भैया आधा तो वह ले ली हैं।
0: एकदम एकदम
1: तो जौन ओकरे अगले बगले जौन पेड़ पौधा जाम हैं ओका भैया हटावे की जरूरत है। और समय समय पे गोड़ाई कई के पानी थाला लगाई के भर दे। हम तो कहब कि अगर बाग बाय और सिंचाई के साधन है तो ओका पूरे तरीके से भर देवे की
0: एकदम
1: जरूरत
0: एकदम
1: है।
0: बिल्कुल सही बात बाटे भाई। पानी दाना अगर ना मिले अगर सही पोषक तत्व तो ओका ना मिले तो निश्चित तौर पे भैया जोन विकास होई के रही उ ना होई। हम तो भैया देखी था ना कि भाई थाला तो बनेबे देते हैं साथ ही साथ कुछ किसान भाई का करते जैसे छोटवार मान ले पौधा हैं तो अब देखो जैसे परंपरागत तरीके से तो कई तरीके की चीज किया जाता रहा जैसे नई नई तकनीक आई गई बा
1: बिल्कुल
0: नई नई
1: बिल्कुल
0: भैया जोन जानकारी विशेषज्ञ भैया बतावत हैं वही में एक जानकारी बा मल्चिंग भाई।
1: हाँ
0: अब
1: हाँ
0: जोन तरीके से आपको गर्मी पड़त बाटे अगर भाई अगर या तो बार बार होकर सिंचाई करा अगर
1: बिल्कुल।
0: भाई बार बार सिंचाई कर तो ज़्यादा पानी लगे ज़्यादा आपका भाई श्रम लगे ज़्यादा उमन लागत लगे।
1: बिल्कुल।
0: इससे बढ़िया बा जो इन मल्चिंग तकनीक बाटे इमन का करते हैं भैया अरे कि जोन पेड़ के पास तना के पास होता वहाँ कुछ ऐसे चीज़ डाल देते हैं चाहे पॉलिथीन रहे चाहे सूखा पत्ता रहे वो एक तरह से ऊपर आपके जब पड़ा रहा था तो आपके जोन खेत बाटा या आपके जोन जमीन बा ओकर पानी के वाष्पीकरण रोका था तो नमी, जो नमी रहता है वो नमी आपका माटी का माटी में रह जाता और आपको बार बार सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल हो देखा हो सुमिरन ने, हम तो जब जात रहे राम जतन भैया की,
0: हाँ, हाँ, हाँ
1: तो देखा हो वो सिंचाई कई के

0: पेड़ के किनारे किनारे पॉलीथीन लगाए रहन,
1: हाँ
0: ऐसे जौन गर्मी का प्रभाव है कम पड़े, सूर्य के रोशनी कम पड़े वह पे, तो एकरे नाते जौन भाप बन के पनिया उड़ जात रहा हो, उसे बचत हो जात
1: और
0: रहा।
1: मोती भैया ई आज के तकनीक नहीं बाटे,
0: नहीं नहीं
1: ई तो परंपरागत चीज बाटे, ई तो बाप दादा हरे करा वतन, बट दूसरे तरीके से ओका करत रहथिन
0: बिल्कुल
1: भाई।
0: बिल्कुल
1: दादा हरे कहत रही कि भाई ओका झाड़ू जिन लगावा, अगर पत्ती
0: बिल्कुल
1: पड़ी बा तो पत्ती पड़ा पड़ा रहा दो मन,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अगर पत्ती
0: बिल्कुल
1: पड़ी रहे तो भाई जोन वाष्पीकरण होई उ ना होए, जोन नमी बाटे उ नमी बनी रहे। कहत रहे
0: बिल्कुल
1: ना अगर बाग बाटे तो अबही जिन लगावा, जब गर्मी जब हटी जाए,
0: हाँ हाँ
1: जब
0: हाँ
1: आपका
0: हाँ
1: पानी बरसा ही लागे, तब ओका बहारा, तब ओका हटावा, जैसे पानी कायदे से जाए।
0: बिल्कुल। देखा हो एक अनुभव रहा, वो अनुभव आज तक भैया हमें तोहरे बीचे में चला आवत रहा,
1: हाँ
0: ओकर भी प्रयोग करब जरूरी बा है। वो प्रयोग करबे तो निश्चित रूप से हमेशा तुम्हें सांत्वना मिली, हमेशा तू विकास के रास्ते
1: बिल्कुल
0: पाबे।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: भैया,
0: काहे से कि अपन जोन परंपरागत तरीके से चाहे खेती किसानी के तौर तरीका रहा हो है, कि भाई खेती किसानी करते रहे तो गोबरे खाद खेते में डारत रहे
1: डालत रहे,
0: है, तो गोबरे खाद खेते में डारत रहे तो जोन अनाज उपजत रहा, पौष्टिक भी होत रहा, निरोगी भी होत रहा
1: एकदम भैया
0: है,
1: एकदम एकदम,
0: और खाए से भाई जीव मतलब शरीर में कोनो रोग
1: ताकत
0: बेरामी नहीं
1: बिल्कुल
0: आवे
1: ताकत
0: है।
1: आवत रही। और वो
0: बिल्कुल
1: जोन आजकल चीज कहते हैं ना कि भैया का मोटा अनाज खाओ, मोटा अनाज उगावा, वो मोटा अनाज का परंपरा तो बहुत पुरानी बाटे।
0: बिल्कुल
1: अब
0: बिल्कुल
1: मोटा अनाज सिर्फ नहीं, जो परंपरागत खेती के बाद भाई, परंपरागत खेती में आपके कुछ बाहर से नहीं नहीं ले आवे के पड़ी,
0: बिल्कुल
1: जोन
0: बिल्कुल
1: आपके आस पास बाटे आप वही देखें तो वही कीटनाशक बा, वही आपका खाद बाटे, वही आपका हर तरीके से आपके खेती किसानी में काम आए। अब जैसे खाद का बात भाई, अब खाद में का नाम बा, गोबर से बढ़िया खाद या बर्मी कंपोस्ट से बढ़िया खाद बाटे तो बतावा भाई। बर्मी कंपोस्ट डलबा, गोबर का खाद डलबा, तो जोन विकास होता, इतना बढ़िया विकास होता। और दूसर चीज ये बात बाटे कि जोन ओकर गुणवत्ता होता,
0: बिल्कुल
1: जोन
0: बिल्कुल
1: उगौबा गोबर खाद से या जोन वर्मी कंपोस्ट से उगोबर, ओकर जोन गुणवत्ता होए भैया, वो रासायनिक खाद को ओकर गुणवत्ता ना होए।
0: या भाई देखत है न हो, जब हम तो लड़कियां में अपने दादा बाबा के साथे जाई ने तो सनई ढैंचा बोए रहे
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ हाँ हाँ
0: और हमरे लोग का कहे भैया देखा हो जब हर चलिया है और माटी पलट उठे और जोन सनई ढैचा बा भैया ओका गिराई के पानी भर देते हैं, लबलबाई के भैया बढ़िया हरियर खाद तैयार
1: एकदम
0: हो
1: एकदम
0: जाता है।
1: एकदम
0: तो ऊ कुल हम तो देखे हई और हम तो अपने खेते में ओकर प्रयोग भी करत हई, और देखे वाले भैया बहनी देखी देखा करत हैं।
1: मोती भैया ना, ये जो चीज बाटे कि भाई कौनो चीज रहे, चाहे परंपरागत खेती हो चाहे रासायनिक खाद का प्रयोग हो, कौनो आप काम कराई, हम तो ये कहब कि जानकारी जुटाई के करा। और
0: बिल्कुल
1: जानकारी कैसे मिले भाई, आपके खेती किसानी करे के बाटे तो पहला काम ये करें कि भाई माटी की अगर जाँच कराई लें, माटी की जाँच कराई लेबा तो पता चल जाए कितना उम्मन जरूरत बाटे आपके, का
0: बिल्कुल
1: कमी बा का बेसी बाटे, वो
0: बिल्कुल
1: पता
0: बिल्कुल
1: चल जाए, वही हिसाब से ओकर प्रयोग करा ना। अब भाई अगर रासायनिक खाद अंधाधुंध डलबा, अब तो तोहार पैसा लगे और आप तोहरे खेते में वो चीज मतलब का नाम बाटे वो पोषक तत्व ले ना पाए पौधा।
0: भैया एक बात कहे सुमिरन, देखा हो रासायनिक खाद के ज्यादा प्रयोग करे से ओकर अंश रसायन के कहीं न कहीं तोहरे अनाजम जात है
1: जात जात
0: और शरीर में कहीं न कहीं बीमारी कारण बना था।
1: बिल्कुल मोती भैया,
0: तो हमें तुम्हें सचेत हुए एक जरूरत बाय, हमारे सुनने वाले भैया बहनी के सचेत हुए एक जरूरत बाय। ऐसे भाई देखा आपन जोन परंपरागत खाद के तरीका बनाओ एक बाय,
1: एकदम भैया
0: ओका बनाए रखें और खेती किसानी काम में ओका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से लागत भी कम हुई और पैदावार भी ज्यादा हुई, मुनाफा भी ज्यादा बढ़ी।
1: बिल्कुल भैया कही
0: ई
1: गया भैया।
0: बतावा
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: अभी
1: हाँ
0: बतावा कि पंचायती में का कला है आज।
1: भैया, आज पंचायती में अपने शनिवार के दिन बाटे तो भैया परिवार कल्याण के बात होए, साथ ही साथ लोकगीत सुना जावे। हम कही कि पहले जोन पंच भैया रे इंतजार करते हैं कि कुछ गीत गवनई हो जाए, तब
0: बिल्कुल भाई, छूछ पैलगी जू झन वाली बात न हो
1: हाँ तो मानिक चंद्र पटेल और संघातिन के एक थे विकास गीत बाटे। हम
0: सुनवा
1: कही
0: भाई,
1: पहले ओका सुन लिया जाए तो आगे बात बत कही होए।
0: सुनवा भाई।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हाँ भैया, देखा जोन मानिकचंद पटेल संघातीन का जोन गव नहीं रही उसना गवा। अब देखा जोन हमारे पचन का बात बत कही होत रही ना कि भाई जैसे मृदा का स्वास्थ्य होत है, भाइयों का सही दाना और सही पानी तरीके से जब मिलत है तो भैया तभी जोन खेतवा में फसलिया लहलहात है।
2: बिल्कुल
1: वही तरीके से भैया देखा आपन जोन शरीर बाटई ओहू के अगर सही दाना पानी मिले तो भाई वही तरीके से मेहनत होए और भैया तब ही हम सब पचे जोन खेती किसानी के काम बाटे वो कई सकब।
2: अब बिल्कुल हो देखा हो सुमिरन ने हमारे लोग मोट अनाज खाए भाई खेती किसानी की ही है
1: एकदम।
2: और मोट अनाज में जोन पौष्टिकता हो तो भैया वो और जगह ना मिला
1: एकदम भैया।
2: तो निश्चित रूप से जोन तू कहते है न परिवार कल्याण की बात में
1: हाँ,
2: तो का सुनवावे चाहते हैं
1: भैया परिवार कल्याण के बात में। आज एक थे बातचीत बाटे समुचित पोषण और स्वास्थ्य।
2: बिल्कुल
1: डॉक्टर शंभुनाथ से प्रवीण मिश्र भैया का बातचीत बा। हम कही आपो सुने और पंच भैया सुने।
2: सुनवाद भाई।
3: किसान भाई हम कही देखा खेती किसानी के कैसन काम है जिमा हमेशा कुछ न कुछ लगा रहा था, लेकिन आवश्यक यह है कि भाई देखा अगर खेती किसानी के हम सब काम करते हैं तो हमारे सब स्वास्थ्य भी बढ़िया हो चाहिए और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए का समुचित पोषण हो चाहिए। आज एक बिना जानकारी दे के खातिर आज हमारे बीच में डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हैं। आप होम्योपैथिक फिजिशियन हैं और यह विषय के विशेषज्ञ हैं। आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों के लिए जानना चाहब कि जो समुचित पोषण और स्वास्थ्य काया एक के बारे में बताएं।
4: समुचित पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ये मुझे देनी है कि जितने भी किसान भाई हैं वो अपने खेतों में ही अपने पूरी पोषण की चीज़ें पैदा कर सकते हैं। जैसे पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप अन्न के अलावा ये हरी पत्तेदार साग सब्जियां खाएं, फल खाएं, सीजनल फल आपका जो भी मौसमी फल है उसको आप खाएं, उससे आपको पोषण पूरा मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। आप जो भी खाते हैं वो उसी से आपका स्वास्थ्य बनता है। यदि आप अच्छी तरीके से खाना नहीं खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक से नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कि आप 3 बार कम से कम दिन में खाना खाएं, 1 बार सुबह नाश्ता करें, दोपहर में खाना खाएं और रात को आप फिर एक हल्का सा खाना खाएं। उसके साथ में आप सीजनल फल जो भी मौसमी फल आपको मिलता है वो लें, हरे पत्तेदार साग सब्जियाँ अपने खेतों में ही उगावें, उससे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और पोषण के लिए ज़्यादा ज़रूरी है आजकल जिस पे हमारी भारत सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है वो है स्त्री अन्न, मिलेट्स जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, एंड मोटा अनाज जो हमारे आज 5,000 साल पुरानी हमारी संस्कृति में था। पहले बहुत ही इसका ज़्यादा प्रचार था स्त्री अन्न मिलेट्स का, जो अभी बीच में वो गायब हो गया हमारी संस्कृति से ही और हमारे भोजन से ही निकल गया, जिसमें छोटा तो वो जरूर देखने में दिखता है लेकिन वो पोषण से भरपूर है।
3: बिल्कुल सही कहे डॉक्टर साहब, लेकिन हम एक जानना चाहब कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक व्यक्ति को मतलब कितना पोषण ले चाहिए, कितना आहार ले चाहिए और कौन कौन से तत्व तो ऐसे हैं जो ले उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे।
4: अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि आप अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स,

0: विटामिन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स और फिर सफिशियंट यानी पानी का प्रयोग करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और हाइड्रेटेड रहे। आप पानी की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, तो आप स्वस्थ रहेंगे।
1: हम देखा ही जाता है कि भाई अपने भाई जहाँ भाई शहरी जीवन है भाई वहाँ पे तो लोग समय समय पे देखा जाता आजकल भाग दौड़ के भी जिंदगी में जो खान पान के समय पर बड़ा परिवर्तन देखे कि मिलत बटे। और कभी कभी तो आदमी भाई दिन दिन भी नहीं खाता है, बाहर ऐसे रह जाता है। तो सब ऐसे स्थिति में किस तरह से व्यक्ति अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखे, खास करके अपने पोषण की आवश्यकता बा वो पूर्ति करे, एक के बारे में थोड़ा जरूर।
0: इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए, जैसे ये खास कार्यक्रम आप बता रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने जो भी खेतों में पैदा करते हैं उसी को खाएं और उसी से वो स्वस्थ रहेंगे। बाहर की चीज़ें लेने की उनको खास कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने खेतों में जो पैदा हो रहा है जैसे आप हरी साग सब्जियाँ पैदा कर लें, और जो सीजनल फूड हैं जैसे वो भी उसको आप पैदा कर सकते हैं, वो आराम से आपको मिल सकती है। और जो भी आप अन्न पैदा कर रहे हैं जिसमें आपको चावल है, गेहूं है और दाल है, इसकी मात्रा अच्छी तरीके से होनी चाहिए और हरी पत्तेदार साग सब्जियां होनी चाहिए, तो आपका अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा।
1: बिल्कुल, हम कहीं देखें प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति के पोषण का समस्या के चलते जो ना है जो समुचित उनका आहार ले बाटे, अगर वो पूरा नहीं लेता है या जो उनका समय सारणी व खान पान के अगर नहीं सही, तो तमाम तरह के स्वास्थ्य समस्या भी उत्पन्न होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर पोषण अगर समय से नहीं ले पाया, समुचित पोषण जो आवश्यकता व शरीर के अगर वो नहीं लेता है, तो किस तरह के समस्या होगा आगे उत्पन्न हो सका थी, एक ही बार में प्रकाश डाल।
0: यदि आप सही तरीके से भोजन नहीं लेंगे तो आपको कमजोरी होगी, क्योंकि आप काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा आपको मिलेगी उसी समय जब आप अच्छी तरीके से पोषण लें। और पोषण में हमने जैसे बताया आपको कि आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, प्रोटीन जिसमें दाल में है आपके और उसमें दूध में है, अंडे में है, मछलियों में है, चिकन में है, इस तरीके से चीज़ों में है, और दूध और दही का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, और आपके उसमें पैदा हो सकती है, आपके घरों में ही पैदा होगा। आप गाय रखिए, भैंस रखिए और भी चीज़ें रखिए, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोषण मिलेगा।
1: पिछले देखा जाए रसद तो कुछ दिनों में देखा गया है कि स्वास्थ्य के एक बड़ी समस्याएं भाई देखा है, चाहे मधुमेह की बीमारी हो, चाहे उच्च रक्तचाप की बीमारी हो, साथ ही साथ अन्य भी ऐसी समस्याएं हैं जो ज़्यादा होती हैं, चिड़चिड़ापन खास करके आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ देखा जाता है। खान पान के एक का संबंध बा, थोड़ा एक के बारे में विस्तार से बताएं।
0: आपने कहा अभी मधुमेह और उच्च रक्तचाप और चिड़चिड़ापन, ये तीनों का संबंध है आपके भोजन के साथ में। यदि आप भोजन में ज़्यादा आप चीनी का प्रयोग करेंगे, शुगर का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, आप ज़्यादा चावल लेंगे, आप ज़्यादा और भी कार्बोहाइड्रेट लेंगे, तो आपको उसमें शुगर की प्रॉब्लम आएगी यानी मधुमेह की प्रॉब्लम आएगी, समस्याएं आएंगी। ज़्यादा नमक लेंगे तो ज़्यादा उच्च रक्तचाप का आपको समस्या आएगी, और सही नींद नहीं लेंगे तो चिड़चिड़ापन बना रहेगा और आपका ब्लड प्रेशर भी और आपका रक्तचाप भी बढ़ा रहेगा। इसलिए ज़रूरी है एक स्वस्थ शरीर के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, कि आप अच्छी तरीके से प्रॉपर आहार लें, प्रॉपर निद्रा लें, प्रॉपर आप अच्छी तरीके से और भी विटामिन्स और मिनरल्स लें जो आपको साग सब्जियों और फलों में मिलेगा।
1: बिल्कुल, ये तो भाई देखें कि समुचित पोषण के बात होगी जो ना है कि अगर नहीं उसकर कमी बात हो, कहीं तरह से समस्या में शारीरिक कमी महसूस हो, तो भाई थकान भी लगत बटे, वह किसी काम में भी मन भी नहीं लगत। लेकिन यह समय एक बहुत जोर दिया जा रहा है कि जो अपन श्री अन्न है, जो मोटा अनाज है, ये अपने शरीर के स्वास्थ्य पे, जो उसके पोषण पे कितना लाभकारी बा और कैसन मात्रा में एका ले चाहे जो ना, एका बारे में थोड़ा से विस्तार से।
0: आपने स्त्री अन्न के बारे में बात किया, अभी स्त्री अन्न के बारे में आजकल हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत जोर दे रहे हैं।

0: है। इसकी वजह खास ये है कि एक तो इस अन्न को पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बारिश कम हो रही है, ऐसे में आपको धान या गेहूं पैदा करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरत आपको काफ़ी पानी की ज़रूरत है, लेकिन स्त्री अन्न एक ऐसा अन्न है जिसको पैदा करने के लिए आपको किसी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये ड्राई क्लाइमेट में भी, सूखे में भी होता है, जैसे राजस्थान में हो रहा है, हमारे साउथ इंडिया में होता है जहाँ, और ये अभी बहुत ज़्यादा इसके खेती हो रही है हमारे उत्तरांचल में हो रही है, जहाँ पे पानी बहुत कम है, या है भी तो बारिश तो होती है उत्तरांचल में, लेकिन वो चूंकि पहाड़ी इलाका है इसलिए वो खेतों में पानी रुकता नहीं है। फिर भी आपको स्त्री अन्न वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। ख़ास तौर से एक मड़ुआ हमारे यहाँ होता था जिसको रागी कहते हैं। रागी बहुत ही ज़्यादा आपको उसमें पोषण है, 10% ज़्यादा है किसी भी अन्न से, ज़्यादा कैल्शियम उसमें रागी में है। तो रागी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और केवल 60 दिनों में ये रागी का आपको मड़ुआ की खेती पैदावार होती है, जिसके लिए पानी की भी कम ज़रूरत है, जिसके लिए आपको फर्टिलाइज़र की भी बहुत कम ज़रूरत है। आप थोड़े से खाद और में डाल पैदा कर सकते हैं, थोड़े से पानी की ज़रूरत है उसको, उसमें पैदा हो सकता है। और पोषण अभी किसी भी अन्न से 10 गुना उसमें ज़्यादा पोषण है उसका। आप इस्तेमाल जैसे आप वो कर सकते हैं, उसकी रोटी बना के कर सकते हैं, उसका आप और भी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे बिस्किट्स आ रहे हैं जो बहुत ही कीमती है और बहुत ही महंगे बिक रहे हैं।
1: बिल्कुल, देखें तो बहुत अच्छी बात बताएं। चलत चलाओ तो एक अंतिम प्रश्न ही बाटे कि देखा जाता कि व्यक्ति घर से जब बाहर बाटे और भूख लगा था तो भाई खान पान में तमाम तरह के आजकल जो बाजार में खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, भाई तला भुना भी यहाँ और भी तरह तरह का जिसके खा के भाई अपने शरीर की आवश्यकता के पूर्ति करते हैं, लेकिन आगे चल के जो ना है स्वास्थ्य समस्या भी उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह के जो खान पान बा उसे कैसे बचें और उसे क्या समस्या हो सका था उसके बारे में।
0: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। आजकल मैं अक्सर देखता हूँ कि गांव में जो भी खेती व करने वाले लोग हैं या मजदूर तबका है, वो काम करते समय भोजन के तौर पे अपना जाता है और वो समोसा या और भी चीज़ें खरीद लेता है, और सड़कों पे जो समोसा मिल रहा है वो खुले में गांव में मिलता है जिसमें मक्खियाँ भी बैठी हुई हैं, धूल भी है, तो 10 तरीके से उसमें बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। और आपको उसके उसी वजह से खाने की वजह से एक बार वो गांव में या कहीं भी समोसा जो बनाने वाले हैं सब, एक बार आपका तेल इस्तेमाल किया, 10 बार वही तेल कंटिन्यूअसली उसको प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उसमें उससे खाने से ज़्यादा आपका स्वास्थ्य नुकसान हो रहा है, कैंसर की ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं, उच्च रक्तचाप की समस्याएं बढ़ रही हैं, और मधुमेह वगैरह इसी के कारण से हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताएं भाई। देखें अगर आपके अपना भाई किसान भाई का स्वास्थ्य के अपन ख्याल रखे एक बार, तो जो शरीर के उचित मात्रा में अपन पोषण ले, हरी साग सब्जी के इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक प्रयास करें कि घर के जो बना खाना बा उसका इस्तेमाल करें, तो जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और खेती बाड़ी के भी काम अच्छे से। डॉक्टर साहब आप आएँ और किसान भाइयों के हमारे समुचित पोषण और स्वास्थ्य के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दें, निश्चय रूप से लाभकारी सिद्ध हो। आपकी जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
0: हाँ
2: मोती
0: भैया,
2: भैया, देखा जो परिवार कल्याण की बात रही, समुचित पोषण और स्वास्थ्य डॉक्टर शंभुनाथ से प्रवीण मिश्र भैया की बातचीत रही, और देखा सब चीज बताएं। एक बात देखा बहुत बढ़िया बताएं, सब जने आपो गौर किए हुई है पे कि जोन मोटा अनाज बाटई ना
0: बिल्कुल
2: केवल अपने स्वास्थ्य के लिए बढ़िया बाटई, बल्कि उमन जो लगई वाली लागत बाटई वो बहुत कम बा।
0: बिल्कुल
2: उमन जो लगई
0: बिल्कुल
2: वाला पानी बा, उमन लगई वाली जोन खाद बा, भाई कम से कम लागत में आपका एक बढ़िया अगर अन्न तैयार हुई जात बाटई जो कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा बा, तो
0: बिल्कुल
2: भाई इससे बढ़िया चीज का होए।
0: बिल्कुल हो। देखा हमें तुम्हें सोचे के परी और हमें तुम्हें एका अपनावे के परी।
2: एकदम भैया एकदम।
0: देखा हो तमाम रोग बीमारी बढ़त चली जात बने और डॉक्टर भैया बहनी सलाह देते हैं कि मोटा अनाज खा,
2: एकदम
0: तो ऐसे शरीर में लागत है, पौष्टिकता बढ़त है हो, और रोग बीमारी से लड़े के क्षमता भी विकसित करत
2: बिल्कुल
0: है, है?
2: बिल्कुल भैया।
0: तो निश्चित रूप से देखा सुने वाले भैया बहनी सुन के गुने और एक लाभ उठाओ मैं।
2: एकदम भैया लाभ उठाओ मैं, और जैसा मौसम रहे उसी हिसाब से भैया अपन खान पान रखें भाई।
0: बिल्कुल
2: देखा
0: बिल्कुल।
2: मौसम

0: में चीज बाटेन, अपने गांव देश में तो इफरात बाटाई। देखो गर्मी का मौसम बा, आपका खीरा ककड़ी खरबूज ये सब मार आपके इफरात बाटे, एकर सेवन करें आपके भाई ताकत ऐसे मिले, साथे साथ ही जो ना आपके शरीर में लगाई वाली बीमारी बाटे ऊ ना लगे आपके, भाई आप
1: बिल्कुल
0: निकलत हैं लूल चलत बा कुछ चलत बा, अब आ गई आवे वाला 15 दिना बाटाई लू, एक तरह से आपका अगर बिना कुछ खाए पिए निकल ही आ तो शरीर पे प्रतिघातक रूप से एकदम आपके वार करे, लू लग जाए तो आपका खेती किसानी भी प्रभावित होवे। तो भैया जोन मौसमी चीज बा ओका खावाई पियाई
1: बिल्कुल
0: मौसम के
1: बिल्कुल
0: अनुसार भाई अपन खेती किसानी का काम करें, आपका स्वास्थ्य रहे तब भाई खेती किसानी का काम और अच्छा होए।
1: बढ़िया हो ही हो। एक बात और कहे हो,
0: हाँ हाँ बताओ भाई।
1: देखा हो आमे के सीजन चलत है,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो आमे के पन्ना बनाई के भाई पी सकत हैं।
0: अरे
1: और हमारे
0: एकदम।
1: लोग तो भाई पीबे करी थे, देखा स्वस्थ है। और दौड़त दौड़त पंचायती आई, तो भैया पंचायती में पंच भैया लोगन से बत कही कही के जाई खेते कामों करी थे।
0: एकदम एकदम।
1: तो एका जरूर अपना में ये बतावा कि पंचायती में कोनो गौनई और सुनोई भैया
0: अब
1: जीव
0: आप
1: हरियर हो
0: अगर
1: या
0: आप
1: थो।
0: कह दिए तो एक गहू नहीं तो हम रखे रहे, हम कहे आप जोहत रहे कि आप कुछ कहा तो हम सुनवाई।
1: सुनवाद
0: एक
1: भाई।
0: थे मानिक चंद पटेल और संगातिन के एक गवनई और बाटे, अब आपको सुना जाए और कहीं पच भैया भी सुनाई।
1: सुनवाद भाई।

0: हाँ मोती भैया देखा कहरवा सुना गवा, मानिक चंद पटेल और संघातिन का हमका
1: बिल्कुल
0: ही एक जरूरी बात बाटई,
1: का हो।
0: जो आपन पसंद का बात होत रही कि भाई देखा गर्मी पड़े वाली पड़त बाटे ये कायदे से, और अब तो धीरे धीरे भैया और पड़े लगे तो जोन 15 दिन आगे आवे वाला बाटे, भाई देखा विशेष ध्यान रखे के पड़े अपन फसल का,
1: बिल्कुल
0: अपने स्वास्थ्य का, और साथे साथे जोन बेजुबान पाले है ना भाई उन्हों का ध्यान रखे के पड़े, पशु प्राणी का विशेष रूप से, क्या कि भाई उनका तो देखा जुबान नहीं होता, तो
1: बिल्कुल
0: उन्हों का
1: बिल्कुल
0: भैया अच्छे तरीके से चारे का पानी का अगर प्रबंध हो जाए, और अगर भाई आपके सुविधा बाटे तो उनका नहवा इधर संध्या सवेरे भाई
1: बिल्कुल
0: उन्हों के आराम मिले रच के।
1: अब बिल्कुल हो। एक बात और कहा,
0: कहाँ है भैया।
1: देखा हो कितना मनी है न पशुअन के भैया बागी में बांध देते हैं
0: हाँ
1: छाया
0: खुले
1: में,
0: में
1: तो खुले में न बांध है कहें से कि लूह लागे के डर है
0: एकदम कही गन भैया।
1: उन्हें भैया, ऐसा जगह बांध है जहाँ की गर्म हवा न जाए। और दूसर बात जो कहा न कि समय समय पर उन्हें चारा पानी देते रहें और नहवावत रहें।
0: नहवावत
1: और
0: रहे
1: एक बात हम जरूर सुमिरन तुम से
0: हाँ
1: कहब,
0: कहाँ है भैया।
1: देखा हो तुहार तो घर आतीन हमसे बतावत रही न
0: हाँ हाँ
1: एक दिन, तो
0: हाँ
1: भैया दोपहरिया में निकल गया रहा है
0: कहाँ
1: और कहीं भैया वो बजड़ी काटे के जोन चारा रहा पशुअन के, तो हम
0: हाँ
1: भाई उन्हें कहे कि समझाए द साझे सवेरे काटे जाए। काहे से कि न देखा मनई जब कोनो बहुत जरूरत पड़े तो भाई भरपेट पानी
0: सही
1: पी
0: बात
1: के
0: बा
1: चल दे तो लू
0: हाँ
1: लागे की संभावना कम हो जाता,
0: एकदम भैया।
1: लेकिन बचावे के चाहिए।
0: और नहीं एक दिन और गलती हो गई रही, काट के आए चरी और चरिया डाल दिया वहीं सीधे सीधे हौदा में, और भाई खाए के लग गई गर्मी हमरे जोन पाले रहे,
1: बिल्कुल
0: दुई मवेशी
1: बिल्कुल
0: हमारे गिर गए, तब हमें एक जने आए राम अवतार भैया कहें कि चरी लई के आवा काटा सीधे जिन डाला रच
1: नहीं
0: के ओका झुरवाई दा ओकर गर्मी निकल जाए तब डाला, उ दिन
1: बिल्कुल
0: भैया सीखा हम, और ये हम तक कह पंच भाई से भी कह कि जब चरी ओरी हरा चारा काट के लई आवाई तो कुछ देर ओका रख दें रच के झुरवाई लें ओकर गर्मी निकल जाए तब भैया ओकर डालें।
1: बिल्कुल बिल्कुल देखा हो यह कुल अनुभव के बात है। और अपने पंच भैया बहनिन के भी ये बात सुन के गुने के चाही
0: एकदम भैया
1: है।
0: गुने के चाही। दूसर चीज ये बना कि जहाँ आप बांधत हैं भाई समुचित वहाँ एकदम ओका बांध के एकदम ओका ऐसा रहे कि हल्का फुल्का हवा आवत जात रहे
1: बिल्कुल
0: अच्छे
1: बिल्कुल
0: तरीके से, एक तरफ से अगर हवा बांध दें अंदर बंद कर दें दमो घुट सकत है,
1: नहीं भाई
0: रज के
1: देखा,
0: खोल के संध्या
1: हाँ
0: सवेरों उनका रज के दिखाई दें भाई हवा लगे के चाहे।
1: अब भाई देखा हो जैसे हमें तुम्हें जरूरत है वैसे उन्हों कहे। एक बात और कहब हो,
0: हाँ कहें भैया।
1: देखा हो हमारे लोग तो कार्यक्रम भैया जोन सुनवाई थे अपने किसान भैया के फायदे बदे सुनवाई
0: एकदम
1: थे
0: एकदम
1: हैं,
0: भैया।
1: उन्हें का जानकारी चाही और कौन बात उन्हें बढ़िया लाग और कौन विषय पे उन्हें और

0: भैया जानकारी चाही, हम तो कहब कि अगर कार्यक्रम भैया सुनत हैं तो यहाँ पे प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त
1: अरे
0: करें।
1: एकदम बिल्कुल, बहुत तरह का सवाल होता, बहुत तरह का प्रतिक्रिया होता, बहुत तरह का सुझाव होता कार्यक्रम संबंधित।
0: बिल्कुल
1: भैया अगर
0: बिल्कुल।
1: कहुना वैसन कार्यक्रम संबंधित सुझाव प्रतिक्रिया या सवाल बाटई तो हमारे पचन का जो नंबर बाटे 800-4926-250 नंबर एक बार फिर बोल देता है 800-4926-250 भैया पर संपर्क कर सकते हैं। एकरे अलावा भैया जोन अपन आजकल भाई सोशल मीडिया बाटे ऊपर जोन प्रयागराज का आकाशवाणी प्रयागराज का जोन पेज बाटे वहाँ जाए के वहाँ कमेंट बॉक्स में भी भैया अपन सवाल सुझाव प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, देखा हो यह तरीके से भाई आकाशवाणी तक भैया पहुंच सबके बाय और पहुंच के एक लाभ उठावे, और देखा हो अब भाई घरे चले के बेला होत बा, घड़ी इशारा करत बा,
1: एकदम एकदम भैया
0: तो
1: घड़ी
0: पंचम
1: इशारा
0: से
1: करत
0: राम
1: बा।
0: जोहारी किया जाए, तो
1: बिल्कुल भैया
0: पंचो
1: राम
0: राम
1: राम,
0: राम।
1: राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: झिलमिल सितारों से बच्चों की मुस्कुराहट समाती है बाल संग बाल गोपाल और नन्ही दुनिया में।
1: घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा, कहां से आए तुम।
2: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
0: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
3: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
2: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: तुम इतने दिन की कहां ढूंढता ही रहा, कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बेली पार्क क्षेत्र स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
1: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
1: आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी, देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
0: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रूपये देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया है। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर

0: जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें इंडोर खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेडियम कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा बचत की अपील के मद्देनजर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक होगी बल्कि आर्थिक अनुशासन और ऊर्जा बचत के दृष्टिगत समाज में सकारात्मक संदेश भी देगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सपा नेता मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
2: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो और इसमें मेरा प्रयास रहेगा।
0: चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।
3: उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए आज चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग और पति के दीर्घ स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री निर्जला व्रत रखा है। व्रती महिलाओं ने विधि विधान से सावित्री माता की पूजा के बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अटल सौभाग्य की कामना की। प्रयागराज में व्रती महिलाओं ने आज सुबह संगम में पवित्र स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून

18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। सिंचाई और जल संसाधन की ओर से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इनके जरिए जलस्तर की रियल टाइम निगरानी और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ सुरक्षा समितियां तैयार की जा रही हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, ग्राम प्रधान और लेखपाल सहित स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए डॉक्टर भूरेलाल की वार्ता अज्ञेय वर्तमान संदर्भ में।
1: अज्ञेय गंभीर सर्जक और विचारक हैं। उनका सर्जक व्यक्तित्व बहुआयामी है। उनका रचनाक्रम प्रयोगवाद से नई कविता के काल तक विस्तृत है। विज्ञान से स्नातक होने के अलावा अज्ञेय ने क्रांतिकारी और सैनिक का जीवन जिया, अनेक पद पत्रिकाओं का संपादन किया, आधुनिक कविता की जमीन निर्मित करने वाले तार सप्तक का संपादन किया, अनेक देशों की सांस्कृतिक यात्राएँ की, देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृति कला और साहित्य के अतिथि प्राध्यापक रहे। हिंदी साहित्य में अज्ञेय ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में लिखा और हर विधा को एक रचनात्मक ऊंचाई प्रदान की। कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, डायरी, यात्रा वृत्तांत, निबंध आदि विधाओं में लिखकर हिंदी साहित्य को अभूतपूर्व समृद्धि प्रदान की। साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित अज्ञेय अनेक शिल्पों और कलाओं के अच्छे जानकार थे। वह व्यक्तिगत स्तर पर भी परिष्कृत अभिरुचि वाले और सांस्कृतिक चेतना से संपन्न थे। अज्ञेय जब लिखना शुरू किया उस समय राजनीति प्रमुख हो चली थी। आदमी के जिंदगी के सभी पहलू, भाषा, साहित्य और सौंदर्य बोध भी राजनीति द्वारा निर्धारित होने लगे थे। बौद्धिक स्वतंत्रता संदेह से देखी जाने वाली चीज बन गई थी। किसी गंभीर राष्ट्रीय संकट या विषमता के समय ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक कार्यवाही अधिक प्रधान हो जाए। हम जानते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में खुद अज्ञेय की एक लंबी संघर्षपूर्ण जिंदगी थी, लेकिन एक गहरे राजनीतिक समय में भी अज्ञेय की कविताएँ प्रत्यक्ष या छिपे रूप से राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि इससे काफ़ी दूर हैं। वह प्रगतिवाद के उभार के दिन थे जब राजनीतिक सक्रियता एक प्रधान कसौटी बनी हुई थी। ध्यान देने की बात है कि बौद्धिक और साहित्यिक गतिविधियों पर राजनीति की बढ़ती प्रधानता के युग में अज्ञेय ने राजनीति को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए लिखा कि संपूर्ण मानव जीवन के राजनैतिकीकरण के विषव्यूह को तोड़ना है, असल चुनौती यही है। उन्हें अपने लेखन के कारण बहुत आलोचना सहनी पड़ी, यहाँ तक कि उन्हें अमेरिका का पिट्ठू कहा गया या मान लिया गया कि वह निरे प्रयोगवादी और व्यक्तिवादी हैं। अज्ञेय स्वतंत्रता को आधारभूत मूल्य मानते हैं, वह इसे व्यक्ति से जोड़ते भी हैं, लेकिन अज्ञेय की स्वतंत्रता की अवधारणा व्यक्ति केंद्रित होते हुए भी बुद्धिवाद और सामाजिक उत्तरदायित्व से विच्छिन्न नहीं है। वह बृहत्तर मनुष्यता से प्रेरित है और व्यक्तिवाद में बंद होने वाली नहीं है। पश्चिम के बुद्धिवाद और भारतीय परंपरा के आत्मबोध को जोड़कर अज्ञेय ने उत्तरदायित्व से भरी स्वतंत्रता की जो धारणा दी उसे कोरे व्यक्ति स्वतंत्र से एकांतिक रूप से जोड़ कर देखने का भ्रम पैदा होगा। अज्ञेय की

लोकप्रिय कविता यह दीप अकेला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह भावना उनके पूरे काव्य में गूंजती है। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला, स्नेह भरा, मैं गर्व भरा मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यदि व्यक्ति को दूसरे के दर्पण में अपनी अस्मिता तलाशनी है तो वह अकेला क्यों होता है, वह अद्वितीय कैसी है, यह प्रश्न है। व्यक्ति का अकेलापन पूंजीवादी व्यवस्था, आधुनिकीकरण और नगरीय जीवन की देन है। मनुष्य सामाजिक संगठनों में रहते हुए भी अकेलेपन का अनुभव करता है, यह एक यथार्थ है। अज्ञे ने यह बार बार दिखाना चाहा है कि अकेलेपन में भी आदमी कैसे जी सकता है। उनकी धारणा है कि व्यक्ति के पास यदि एक खुला आत्मबोध हो तो वह अपने अकेलेपन में भी संपूर्ण सृष्टि का अनुभव कर सकता है। आधुनिकीकरण मनुष्य का गुण नहीं मिटा सकता, वह चाहे जितना अकेला कर दिया जाए। औपनिवेशिक दृष्टिकोण रखने के कारण यूरोप और अमेरिका अपने को केंद्र और दुनिया के बाकी हिस्सों को परिधि समझते आए हैं। भारत में भी केंद्र और परिधि की समस्याएं हैं।

क्यों होता है, वह द्वितीय कैसी है, यह प्रश्न है। व्यक्ति का अकेलापन पूंजीवादी व्यवस्था, आधुनिकीकरण और नगरीय जीवन की देन है। मनुष्य सामाजिक संगठनों में रहते हुए भी अकेलेपन का अनुभव करता है, यह एक यथार्थ है। अगेन यह बार बार दिखाना चाहा है कि अकेलेपन में भी आदमी कैसे जी सकता है। उनकी धारणा है कि व्यक्ति के पास यदि एक खुला आत्मबोध हो तो वह अपने अकेलेपन में भी संपूर्ण सृष्टि का अनुभव कर सकता है। आधुनिकीकरण मनुष्य का गुण नहीं मिटा सकता, वह चाहे जितना अकेला कर दिया जाए। औपनिवेशिक दृष्टिकोण रखने के कारण यूरोप और अमेरिका अपने को केंद्र और दुनिया के बाकी हिस्सों को परिधि समझते आए हैं। भारत में भी केंद्र और परिधि की समस्याएं हैं। अज्ञे के निबंध संग्रहों में से एक का शीर्षक ही केंद्र और परिधि है। इसका अर्थ है केंद्रवाद ने उन्हें बड़े पैमाने पर विचलित किया था। वह व्यक्ति और समाज के रिश्ते के स्तर पर भी इस सोच को ले जाते हैं। इसलिए उनके व्यक्ति स्वतंत्र का अर्थ है व्यक्ति की हर किस्म के केंद्रवाद से मुक्ति। वह चाहे प्राचीन निरंकुश केंद्रवाद हो, औपनिवेशिक केंद्रवाद हो या जनतांत्रिक केंद्रवाद हो, देखा गया है कि जनतांत्रिक केंद्रवाद में भी अंततः केंद्रवाद रह जाता है, जनतांत्रिक का धीरे धीरे क्षय हो जाता है। अज्ञे अपनी स्वयं रचित दुनिया का विस्तार करते हुए अपनी स्वतंत्रता का भी विस्तार करते हैं। शहरीकरण ने मनुष्य की बेगानगी बढ़ाई है। आधुनिकता की छाया में मानवता का बुनियादी रूप से व्यापक पतन हुआ है। अज्ञे ने सांप से पूछा है, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। यह व्यंग गहरी मानवीय पीड़ा से उपजा है, लेकिन शहर में अब भी स्पेस है। हरी घास पर क्षण भर में घास आधुनिक मानव मन की भावना बन जाती है। यह एक समानांतर और वैकल्पिक आधुनिकता है जिसमें सभ्यता की दरारें नहीं हैं। एक आधुनिक कवि के रूप में अज्ञे जितना अतीत को प्रश्नांकित करते हैं, वह आधुनिकता को भी संदेह से देखते हैं। मानवीय गरिमा के लिए आधुनिकता के भीतर चली आ रही औपनिवेशिक आधुनिकता और मनुष्यता को नए बंधनों से जकड़ने वाली आधुनिक रूढ़ियाँ खतरनाक हैं। यही वजह है कि अज्ञे ने परंपरा आधुनिकता की टकराहट के साथ आधुनिकता और आधुनिकता की टकराहट को भी महत्व दिया। वह एक वैकल्पिक आधुनिकता की तलाश करते हैं। असाध बीणा में इसी वैकल्पिक आधुनिकता का यूटोपिया रचा गया है। अज्ञे का विश्वास है कि प्रेम की मिट्टी से ही पीढ़ी दर पीढ़ी मूल्यों का सृजन होता है। प्रेम अंततः एक सृजनशील आत्मविस्तार है। अज्ञे की प्रकृति संबंधी कविताएँ महत्वपूर्ण हैं। अपने समय के औद्योगिक राजनीतिक युग में अज्ञे का प्रकृति प्रेम जीवन के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है। यह गहरी जिजीविषा से जन्मा है। पर्यावरण रक्षा के इतने प्रचार के बावजूद औद्योगिक संस्कृति प्रकृति के प्रति क्रूर है। अज्ञे की कविता नंदा देवी बादलों और नदियों के बीच खड़े नंदा शिखर के सौंदर्य पर मुग्ध होकर लिखी गई कविता ही नहीं है, वह इसमें कटते पेड़ों, सूखे झरनों और धुएं में आधुनिकीकरण का आतताई रूप भी देखते हैं और दुखी होते हैं। कल के लिए हमें नाज का वायदा है, आज ठेकेदार को हमारे पेड़ काट ले जाने दो। अज्ञे की पर्यावरण चिंता विकास के लिए जरूरी माने जा रहे अंधे आधुनिकीकरण को प्रश्नांकित करती है और एक विश्व चिंता में साझा करती है। नंदा, जल्दी ही 20-30-50 वर्षों में हम तुम्हारे नीचे एक मरु बिछा चुके होंगे और तुम्हारे उस नदी धौत सीढ़ी वाले मंदिर में जला करेगा एक मरुदीप। अज्ञे महज सुंदर बोध के लिए प्रकृति पर कविताएं नहीं लिखीं, उन्हें जीवन से प्रेम था, इसलिए उन्होंने प्रकृति का सौंदर्य देख। अज्ञे के लिए प्रकृति उनके लिए जीवन का आंगन है। यह उनके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है और उनके प्रेम को भी। प्रकृति की गोद में जीवन एक आलोकमय संगीत बन जाता है। मैं यहीं गाऊं, गाता रहूं, तुम वहीं आओ, आती रहो, धूप की तितलियां, बसंत, एक पाले का पर्दा, शिलित अंधकार, अंधेरा संगीत, संगीत में आलोक की तड़पन प्रतीति, उधर पग पग टटोलता कांपता प्रकाश, ललक प्रीति। अज्ञे ने आधुनिकीकरण को आलोचनात्मक निगाह से देखा और चाहा कि मनुष्य की महत्ता ना गिरे, समाज में व्यक्ति का विलोप ना हो, अनुभव की महत्ता समझी जाए और साहित्यिकता की रक्षा हो।
साहित्यिकता की रक्षा तभी

0: संभव है जब व्यक्ति को बौद्धिक स्वतंत्रता हासिल हो। यह बौद्धिक स्वतंत्र की आकांक्षा अज्ञेय के संपूर्ण साहित्य के केंद्र में है। अज्ञेय ने इसका एहसास कराया कि धर्म, इतिहास, राजनीति की विकृतियों के बावजूद साहित्य अब भी एक सुंदर जगह है जहाँ शब्द व्यक्ति को बचाते हैं और स्वाधीनता का बोध देते हैं। आज के हिंसक पर्यावरण विनाश और राजतंत्र के आतंकी हस्तक्षेप के युग में अज्ञेय द्वारा व्यक्ति के आत्मान्वेषण, आत्मिक उन्नति, शब्द की सृजनात्मकता की बेचैनी, बौद्धिक स्वतंत्र की वकालत, मानवीय प्रेम की व्यापक अनुभूति, मम और ममेतर तथा व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य के अंतर संबंध की मांग बड़े महत्व की है। अज्ञेय की चिंताएं और रचनात्मक संघर्ष आज अधिक प्रासंगिक नजर आता है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर भूरे लाल की वार्ता अज्ञेय वर्तमान संदर्भ में। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

एहसास की धूप छाओं में, हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रमा सेन के गाए गीत। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में जयदेव शर्मा कमल का लिखा गीत।

अभी आप सुन रहे थे रमा सेन के गाए गीत। इसी के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: पहली बार हुआ तुम इतने दिन की कहां, मैं ढूंढता ही रहा
0: कहां।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी।

तपती दोपहर, झुलसाती हवाएं, माथे पर पसीने की बूंदें और सूरज के तीखे तपेश, उफ बहुत गर्मी। इस समय दोस्तों हम सभी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। अब देखिए ना, कहीं लू के थपेड़े तो कहीं बदलते मौसम की अनिश्चितता। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने और अपने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और वो हम कैसे रख सकते हैं? वो इस तरह कि भाई हम खूब पानी पिएं, जब भी धूप में निकलें तो फुल बांह के कपड़े पहनें, साथ में अपनी बॉटल रखें, छाते का इस्तेमाल करें, तो इन्हीं सबसे हमारी बचत भी होगी, हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। छाछ पिएं, और अगर आपको पसंद है तो सत्तू का घोल भी पी सकते हैं दोस्तों। लेकिन इनसे हमारी बचत तो होगी, लेकिन मन को तरोताज़ा रखने के लिए थोड़ा सा संगीत का भी सहारा लें, क्योंकि आप जानते हैं ना दोस्तों, संगीत वो ठंडी छांव है ना जो तपती ज़िंदगी में भी सुकून का एहसास करा देती है। तो आइए गर्म हवाओं और थके हुए मौसम के बीच सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, सुरों की ऐसी फुहार जो आपके और हमारे मन को देगी राहत, चेहरे पर लाएगी मुस्कान और इस तपिश भरे माहौल को बना देगी खुशनुमा।

दोस्तों, संगीत सचमुच दिल को सुकून देने का सबसे खूबसूरत जरिया है। एक अच्छा गीत थके हुए मन में नई ऊर्जा भर देता है और इसी सुकून का नाम है संगीत। दोस्तों, गर्मी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन शाम ढलते ही हवाओं में एक अलग ही एहसास घुलने लगता है। हम देखते हैं कि बच्चे पार्कों की ओर निकल पड़ते हैं, चाय की दुकानों पर रौनक बढ़ जाती है और लोग दिन भर की थकान मिटाने के लिए कुछ सुकून तलाशते हैं और इसी संगीत को ही हम सुकून मानते हैं। तो चलिए, पेश है एक और प्यारा सा नगमा जो शायद आपकी यादों के किसी कोने को छू जाए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दोस्तों बदलता मौसम हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, कभी धूप कभी बारिश कभी ठंडी हवा, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है और हर पल में छुपी होती है कोई नई उम्मीद। आजकल हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने उलझ गए हैं कि खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसे में कुछ पल अपने लिए भी निकालना चाहिए, अपने परिवार के लिए निकालना चाहिए, अपने दोस्तों के लिए निकालना चाहिए और कुछ पल संगीत के साथ भी बिताना मन को राहत देता है दोस्तों।

दोस्तों, कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो सीधे दिल से बात करते हैं। ऐसा लगता है ना जैसे हमारे अपने जज्बात ही सुरों में ढल गए हों। जिंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कभी मुस्कुराना छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक मुस्कान कई मुश्किलों को आसान बना देती है। और संगीत तो वो साथी है जो बिना कुछ कहे हमारे मन की हर बात समझ लेता है। कभी हंसाता है, कभी रुलाता है और कभी कभी पुरानी यादों में ले जाता है।

दोस्तों, अगर मन खुश है ना तो हर दिन खूबसूरत लगने लगता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए, खुश रहिए और अपनों के साथ समय बिताइए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, धूप से बचिए, जीवन में हमेशा खुशियों के गीत गुनगुनाते रहिए। तो अब कार्यक्रम का अंतिम गीत, आपकी नज़र।

दोस्तों, आज हमने आपको जिन फिल्मों के गीत सुनवाए उनके नाम थे आया सावन झूम के, नया दौर, मजबूर, पैडमैन और दिल अपना और प्रीत पर आए। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, आशा भोसले, अरिजीत सिंह। गीतकार थे आनंद बख्शी, साहिल लुधियानवी, कौसर मुनीर और शैलेंद्र। संगीतकार थे ओपी नैयर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अमित त्रिवेदी और शंकर जयकिशन। और इसी के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले लीजिए सुनिए ऋचा शर्मा के स्वर में ये गीत।

इसी के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.

0: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए

0: थे, ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 3 जबानों की पढ़ाई को लाजमी बना दिया है और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बुहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर एक भरोसेमंद, शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने 5 मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना करती रही है, जिसमें COVID-19 आलमी वबा, मौजूदा महाजराई और तवानाई का बुहरान शामिल हैं।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेजी के साथ ना निपटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फायदे हासिल हुए हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत में चला जाएगा। इक्तसादी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निज़ाम कायम करने पर मुश्तरक तौर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जनाब मोदी ने भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर भी जोर दिया और मुल्क को 21वीं सदी में मौकों की सरजमीन करार दिया, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी अकदार दोनों को अहम मकाम हासिल है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात की। जनाब मोदी नीदरलैंड्स के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जटन के साथ बाहमी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान वसीतर ताल्लुकात उस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली अहम कंपनी ASML ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस मुआहदे का ऐलान किया गया। ASML लिथोग्राफी इक्विपमेंट के जुमरे में इजारादारी रखती है, जो छोटे साइज के जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है, जिनमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। ASML के सदर और CEO क्रिस्टोफे फोके ने कहा कि भारत के तेजी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वो खत्ते

0: चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आपटे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम ही

0: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
1: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजु का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज।

फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी

0: एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: ओ न रोना के तू

फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
2: बेटे, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से

2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक

90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक

0: सी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म एबीसीडी 2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल तारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये।

0: मुकेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस करे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पर जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता, मैंने मेरे हाथ में किधर है।
1: जी जी
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं। और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन।

0: रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने

0: पूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khyal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुव तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुव तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है।

0: और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of

0: Agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11:10 हुए हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। कल सवेरे 5:55 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।